मिनिमम 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि तदनुसार 9 जून 2026 सुबह के 5:55 हो चुके हैं। मीडियम वेव और FM पर आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों

0: तब बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियावेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हाथ में गदा, मुख पर राम राम नाम का जाप है, जिनके होने से मिट जाता हर संकट और पाप है। ऐसे संकट मोचन हनुमान जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है।

शीश पर गंगा, गली में मुंडमाल है, जिनके ध्यान से थर थर कांपता काल है, वही देवों के देव मेरे बाबा महाकाल हैं। जय शिव शंकर।

सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में करूं फरियाद। जिस हाल में तू रखे मुझे, मैं तुम्हें बस याद करूं।

वैभव धन और ऐश्वर्य सब फीका पड़ जाता है जब माँ संतोषी की कृपा से मन को सच्चा संतोष मिल जाता है। जहाँ संतोष वहीं सुख और शांति का वास है।

0: अनुपम देशपांडे, ओम व्यास, गुलाम मुस्तफ़ा खां, सुरजीत सिंह और अनुराधा पौडवाल के। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन, जिसमें विषय है संत बिना राम के विचार।
1: श्री कीना राम जी अघोर पंथ के वरिष्ठ आचार्य माने जाते हैं। अघोर मत को पुष्पित पल्लवित करने का श्रेय बाबा श्री कीना राम जी को अधिक है। इनकी आत्मिक शक्ति बेजोड़ थी। सुना जाता है कि ये जन्मजात सिद्ध पुरुष थे। इन्होंने संसार को असार समझकर बाल्यकाल में वैराग्य धारण कर लिया था। आरंभ में किन्हीं परम वैष्णव आचार्य श्री शिवराम जी के संपर्क में थे। बाद में गिरिनार में श्री दत्तात्रेय जी ही संभवतः मिले थे और वही कालूराम जी के स्वरूप गुरुदेव हुए। बाबा कीना राम जी के अनुसार मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण अमरता प्रदान करने में आत्म तत्व रूपी पीयूष का परित्याग कर वारुणी का सेवन करता है, अर्थात ग्राह्य पदार्थ का परित्याग कर अग्राह्य मिथ्या पदार्थ ग्रहण करता है। ऐसे उन्मत्त प्राणियों को कैसे समझाया जाए? आत्म तत्व स्वरूप ईश्वर सदा ग्राह्य है, किंतु लुभावनी मिथ्या सांसारिक पदार्थों का ग्रहण करता है, जो गुंजा फल के सदृश है, जो जीवात्मा को क्षण क्षण में दुख देने वाले हैं। आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूप कल्पतरु वृक्ष को छोड़कर रेण वृक्ष की छाया ग्रहण करता है, जो सदा दुखदायी है। उसी से मनोवांछित फल चाहता है। यह जीव की कितनी बड़ी मूर्खता एवं विडंबना है। यह मृग मरीचिका में सुख देख दुखी हो रहा है। अभीष्ट फल देने वाला आत्मानुसंधान ही है। इसके सामने संसार के सभी धन स्वल्प हैं। मनुष्य संसार सागर पार होने के लिए ईश्वर तथा गुरुदेव के चरण कमल रूप जहाज को छोड़कर हाथों से तैर कर पार होना चाहता है और उसमें भी उसने अपने पैर बांध रखे हैं। यह जीव की जन्मजात स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति से त्राण पाने के लिए गुरु की बताई हुई साधना और उनके उपदेशों के प्रति प्रवृत्त होकर अग्रसर होने की परम आवश्यकता है। अपनिषदीय विचारधारा पर यह जो जीव है इंद्रियों के वशीभूत हो गया है। मन इंद्रियों के साथ सांसारिक विषयोन्मुख होकर बाहर ही दौड़ रहा है। अनात्म पदार्थों में आसक्त होकर आत्मा की हिंसा कर रहा है। बहिर्मुख होने के कारण पराभिमुख नहीं हो पाता है। परमपिता परमात्मा की यदि अनुकंपा हो जाए या स्वयं जीव के ज्ञान चक्षु गुरु कृपा से खुल जाए तो वह सुखी हो सकता है। बाबा कीना राम जी मानवीय जीवन में व्यवहार पक्ष पर बहुत जोर देते हैं। प्रत्येक जगह परमात्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं। जीवन में झूठ हिंसा का पालन करने वाले मदिरा कुभक्ष भक्षण करने वालों को वे बहुत हेय बतलाते हैं। इन सभी का सेवन करने वाले वेद शास्त्र पुराण पुराण के पारंगत विद्वान भी हों, फिर भी वे नीचतर प्राणी ही माने जाएंगे। मद्य का सेवन करने वाला प्राणी दैवी गुण का अधिकारी नहीं है। वह जो कुछ करता है वह भी व्यर्थ ही है। जीवन में दैवी गुणों का संचयन आसुरी गुणों का परित्याग नितांत अपेक्षित है। इन सभी बातों का वेद शास्त्र पुराण और संतों की वाणियों द्वारा भी समर्थन होता है। सात्विक विचार के मानव ही वस्तुतः मानव है, वही ईश्वर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बेचारा जीव अनादिकाल से अपनी कुप्रवृत्ति के कारण अनेक बंधनों में बंध कर असह दुख भोग रहा है। आत्म इंद्रियों के वशीभूत होकर ईश्वर ब्रह्म आत्मा अनुसंधान करे तो सुखी हो सकता है, मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की कृपा से ही मनुष्य जन्म प्राणी को प्राप्त होता है।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आज का चिंतन।

0: सुबह के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे, जानकारी देंगे लहसुन का प्रयोग भी है गुणकारी, और आपको यह जानकारी देंगे राम स्वरूप गंगवार।
1: आमतौर पर हम लहसुन का इस्तेमाल खाने में तड़का लगाने या ग्रेवी बनाने के लिए करते हैं। लहसुन किसी भी बेजान सब्जी के स्वाद को जानदार बना देता है, लेकिन लहसुन में ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं जो आपको कई बीमारी से दूर रखते हैं। लहसुन एक वंडरफुल फूड है। आयुर्वेद में तो लहसुन को औषधि माना गया है, हालांकि आपको किसी न किसी रूप में लहसुन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर हम आपको इन्हीं फायदों के बारे में बता रहे हैं। लहसुन दिल संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। लहसुन खाने से खून का जमाव नहीं होता और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। लहसुन और शहद के मिश्रण को खाने से दिल तक जाने वाली धमनियों में जमा वसा निकल जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से दिल तक पहुंचता है। लहसुन खाने से हाई बीपी में आराम मिलता है। दरअसल लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार है। हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे लोगों को रोजाना लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। पेट से जुड़ी बीमारियों जैसे डायरिया और कब्ज की रोकथाम में लहसुन बेहद उपयोगी है। पानी उबालकर उसमें लहसुन की कलियां डाल लें। खाली पेट इस पानी को पीने से डायरिया और कब्ज से आराम मिलता है। यही नहीं, लहसुन शरीर के अंदर मौजूद जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। लहसुन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की ताकत होती है। खाली पेट लहसुन की कलियां चबाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और भूख भी खुलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लहसुन टेंशन को भगाने में भी मददगार है। कई बार हमारे पेट के अंदर ऐसे एसिड बनते हैं जिससे हमें घबराहट होने लगती है। लहसुन इस एसिड को बनने से रोकता है। लहसुन खाने से सिर दर्द और हाइपरटेंशन में काफ़ी आराम मिलता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है तो लहसुन की एक कली पीसकर दर्द वाली जगह पर लगा लें। कुछ ही देर में आपको दांत दर्द से आराम मिल जाएगा। यही नहीं, खाली पेट लहसुन का सेवन करने से नसों में झंझनाहट से भी आराम मिलता है। लहसुन सांस से संबंधित बीमारी की रोकथाम में भी सहायक है। सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि के इलाज में प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि लहसुन कितना गुणकारी है। इसका आप जरूर सेवन करें, नियमित रूप से सेवन करें। हर घर में लहसुन उपलब्ध है, बाजार में भी आसानी से लहसुन मिल जाता है। तो जरूरी है कि हम लहसुन को अपने भोजन का अहम हिस्सा बनाएं। आज तो अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिली लहसुन का प्रयोग भी है गुणकारी, और जानकारी दी रामस्वरूप गंगवार ने।
2: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
3: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
2: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
3: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
4: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
3: करें उचित प्लास्टिक कचरा।

0: कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
1: से नो टू प्लास्टिक।
2: मिनी वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। 7 बजे समय रहेगा कार्यक्रम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे सरिता कक्कड़ द्वारा गाए कुछ लोकगीत। फिल्मी गीतों का पर आधारित इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुन सकते हैं सुबह 7:31 पर। कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स का समय रहेगा 8:45। गौरव भारत देश के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9:25 पर। उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:50। कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनिएगा 10:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम धरोहर का समय रहेगा सुबह 11:00। श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकते हैं सुबह 11:30 पर। गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं प्रसारित होंगी दिन में 12:05 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम आप सुन सकते हैं दिन में 12:10 पर। परिवार जगत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:15, जिसमें चर्चा होगी साथ में भोजन करने के फायदे और वार्ता होगी सपनों की सफलता की सीढ़ी और परिवार का अटूट साथ। क्षेत्र संकलित वार्ता होगी कामकाजी महिला की दोहरी जिम्मेदारी। 70 के दशक के फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर में दिन में 2:30 पर। आज शाम कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकते हैं शाम 5:15 पर। गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं प्रसारित होंगी शाम 6:05 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:10। शाम 6:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि जगत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे सही करें। भेंटवार्ता होगी कृषि विकास में संचार माध्यमों की भूमिका। शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम कानून और हम। गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:31 पर। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:00। आज के मेहमान कार्यक्रम आप सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीतांजलि। यह था आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।
3: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे। तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
4: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
5: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
3: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
4: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की जबा में।
1: आइए हिफाजत

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 323। कलाकार हैं ए हरिहरन, संगीत है सतीश भाटिया का।
1: नंबर 323 323।

शक्तिवान लगने से मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान लंका के वैद्य सुषेण को उनके घर समेत उठा लाए हैं। औषधि है संजीवनी बूटी। पर्वत का जहां वो मिलेगी नाम सुनकर पवन पुत्र हनुमान श्री राम का स्मरण कर प्रस्थान करते हैं। गुप्तचरों से ये संवाद सुनकर रावण चिंतित हो जाता है और कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजना चाहता है। कालनेमी पहले तो रावण को सद्बुद्धि देने का प्रयास करता है, मदांधता त्याग कर महामोह की निद्रा त्यागने की बात कहता है, किंतु फिर रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत द्वारा मरना श्रेयस्कर जान मुनि रूप धारण करके पवन पुत्र के मार्ग में माया रचना करता है। प्यास बुझाने के लिए हनुमान मुनि के संकेत पर सरोवर पहुंचते हैं, जहां मगरी के रूप में उपस्थित अप्सरा उनके पैर पकड़ लेती है। हनुमान उसका वध कर देते हैं। स्वर्गारोहण से पूर्व वो मुनि रूपी कालनेमी की वास्तविकता उन्हें बता देती है। कालनेमी का वध करके हनुमान पर्वत पर जड़ी न पहचान सकने की स्थिति में पूरा पर्वत ही उठाकर लंका जाते हुए अयोध्या के आकाश में पहुंचते हैं।

0: महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतम वर्षस्य आईसीसी महिला विंशति प्रति विंशति विश्वचषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं षड्विंशति धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सरिता कक्कड़ द्वारा गाए कुछ लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में यह पहला लोकगीत।

अभी आपने सुना लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई सरिता कक्कड़ द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव

0: बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
1: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे। अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
2: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

0: अरे अरे सुनो, रुको रुको, एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
2: अरे भाई कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
3: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
4: नहीं, 112 लगाओ।
5: अरे भाई इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
4: अरे भाई एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
6: हेलो 112।
7: नमस्कार 112 यूपी।
6: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
7: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
6: सुनील।
7: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
6: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
7: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
8: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। SMS करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप एसआरजी। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में एसआरजी गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
2: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
2: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
5: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
6: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद,

0: जितनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर पंजाब उत्तराखंड जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों होटलों स्कूलों औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राज्य में तेज धूप भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्त्री शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: मिनिमम 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

आप सभी श्रोताओं को दीक्षा कुलश्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में सबसे पहले करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, सुबह ही सुबह सूरज आ जाता है। बाहर पैर रखते ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तंदूर का दरवाजा खोल दिया हो। जून का महीना चल रहा है और पारा ऐसे बढ़ रहा है जैसे शेयर मार्केट बढ़ रहा हो। सड़कों पर लू ऐसे चल रही है जैसे कोई ब्लोअर चला के बैठ गया हो। गाड़ी की सीट पर बैठो तो ऐसा लगता है सीधे तवे पर बैठ गए हैं। इस चिलचिलाती धूप ने सबका सिस्टम हिला रखा है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि जब मौसम हॉट होता है तो हमें अपनी आदतों को कूल करना पड़ता है। गर्मी से बचने वाले कुछ कूल मंत्र हैं। गर्मियों में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, प्यास लगे या ना लगे पर पानी पीते रहें। अपने साथ एक पानी की बोतल हमेशा रखें। नींबू पानी, ORS, नारियल पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का भी सेवन करते रहें। अपना पहनावा बदलें। इस मौसम में काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचें। हल्के रंग व सूती कपड़े ही पहनें।

इससे आपको तो आराम मिलेगा ही, साथ ही देखने वाले को भी बहुत आराम मिलेगा। जब भी बाहर निकलें तो धूप का चश्मा यानी सनग्लासेस और छतरी यानी अम्ब्रेला साथ रखना न भूलें। दोस्तों, हम तो ऑफिस या घर में एसी में बैठ जाते हैं, पर हमारे बेजुबान दोस्त पशु पक्षी इस तपती धूप में एक एक घूंट पानी के लिए तरसते हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें। आपका यह छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। तो श्रोताओं, आइए अब करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नया मार्ग भी प्रशस्त किया। ऐसे ही एक गौरवशाली नाम है डॉक्टर किरण बेदी। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। उन्होंने उस दौर में पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ा, जब महिलाओं को का घर से बाहर निकलना भी एक बड़ी चुनौती माना जाता था। आपने साहस, ईमानदारी और प्रशासनिक सुधारों के कारण वे भारत के प्रशासनिक इतिहास में अमर हो गईं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। उनके पिता प्रकाश लाल पेशावरिया और माता प्रेमलता थी। उनके पिता की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने अपनी चारों बेटियों को बेटों की तरह स्वतंत्र और साहसी बनने की प्रेरणा दी। किरण बेदी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। वे पढ़ाई में जितनी अच्छी थी उतनी ही खेल के मैदान में भी अव्वल थी। उन्होंने टेनिस में

ऑल इंडिया हार्ड कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप और एशिया टेनिस चैंपियनशिप जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी एमए किया और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून यानी एलएलबी की डिग्री ली तथा आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। साल 1972 भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतिहास का एक स्वर्णिम वर्ष था। इसी वर्ष किरण बेदी ने संघ लोक आयोग की परीक्षा पास की और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली देश की पहली महिला बनी। उनका पुलिस सेवा में आना इस बात का साक्षात प्रमाण था कि महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर किसी भी कठिन चुनौती का सामना कर सकती हैं। खाकी वर्दी और सिर पर पुलिस की टोपी पहने जब वे परेड का नेतृत्व करती थी तो देश की लाखों लड़कियों को अपने सपनों को सच करने का हौसला मिलता था। उनके करियर का सबसे गोल्डन पीरियड तिहाड़ जेल के डीजी के रूप में था। उन्होंने दिल्ली की उस कुख्यात और हिंसक जेल को एक सुधार गृह या कहीं आश्रम में बदल दिया था। उन्होंने कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए जेल के भीतर योग, ध्यान, साक्षरता अभियान और संगीत की शुरुआत की। उनका मानना था कि अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। वर्ष 2007 में उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, लेकिन समाज सुधार के प्रति उनका जज्बा कम नहीं हुआ। उन्होंने नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन एनजीओ की स्थापना की। ये संस्थाएं आज भी झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के कौशल विकास और नशा मुक्ति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं। इसके बाद किरण बेदी ने राजनीति में कदम रखा और वर्ष 2016 से 2021 तक पौंडीचेरी की उपराज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो श्रोताओं, अब ज्ञान की बातें हुई तो अब करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

अभी आपने सुना कार्यक्रम सुबह सवेरे, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दादा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया। वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली।

0: योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
5: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवा 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता।

0: H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। The headlines. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today.

0: क्रिकेट में आजसू दाम्बुला में सैमुल की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: बैनुल अक्वामी ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वुज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। जरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, जरी इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, जरी तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ज़री इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: स्टील महकमे के मरकजी वजीर एच डी कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रूपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहिरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज कयादत के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 वर्षों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के लिए अपनी ज़ेर सरपरस्ती कई इक़दाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
3: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निजाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज्यादा काबिले रसाई, किफायती और मेयारी है। 2018 में वजीर

0: आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक और इक्तसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हरेक कुंभे को 5 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
1: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा। क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था? मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
0: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसी तर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मियारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में यह मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की जेर क्यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाके की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने विफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अलावामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल की ए सीरीज के पहले मैच

0: में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अर्शद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मुकाम पर खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पैगाम को नुमाया किया है, जिसमें वजीर आजम ने लिखा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरस में बहुत सी मुसबत तब्दीलियां देखी हैं, जिनकी जड़ें गरीबों के फलाह बहबूद में पैवस्त हैं। वजीर आजम ने डीबीटी, स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम का खास तौर से जिक्र किया। अखबार की एक और सुर्खी है, सरकार कबायली इलाकों की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अलाक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज़ के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमेरिका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत फिल्म जीरो से स्टार्ट से शान, सोनू निगम और शंकर महादेवन की आवाजों में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत यारियां 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और मनन भारद्वाज की आवाजों में।

0: आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।

0: विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से शिल्पा राव और संचित टंडन की आवाजों में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म दी फैमिली स्टार से राघव चैतन्य की आवाज में।

अभी आपने सुना कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की बढ़ोतरी की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जान

0: में संपन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहां जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुवाई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुवाई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुवाई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुवाई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गाँव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहाँ PR 126 प्रजाति की बुवाई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुवाई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुवाई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गांव अख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और एक महीने पहले लापता हुई उनकी मां लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिश्चीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रुपए आकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायो मेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
2: प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें एक माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। प्रभावी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि

0: कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवर, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकारी उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी हरदोई और ललितपुर जिलों की खबरें।
3: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश के।
4: राष्ट्रदुर्ग में भेदभाव का चोर कभी ना घुसने पाए, लहराते झंडे को दुश्मन कीन नजर लगने पाए, सैन्य बना अंग्रेज उड़ाए, बिरसा शहीद पूज जाते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। लगभग 130 वर्ष पूर्व छोटा नागपुर में आदिवासी अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत परेशान रहते थे। उन्हीं के कबीले के एक व्यक्ति बिरसा मुंडा को ये अत्याचार सहन न हुआ। उसने इनका डटकर सामना करने के लिए आदिवासियों को संगठित कर एक छोटी सी सेना बना ली और ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को जलाकर स्वतंत्र मुंडा राज्य का सफेद ध्वज फहरा दिया। अंग्रेज बिरसा मुंडा के नाम से कांपते थे। उसने 1800

0: 94 में नारा बुलंद किया, अंग्रेजों को भगाओ और भारत को गुलामी से बचाओ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के कुलियात में मुंडा जाति के सुगनो मुंडा के घर हुआ था। वह वाद्य यंत्र तुदला और एक बंशी रखते थे। उनका मनमोहक स्वर जीव जंतुओं तक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। 1886 में उनकी जमीन ईसाई बन जाने पर वापस की जाएगी की बात सुनकर आपके मन में विद्रोह की भावना जागृत कर गई। 1891 में एक हिंदू ब्राह्मण आनंद पांडे के संपर्क में आने के कारण आपने शिकार करना और मांस खाना छोड़ दिया। विरसा धर्म में फैली कुरीतियों एवं रूढ़िवाद के विरुद्ध थे। उन्होंने गैर आदिवासियों ईसाइयों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। आदिवासियों के सुधार एवं कल्याणार्थ एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे विरसा धर्म का नाम दिया गया। 1895 तक विरसा एक पैगंबर बनकर उभरे। इसी साल वह जेल से भी मुक्त हुए। आज विरसा भगवान के रूप में प्रतिवर्ष पूजे जाते हैं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरव भारत देश के।
2: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
3: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
4: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
3: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
2: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
3: जागिए और जगाइए।
4: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
2: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
3: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
5: से नो टू प्लास्टिक।
1: मिनी वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। समीन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आपकी मेजबानी प्रोग्राम आयशा राहत आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब। समीन बज़्म हर अहद, हर जमाने और हर दौर में अदब के ऐसे चाहने वाले हुए हैं कि जिन्होंने अदब से अपना ताल्लुक हमेशा कायम रखा। उन्होंने अदब की किसी ना किसी सिंफ से अपना जुड़ाव रखा और इससे हमेशा जुड़े रहे। समीन, कहा जाता है कि कहानी की उम्र उतनी ही है जितनी हजरत इंसान की, तो बेशक इसमें कोई दोराय नहीं, क्योंकि किस्से कहानियां हमेशा से ही लोग पसंद करते आए हैं और आज भी सुनना पसंद करते हैं। समीन, आज सिर्फ फर्क इतना आया है कि कहानियां अदब की मुख्तलिफ असनाफ के जरिए हमारे सामने आती हैं, चाहे वो ड्रामा हो, नावल निगारी हो या फिर अफसाना निगारी ही क्यों ना हो। आज इस सिंफ को बेहद पसंद किया जाता है और देखा जाता है कि अफसाने को लोग बहुत शौक से सुनते हैं कि इस प्रोग्राम में। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खूबसूरत अफसाना जिसका उन्वान है यतीमों का संगम, और अफसाना निगार हैं जनाब मोहम्मद यामीन बरकाती। तो आइए समाप्त करते हैं उनका ये अफसाना।
1: बाबूजी, हम इतने रुपए नहीं लेंगे। साहिल

अपना नहीं करता, हम नहीं लेंगे, आखिर क्यों? बाबूजी भीख में एक या दो रुपया देते हैं, बहुत सखी हुआ तो 10-5 रुपये देते हैं, 100 रुपये कोई नहीं देता। जब हम 100 रुपये लेकर घर जाएंगे तो अम्मी जान समझेंगी कि हमने चोरी की है, इसलिए वो हमें मारेंगी। देखिए हम 2 घंटे से मांग रहे हैं, मुश्किल से 20-25 रुपये होंगे, इसमें 1 रुपया 2 रुपये के ही सिक्के हैं, 5 या 10 रुपये का एक भी सिक्का या नोट नहीं है। अगर आपको ये रुपये देने ही हैं तो मेरे साथ घर चलिए और अम्मी के सामने दीजिए, तो हम अम्मी की पिटाई से बच जाएंगे। बेटा तुम इतने समझदार हो, अच्छे माँ बाप की औलाद मालूम होती हो, फिर भी क्यों मांग रही हो? बाबूजी हम सच कहते हैं, हमारे अब्बू अम्मी बहुत अच्छे हैं और हम भिखारी भी नहीं हैं, मगर हम बहुत मजबूर और परेशान हैं। सुनिया है हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया, मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट पड़ा, दादा दादी ने हमें और हमारी अम्मी को घर से खाली हाथ धक्के देकर निकाल दिया। हमारी अम्मी माँ बाप की इकलौती थी, नाना नानी का भी इंतकाल हो गया था। अम्मी बताती हैं कि ख़ानदान वालों ने नाना नानी के मरने पर घर पर कब्जा कर लिया और हमारे पास अब रहने की कोई जगह ना थी। अम्मी और हम सड़क के किनारे बैठे रो रहे थे कि अल्लाह ने मदद की, अब्बू के एक दोस्त उधर से गुजरे, उनकी निगाह हम पर पड़ी, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों हो और फिर क्यों रो रही हो? अम्मी जान ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो हमें अपने साथ घर ले गए, 1-2 दिन रखा, उन्होंने किराए पर ये घर ले दिया। अम्मी जान ने अपने कानों के कुंडल और पैरों के पाजेब उतार कर दी और कहा, इस सब को बेचकर 1 महीने का किराया दे देना, गैस का छोटा सिलेंडर और ज़रूरी सामान जैसे लोटा बाल्टी वगैरह है ये खरीद कर, और कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने सारा सामान खरीद दिया और कुछ पैसे जो बचे थे वो अम्मी को दे दिए। 1 महीना कट गया, सामान भी ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म। 2 दिन हम दोनों भूखे प्यासे पड़े रहे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। हमने अम्मी से कहा हम सड़क पर जाकर कुछ मांग लाएं, अम्मी ने मना कर दिया। दोपहर में अम्मी की जब आँख लग गई तो हम चुपके से बाहर निकल आए, पास में मस्जिद थी, जोहर की नमाज हो रही थी, हम मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। हमसे मांगना तो आता नहीं था, नमाजियों के आगे हाथ फैला दिया, सब ने कुछ ना कुछ दिया। पहले दिन की भीख में हमें 40 रुपये मिले, खाना खरीद कर घर ले आए। अम्मी जान दरवाजे पर परेशान खड़ी थी, हमें देखते ही बरस पड़ी। हम उनको लेकर अंदर आए, उन्हें सब कुछ बता दिया और किसी न किसी तरह उनको खाना खिला दिया। इस तरह हमने भीख मांगनी शुरू की। आप घर चलिए बेटा, आज हमें काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशात मरियम है। आप घर चलिए वरना अपना नोट ले लीजिए। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अम्मी की पिटाई से डर रही हो तो हम इसके बदले छोटे नोट दे देंगे। मुझे घर का पता बता दो, मैं कल खुद ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। पता तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं कल को इसी टाइम इसी जगह मिल जाऊंगी। खुदा हाफिज़ कहकर निशात घर पहुंची, दिल में खुश हो रही थी, लेकिन घर पहुंचते ही पहुंचने पर उसकी सारी खुशियां काफूर हो गईं। अम्मी ने डांट लगाई और तमाचे लगाए, बताइए पैसे किसने दिए? ये निशात ने सब कुछ बता दिया। बेटा हर ऐर गैरा को अपनी परेशानी या दुख नहीं बताते हैं, इस तरह हमारी रही सही इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। अम्मी मुझे और मार लीजिए, पर बाबूजी को कुछ ना कहिए। अब्बू के बाद आज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं बड़ी होती तो उनको भाई बना लेती, पर मैं बच्ची हूँ तो मैं उन्हें अपना। खामोश अम्मी की डांट ने उसकी बात को काट दिया, कान खोल कर सुन ले। निशात बेटा अम्मी से इजाज़त लेकर बाहर आओ, इस आवाज़ ने अम्मी की बात को काट दिया। अम्मी ने उसे इजाज़त दे दी, निशात बाहर आई। दोनों लोग सार सुर्ख हो रहे थे, आंखों से गंगा जमुना की धारें बह रही थीं। निशात को इस हाल में देखकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। तुमसे रुख्सत होकर मैं जब चला तो मुझसे नहीं चला गया। हमें एहसास हो गया कि शायद तुम्हारी बात सच हो, मगर यहाँ तक पहुँचने से पहले ही सब कुछ हो गया। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं मैं अपनी निशात को बहुत पढ़ाऊंगी, कामयाब डॉक्टर या बड़ा अफसर बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़े। अल्लाह तुम्हारी अम्मी के ख्वाब को पूरा करे, आमीन। आप अंदर आ जाइए। शुक्रिया। निशात सलीम को लेकर अंदर आई। एक बोसा सी चटाई के अलावा घर में कुछ नहीं था। एक तरफ निशात की अम्मी का हुस्न, शाइस्तगी, सलीका और अंदाज़ गुफ्तगू, मालूम होता था हुस्न का शाह।

अभी आपने सुना कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम में यह गीत सुनने का अनुरोध किया है बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से इस गीत को सुनना चाहा है मकसूद हुसैन और नाजम अली ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश इस गीत को सुनना चाहती हैं छत्रपति सांभाजी नगर से। वैष्णव कॉलोनी सनावाद मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शुएब खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई ने। रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर इस गीत को सुनना चाहते हैं गांधीबाग अकोला से। एमआईडीसी चंदन नगर सतारा से इस गीत को सुनना चाहा है सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे और श्रमेण वाघमारे ने। वारणा शाहपुर कोल्हापुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं विजय चव्हाण, तेजस्विनी चव्हाण, अंकिता चव्हाण, अनिकेत चव्हाण और माया चव्हाण। पुणे से इस गीत को सुनना चाहा है पंकज बाडोडे, आर्या प्रियंका, बीटी वाडोडे और चंद्रप्रभा वाडोडे ने। आदर्श नगर मलोट से इस गीत को सुनना चाहा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म कसूर से।

0: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं,
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
0: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
0: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
0: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
0: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
0: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है,
0: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
1: हुँ?
0: और जापानी भाषा में इसे चानू यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि

0: ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई?
1: जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
1: जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे
1: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह,
0: यानी
1: हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई,
0: जी,
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई, यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू, यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओ, इन 4 सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
1: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परिवा पंछी तक न जाने।

0: पाए लागू बड़ी बहुरिया।
1: आ गए भैया।
0: हाँ।
1: लो ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
0: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हरगोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहां से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब, थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
3: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
0: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
4: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
0: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
0: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
0: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
0: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
0: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
0: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में

0: दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
1: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे,
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, अब पैन लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है।
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा, राम राम।
3: राम राम।
1: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश। अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई

0: Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth.
1: आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के समापन की आपसे आज्ञा चाहेंगे, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक कहानी खंडरों की। आज इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 1 आप तक पहुंच रही है।
5: आकाशवाणी के लिए दमनिया इंटरनेशनल प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की।

कहानी है उन बहादुर रोहिलों की जो 18वीं सदी की इब्तिदा में अफगानिस्तान के इलाके रोह से आजीविका की तलाश में हिंदुस्तान आए। फौजी नौकरियां करके दौलत और शोहरत उन्होंने हासिल की और सारे उत्तरी भारत पर कब्जा करके रोहिला हुकूमत की बुनियाद रखी। उनके शानदार दौरे हुकूमत की निशानियां आज भी खंडहरों की शक्ल में सारे उत्तरी भारत में चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, जो अतीत के रोहिला सरदारों और नवाबों की याद दिलाती हैं। आज प्रस्तुत है पहली कड़ी।

0: 아시아? 아시아! 아니, 아, 기어름 갱이.
1: क्या बात है आशा?
2: बात कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: नहीं, कोई बात जरूर है आशा। आप जब कभी इधर से गुजरती हो, इसी तरह ठहर जाती हो, कुछ सोचने सी लगती हो। बताइए बात क्या है?
2: पता नहीं क्यों, जब कभी मैं इधर से गुजरती हूँ तो मेरे पांव रुक से जाते हैं।

0: करते हैं? डर लगता है?
1: नहीं, डर नहीं लगता अजय, बस कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है।
0: फिर क्या होता है?
1: एक अजीब सी सुगंध आने लगती है और एक अजीब सी आवाज आती है।
0: क्या कह रही हैं आप? कैसी आवाज?
1: जैसे कोई गा रहा हो, और मेरे कदम उस आवाज की ओर बढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से रोक पाती हूँ खुद को।
0: इधर से आती है आवाज? इधर तो करबला है।
1: नहीं, वो उधर से।
0: उधर? उधर तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है।
1: तुमने सुनी आवाज?
0: मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। कैसी आवाज है?
1: कोई ऐसी भाषा है जिसे मैंने कभी नहीं सुना। बस मजार का शब्द समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं आता।
0: तो फिर ये आवाज आकाशवाणी है या फिर देवलोक से आ रही है? अब मुझे विश्वास हो गया, आप कोई मामूली औरत नहीं है, देवलोक की कोई अप्सरा है। यही तो मैं सोचा करता हूँ, आप इतनी हसीन क्यों हैं?
1: ओह अजय, क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा?

0: हुजूर आइए ना, खाना तैयार है। आइए बेगम साहिबा।
1: आए शन्ने मियाँ। अरे वाह, मजा आ गया शन्ने मियाँ, क्या लजीज कबाब बनाए हैं।
2: शन्ने मियाँ, आज कौन सा मसाला मिला दिया? ऐसे मजेदार कबाब तो हमने कभी खाए ही नहीं।
0: ए हुजूर, आज हमें नवाब अली मोहम्मद खान के जमाने के कबाबों का नुस्खा याद आ गया।
1: अच्छा,
0: हमारे दादा को याद था ये नुस्खा, और हमारे बाप ने हमें बताया था। कुंवर राजवीर सिंह जी भी बड़े शौकीन थे कबाबों के। हाँ।
2: कुंवर राजवीर सिंह, हम तो इन्हें जानते भी नहीं।
1: बहुत पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं आज शन्ने मियाँ।
2: कुछ तो बताइए ना, कुंवर राजवीर सिंह, नवाब अली मोहम्मद खान, कौन लोग थे ये?
1: नवाब अली मोहम्मद खान रोहेला नवाब थे आशा, और कुंवर राजवीर सिंह उनके दीवान थे, और शन्ने मियाँ के बुजुर्ग हमेशा से यहीं रहे, समझिए आप।
2: कहाँ के नवाब थे अली मोहम्मद खान?
1: कठेर के नवाब थे, जिसे आजकल रोहेलखंड कहा जाता है। यूनो आशा, मैं तो हिंदुस्तान से बाहर ही रहा, पुराने जमाने की बातें याद नहीं। ये कोठी भी हमारी ना जाने कितनी पुरानी है, मेरे ख्याल से दोबारा तोड़कर बनाई गई है। 250 साल पुरानी तो नहीं लगती।
2: शायद इसीलिए तुम्हें पुरानी इमारतों से बहुत प्यार है, खास तौर से रोहेले नवाबों की इमारतों से। इसीलिए तो बार बार खंडहरों की बातें करते हैं। मेरी राय में हमें खंडहरों के बारे में एक किताब लिखनी चाहिए, खंडहरों की कहानी, खंडहरों की जबानी।
1: गुड आइडिया, जरूर लिखेंगे, नाम भी बहुत अच्छा है, खंडहरों की कहानी, खंडहरों की जबानी। और हाँ, अब तो इस आवाज का राज भी जानना पड़ेगा। ठीक है आशा, कल चलेंगे।
0: ए हुजूर, हम भी चलेंगे साथ में।
1: अच्छा भाई, ठीक है।

0: आप गाड़ी में बैठे शन्ने मियाँ, हम अभी आ रहे हैं।
1: कुंवर साहिब, अंधेरा होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं आप?
0: उधर घाटी में।
1: उधर? वहां तो कब्रिस्तान है, वहां कौन मिलेगा आपको?
0: देखने में क्या हर्ज है, आओ आशा।

0: आवाज सुनाई दी आपको?
1: नहीं, शायद अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है।
0: संभल कर नीचे उतरिएगा, जरा इधर से आइए। आशा,
1: अजय, सुनी तुमने आवाज? मुझे तो सुनाई दे रही है।
0: अरे हाँ, कुछ सुनाई दिया। बड़ा दर्द है इस आवाज में। चलो देखते हैं।
1: वो देखो जी, सामने वो उधर कुछ रोशनी दिखाई दे रही है।
0: हाँ, कोई दिया जलता दिखाई दे रहा है। वो सामने जहाँ कब्रें हैं।
1: मुझे तो एक साया भी दिखाई दे रहा है।

0: गाइड ने इसका मतलब बताया था।
1: हम गरीबों के मजार पर ना कोई दिया जलाता है, ना फूल चढ़ाता है, ना किसी परवाने का पर जलता है और ना किसी बुलबुल के चहकने की आवाज आती है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ये शेर।
2: आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। अच्छा हुआ तुम आ गए।
0: आप हमारे मुंतजिर थे?
2: हाँ, बूढ़ा हो गया हूं ना, इसीलिए किसी जानशीन का इंतजार था मुझे। हर बुढ़ापा किसी जानशीन का इंतजार करता है, जैसे जैसे ये कब्रें हमारा इंतजार करती हैं। ना ना बेटा, खौफ ना खाओ, आजा आजा, आगे आओ। अरे तुम लोग तो बड़े हिम्मत वाले हो, इस अंधेरे में भी यहां तक आ गए। लोग तो मुझे जिन या भूत समझकर भाग जाते हैं। मेरे करीब आओ बेटा। हाँ,
0: सलाम बाबा।
2: आ जाओ, आओ।
3: सलाम बाबा।
2: जीती रहो बेटी, बड़ा खुशकिस्मत है ये अलादीन भी। आज चरण छूने वाली बेटी भी मिल गई। वाह मेरे मौला वाह, तेरे यहां देर है पर अंधेर नहीं।
0: मेरा नाम कुमार अजय सिंह है और ये मेरी पत्नी आशा है।
2: अच्छा, तुम्हारा रिश्ता कुंवर राजवीर सिंह से तो नहीं?
0: जी, उन्हीं के खानदान से हूँ।
2: रिश्तेदार हैं?
0: जी, हम आपस में रिश्तेदार हैं।
2: हाँ, ये 1742 की बात है। नवाब अली मोहम्मद खान ने अल्मोड़े को फतह किया था। रोहिला फौजें वापस चली गई और मेरे बुजुर्ग यहीं ठहर गए। जानते हो क्यों?
0: मैं नहीं जानता बाबा।
2: यह जगह कुंवर राजवीर सिंह को पसंद आ गई है। दीवान थे वो नवाब साहब के, एक बहुत बड़ा इलाका उन्होंने जागीर में ले लिया था। हमारे बुजुर्ग दीवान साहब के नौकर हो गए।
3: फिर क्या हुआ बाबा?
2: वक्त बदला बेटा, रोहिलों की हुकूमत खत्म हो गई है, जागीर छिन गई और फिर सब रिश्ते टूट गए। आज 261 साल के बाद फिर से ये रिश्ते जुड़े हैं बेटा। तन्हा रह गया है अल्लादीन, सब चले गए बड़े बड़े शहरों को, खो गए जगमगाते शहरों की रोशनी में। सिर्फ सिर्फ मैं ही बाकी रह गया हूं, अपने आका के कब्र पर दिया जलाने वाला, और कोई नहीं।

0: कोई नहीं।
1: आओ आशा, हम दोनों भी दो दिए और रोशन करें इस समाधि पर।
2: जी।
0: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसी रोशनी हो गई मेरे आका की कब्र पर। कितना खुश नसीब है अलादीन।
2: ये किसका मजार है बाबा?
0: अभी तक तो ये कब्र है बेटा, पर एक दिन मजार भी बन जाएगा। आया करेंगे लोग इसे देखने। हाँ, आया करेंगे लोग इसे देखने। हाँ, ऐसा मेरा यकीन है बेटा, मेरा यकीन है।
1: किसकी कब्र है बाबा?
0: इस गुमनाम कब्र में आराम करने वाले का नाम है रोहिला सरदार दाऊद खां। रोहिला सरदार दाऊद खां।
1: सरदार दाऊद खां रोहिला?
0: इसके जानशीन आज भी रामपुर में आलीशान महलों में आराम कर रहे हैं।
2: अच्छा बाबा।
0: और इस गुमनाम कब्र पर ना साया है और ना लोहे मजार। कोई नहीं जानता किसकी कब्र है ये।
2: बड़े दुख की बात है बाबा, अपने पूर्वजों की समाधि को इस तरह लावारिस नहीं छोड़ा करते।
0: ऐसा ही होता है बेटा इस दुनिया में, ऐसा ही होता है। वारिसों को सिर्फ जमीन और दौलत की जरूरत होती है, बुजुर्गों की कब्रों की नहीं। इसीलिए तो बादशाहों और नवाबों के मकबरों में अंधेरा रहता है।
1: लेकिन बाबा, सरदार दाऊद खां कौन थे? वो अल्मोड़ा कैसे आ गए? समझ में नहीं आया कुछ।
2: हाँ बाबा, ये बात समझ में नहीं आई।
0: मैं बताता हूँ। 300 साल पहले कठेर का मुगल सूबेदार नवाब अजमतुल्लाह खां और इन पहाड़ों के रहने वाले सब जानते थे सरदार दाऊद खां को, पर आज कोई नहीं जानता। ये कब्र तारीख है अपने अहद के शुमाली हिंदुस्तान की। जानना चाहते हो?
1: जी बाबा, बताइए कुछ उत्तरी भारत के इस बहादुर इंसान के बारे में।
0: तो ठीक है, फिर कल आना इसी वक्त।
2: जी।
0: अब मेरे जाने का वक्त हो गया है
1: बाबा।
0: हाँ बेटा, मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।

0: की घटा हृदय पे छाई जाए है, हाय सावन की घटा।
1: वाह शन्ने मिया, आज घटाओं को देखकर मल्हारे गा रहे हो।
0: है कुंवर साहिब, ये मल्हार नहीं चार बैत है नवाब रजा अली खां की है।
1: अच्छा चलते हैं हम लोग, देर हो जाएगी नहीं तो।
2: हाँ ठीक है।

0: सलाम बाबा।
1: आ गए बेटा।
0: जी बाबा।
1: हाँ आओ, इंतजार कर रहा था तुम्हारा। तुम दोनों के इंतजार में बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, सरदार दाऊद खां के बारे में जानना चाहते थे ना?
0: जी बाबा, हम लोग कुछ नहीं जानते उनके बारे में।
1: अरे आप लोग ही नहीं, कोई नहीं जानता कि ये दाऊद खां की कब्र है। पर बेटा, उनके बारे

0: पंचाल या जिसे पंचाल भी कहते हैं उसी पंचाल का इलाका आया।
1: अच्छा बाबा।
0: फिर किसी जमाने में पंचालों की हुकूमत उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल में तकसीम हो गई।
1: अच्छा।
0: उत्तरी पंचाल की राजधानी रामनगर थी।
1: रामनगर तो काशीपुर से ऊपर है, लीची के बागात है वहाँ।
2: हाँ, हम लोग तो गए थे वहाँ। नेशनल कॉर्बेट पार्क भी तो रामनगर में है।
1: हाँ।
0: नाम से धोखा खा गए तुम, इसीलिए तारीख में बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। अरे मैं जिस रामनगर की बात कर रहा हूँ वो आजकल रोहेलखंड में है, आंवले के पास, जिला बरेली में। बड़ा कदीम मंदिर है वहाँ जैनियों का।
2: और बाबा उत्तरांचल वाला रामनगर?
0: रामनगर ये नाम ज्यादा पुराना नहीं, एक अंग्रेज अफसर मिस्टर रेम जी ने इसे 1850 में आबाद किया था। अब लोग गलती से मिस्टर रेम जी को राम जी कहते हैं।
2: अच्छा।
0: इस पहाड़ी रामनगर से आगे चिलकिया और लाल डांग है, जहां मेरे आका सरदार दाऊद खां के बेटे नवाब अली मोहम्मद खां की हुक्मरानी थी। लाल डांग और चिलकिया में रोहिलों की मराठा, अवध के सूबेदार सफदरजंग, नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के साथ कई जंगें हुई थी। कई बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं इस इलाके में। हाँ बेटा, जहां जंग में मारे गए रोहिलों की बहुत सारी कब्रें हैं।
1: अच्छा बाबा।
0: और करीब ही अफजलगढ़ है, जिसे नवाब नजीबुद्दौला के भाई अफजल खान ने रोहेला कॉलोनी के नाम पर आबाद किया था।
1: ऐसा लगता है बाबा, पहाड़ की हर कब्र, हर कब्रस्तान अपने युग का इतिहास है।
2: हाँ।
0: अब देखो ना, बाहर चली पंचालों की राजधानी रामनगर से और हम पहुंच गए तराई भावर के इलाके रामनगर में।
2: अच्छा याद दिला दिया आपने, हम पूछना चाहते थे ये तराई का इलाका क्या है। बार बार ये शब्द सुनते थे पर कुछ जानते नहीं थे, आप ही कुछ बताइए ना बाबा, क्या होता है तराई भावर?
1: हाँ बाबा।
0: अरे बेटी, पहले पंचाल की राजधानी की बात तो पूरी सुन लो। दरअसल मैं बताना ये जा रहा था कि उत्तरी पंचाल को अहिच्छत्र भी कहा जाता है। जब अहिच्छत्र का इलाका राजा द्रुपद के कब्जे में आ गया तो कौरव और पांडवों ने उस पर हमला कर दिया। उसका आधा इलाका छीन कर राजगुरु द्रोणाचार्य को दे दिया गया।
1: अच्छा बाबा, और फिर?
2: और उनकी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। इसका मतलब ये हुआ बाबा कि जिस कठेर पर रोहेलों ने अधिकार किया था उसका इतिहास बहुत पुराना है।
0: हाँ बेटा, इतिहास हमारे तुम्हारे कदमों के नीचे है, सिर्फ तलाश करने की बात है। हमारे देश की तारीख और तहजीब बहुत पुरानी है बेटी। अब तुमने काशीपुर का जिक्र किया था जो रामनगर के रास्ते में।
2: जी बाबा, हम कॉर्बेट पार्क जाते वक्त वहां से गुजरे थे।
1: हाँ बाबा।
3: हाँ हाँ बेटी, मैं उसी काशीपुर की बात कर रहा हूँ। किसी जमाने में काशीपुर राजा भिषयक की हुकूमत में शामिल था और उसका नाम था गोविशाण। यहाँ कई तालाब थे जो अब सूख चुके हैं या उन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है।
2: अच्छा बाबा।
0: और उन तालाबों के किनारे कई मंदिर थे। तुम जानती हो बेटी, कृष्ण जी ने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ यहाँ बहुत दिन गुजारे थे।
1: अच्छा बाबा।
0: बस यूं समझ लो बेटा, महाभारत और रामायण के जमाने की कहानियां उत्तरांचल के पहाड़ों, जंगलों और आसपास के मैदानी इलाकों

0: बिखरी पड़ी हैं।
1: बाबा कुछ इस बारे में थोड़ा सा और बताइए।
2: हाँ बाबा बताइए ना।
0: बस यूं समझ लो बेटा, महाभारत के जमाने में यहाँ आर्य तहजीब का बोलबाला रहा। इसके बाद कई सदियों तक बौद्ध धर्म का असर रहा और फिर गुप्त राजाओं के जमाने में शिव और वैष्णव धर्म की बर्तरी कायम रही, जिसके सबूत कठेर के कदीम शिव मंदिरों से मिलते हैं।
1: अच्छा बाबा।
0: सक, सुग, सीथियन और आदिवासी कबीलों का यहाँ पर कब्जा रहा। और बेटा ये भी कहा जाता है कि आंवले की तहसील रामनगर में पार्श्वनाथ ने ठहर कर इबादत की थी, जिसकी यादगार पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है।
2: एक बात बताइए बाबा, महाभारत काल का पांचाल, अहिछत्र, फिर कठेर और कठेर से रोहिलखंड कैसे बना?
0: हाँ बेटे, कदीम तारीख तो कहानियों, महाकाव्यों और लोक गाथाओं की धुंद में छिपी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में तुर्क सुल्तानों, मुगल बादशाहों और रोहिलों के आने से तारीख रोशन हो जाती है। उस जमाने की तारीखी किताबें शाही फरमान और गैर मुल्की सयाहों के सफरनामे हर वाकये और हर जंग का तफसील से जिक्र करते हैं बेटी।
1: लेकिन बाबा पांचाल प्रदेश को कठेर कहने की कोई ठोस वजह तो होगी।
2: हाँ
0: हाँ बेटा, वजह तो है। जब किसी जमाने में सूरवंशियों में से निकाले गए कठेरिया राजपूत बरेली और शाहबाद के इलाकों में आबाद हो गए, तो पंचाल का ये इलाका कठेर के नाम से मशहूर हो गया।
2: अच्छा बाबा।
3: और कठेरिया राजा हरदत्त बड़ा नामवर हुक्मरान गुजरा है बेटा। कुछ जमाने बाद बलदेव चौहान ने कठेर के बड़े इलाके पर कब्जा करके इसे इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली राज में मिला लिया।
2: अच्छा, तो बाबा पहले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था?
0: हाँ बेटे, कठेरिया पहाड़ों के दामन में दूर दूर तक फैले हुए घने जंगलों में आबाद हो गए, और जब चौहान वंश के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1142 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हाथों शिकस्त खाई, तो उस इलाके पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों के कई खानदानों, खिलजी, तुगलक वगैरह ने यहाँ पर सदियों हुकूमत की है बेटी। और उसके बाद सैयद वंश का कब्जा रहा, पठानों का लोदी खानदान हुकूमत करता रहा, और फिर मुगल साम्राज्य कायम हो गया। और उसके बाद 18वीं सदी के इब्तदाई दौर में रोहिलों ने कब्जा कर लिया।
1: अच्छा बाबा, फिर?
0: बस यहीं से सरदार दाऊद खान रोहिला की कहानी शुरू होती है। अच्छा बेटा, अब मेरे चलने का वक्त हो गया है।
1: जी बाबा,
2: जी बाबा।
0: मैं चलता हूँ।
2: बाबा तो चले गए, अब हम भी चले आ जाए।
1: हाँ आशा, बाबा तो चले गए, अब हम कल आएंगे बाबा से मिलने।
2: हाँ ठीक है,
1: चलो
2: चलो।
4: अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कहानी खंडहरों की पहली कड़ी। इस रेडियो धारावाहिक के निर्देशक हैं राजेश तिवारी, सह निर्देशक संजय गिरी, लेखक नफीस सिद्दीकी। इस धारावाहिक के निर्माता हैं दमनिया इंटरनेशनल। तो दूसरी कड़ी में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
5: कहानी खंडरों की ये धारावाहिक अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम धरोहर अब यहीं संपन्न होता है।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

अनभावन कार्यक्रम सुनने वालों को एमन तंजील का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं अपनी भेजी गई शब्दावली के द्वारा। आप हमें अपनी शब्दावली भेजते हैं और हम उस पर आधारित गीत आपको सुनवाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। हमारे जिन श्रोताओं को नहीं पता है उनको हम अपने बता दें कि आपको सिर्फ ईमेल में टाइप करना है एड्रेस पत्र मिला aarrampur@gmail.com। आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर अपनी शब्दावली भेजिएगा, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम आपको शब्दावली पर आधारित गीत सुनवाएंगे। चलें आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज की पहली शब्दावली हमारे पास है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी। लिखते हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर रेडियो सुनते सुनाते हुए 25 साल का वक्त कैसे बीत गया पता नहीं चला। 25 साल के समय ने आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बहुत से उतार चढ़ाव आए, मगर आकाशवाणी का जलवा ज्यों का त्यों कायम रहा। आकाशवाणी ने श्रोताओं का न कि मनोरंजन किया बल्कि श्रोताओं के ज्ञान को भी बढ़ाया, श्रोताओं को सही सूचना पहुंचाई, श्रोताओं को अच्छे दोस्त दिए, उनको अच्छे हम सफर दिए, श्रोताओं का साफ सुथरा मनोरंजन किया। आज सोशल मीडिया के दौर में भी आकाशवाणी एक मजबूत चट्टान की तरह अपने बलबूते पर कायम है। मैं आकाशवाणी सुनने वालों की न पहले कमी थी न आज कमी है। कुछ दोस्त थे जो बिछड़ गए, आज उनकी बहुत बहुत याद आती है। जो कभी दोस्त होते थे, कभी साथी होते थे, कुछ दुनिया से चले गए तो अभी भी कुछ साथ हैं तो सफर बना हुआ है। लेकिन जो चले गए उनकी यादें साथ हैं। खुदा से दुआ है कि वो जहां हैं वहां सुकून से रहें और जो साथ हैं वो सालों साल जिएं। हजारों साल तक आकाशवाणी भी यूं ही बरकरार रहे, कायम रहे।

0: अगला पत्र, अगली शब्दावली हमारे पास है। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी साहब, रईस दूल्हा अंसारी और इनके परिवार के सभी साथियों की। लिखते हैं कि मुस्कुराकर जीना सीखो, किसी की खातिर दुनिया से खफा होने का क्या फायदा, यहां किसी का एहसास नहीं किसी से बिछड़ जाने का या किसी के भी बिखर जाने का। जिंदगी जितनी है तो हंस के गुजारो, दोस्त गम कम नहीं होते, आंखों को भिगोने से किसी की चाहत में खुद को उदास मत करना। लोग आदतें छोड़ जाते हैं साथ निभाने से पहले, जिंदगी एक सफर है, मुस्कुरा कर जी लो। दिल नहीं बहल रहा तो आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, माना कि यही आंसू दिल की जुबां हैं।
1: ये आंसू मेरे दिल

मन भावन, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और इसमें हम आपको शब्दावलियों पर आधारित कुछ नगमे सुनवा रहे हैं। एक और शब्दावली, एक और पत्र हमारे पास मौजूद है राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर से। रूमा खान, बॉबी खान, सुभान, मदीहा, गुलफशा, जीनत अमान, शबनम अब्बासी, शमा परवीन लिखते हैं कि जी हाँ दोस्तों, औरत हर रूप में हमारे लिए काबिल एहतराम है। औरत हया का मुजस्सिमा है, खुदा की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। औरत के बगैर घर में बरकतें नाजिल नहीं होती। औरत का दिल नहीं बोलता तो उसकी आंखें बोलती हैं। औरत का प्यार उस समुद्र की तरह है जो कभी खुश्क नहीं होता। औरत का दिल जितनी नरमी से प्यार करता है उतनी ही नरमी से रिश्ता निभाता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि कुदरत ने भी औरत को वो हसास दिल, वो नरमी दी है कि वो दूसरों की तकलीफ, दूसरों का

ज़ख़म बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, बल्कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए कुर्बान कर देती है। एक और पत्र, एक और चिट्ठी हमारे पास है बजरिया मुल्ला ज़रीफ से, फ़ातिमा, अब्दुल क़ादिर और इनके सभी साथियों की। लिखते हैं कि जब इंसान के पास कोई नेमत या कोई इंसान मौजूद होता है तो तब तक उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो चला जाता है या वो चीज़ बिछड़ जाती है तो एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। हमने सिर्फ इंसान या वो कीमती शय नहीं खोई होती है, हमने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा खोया होता है, हमने अपनी रूह का हिस्सा खोया होता है। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारे पास हमारे रिश्ते, हमारे अपने और हमारी कीमती चीज़ें मौजूद हैं, तब तक हमें उनको सहेज कर रखना चाहिए। दुनिया में कोई चीज़ काम नहीं आती है, यही अपने, यही रिश्ते काम आते हैं, और जब ये बिछड़ जाते हैं तो रूह का एक ज़रूरी और अहम हिस्सा बिछड़ जाता है, फिर ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल सा हो जाता है।

लाल मस्जिद से अगला पत्र हमारे पास भेजा है। रेहान मेहताब, साथ में है वजाहत और इनके सभी साथी। लिखते हैं कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी खुशियों की बारिश होती है तो कभी मुश्किलों के बादल इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कई बार हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि इंसान खुद पर शक करने लगता है, उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन असली हिम्मत वही होती है जब इंसान टूटने के बाद भी दोबारा खड़ा होना सीख ले, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर परेशानी अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आती है। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों की परीक्षा लेती है जो जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना रखते हैं। रास्ते में लोग रोकेंगे, बातें करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो कोई भी ताकत तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास और उसका सब्र होता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तब मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जीत हासिल करना नहीं, बल्कि हर हार से कुछ सीख कर फिर से आगे बढ़ना है। जो लोग संघर्ष से डर जाते हैं वो अक्सर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग हालात से लड़ना जानते हैं वही एक दिन इतिहास बनाते हैं। इसलिए कभी भी बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर मेहनत सच्ची हो, नीयत साफ हो और हौसले बुलंद हों तो मंजिल एक दिन जरूर मिल जाती है।

0: मन भवन कार्यक्रम से अभिनंदन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भवन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजे अब सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख

0: अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए आज हमारे केंद्र से खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद संभल उत्तर प्रदेश हमें सूचित करते हैं कि जफर पुत्र मोमिन निवासी ग्राम कटौनी थाना हजरतनगर गढ़ी जिला संभल विगत 18 मई 2026 11 बजे से लापता है। जफर की उम्र 18 वर्ष है। जफर का कद 5 फीट है। शरीर सामान्य है। जफर का चेहरा लंबा है और आंखें काली हैं। जफर के बाल काले हैं और उन्होंने सफेद शर्ट नीली पैंट पहनी हुई है। यदि आप में से किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना हजरतनगर गढ़ी जनपद संभल। सूचना समाप्त हुई।

0: प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि मालवती पत्नी चौधरी निवासी गड़ा थाना धनारी जनपद संभल विगत 28 अप्रैल 2026 से लापता हैं। मालवती की उम्र करीब 32 वर्ष है और वो घर से किसी काम से गई थी। मालवती की आंख नाक कान कद औसत है, रंग गेहुआ है। मालवती ने शलवार सूट पहना हुआ है और उम्र करीब 32 वर्ष है। यदि आप में से किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना दनारी जनपद संभल। सूचना समाप्त हुई।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: राष्ट्र राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ मातृभाषा मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: हमारा अभिमान है,
1: हमारी एकता,
0: हमारा मान है,
1: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
0: हमारी शान है
1: इस एकता की सुदृढ़ता।
0: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बने।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम सुनने वालों को एमएम तंजील का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं अपने फरमाइशी गीत सुनने के लिए, और आपको अपनी फरमाइश भेजना होती है हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि है गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com पर। आप अपने फरमाइश, अपना नाम हमें भेजें और आपका पत्र शामिल होगा। आइए आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला फरमाइशी फिल्मी गीत हमारे जिन साथियों ने सुनना चाहा है वो हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुढ़ाना और इनके सभी साथी। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाके, ज्योति शाके, सक्षम शाके और इनके सभी साथी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता विराधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गंजेश कुमार, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल रॉय, बुल्की वाली और फलना झा। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कृष चौहान। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर, रतनमाला सुरलकर। आप सबकी फरमाइश पर पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत।

एक आपके नाम, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहाने। हमारे और भी श्रोता हैं, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष।

गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके सभी साथी। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। आप सबकी फरमाइश पर पेश है कुमार सानू और अलका याग्निक की ही आवाजों में ये गीत।

गीत आपके नाम कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है अलका याग्निक की आवाज में और फरमाइश है आप सभी की। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, शान सैनी और कार्तिक सैनी। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा। ग्राम खेड़ा टांडा रामपुर से मोहम्मद कामिल। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। संबलपुर कानकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्मण मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिका, कोयल सिका और डुगू भाविका। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे धड़कन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक को। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं माफ कीजिएगा, थोड़ा तकनीकी कारण है, इंटरनेट स्लो है, तो हमारे पास मेल्स थोड़ा लेट आ रहे हैं और वो थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो आप तक कुछ कुछ देर में थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है इस वजह से। अगला पत्र हमारे पास आया डोंडी लोहारा बालोद से हरिशंकर डोम और अनीता डोमीन, और जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक, राज अंसारी और फातिमा राज। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और इनके सभी साथी। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव और इनके सभी साथी। रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी। रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और इनके सभी साथी। जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। अभी आप सबने ये गीत अपनी फरमाइश पर सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक।

की आवाजों में फरमाइश है आप सभी की। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 खोपाली जिला यवतमाल से जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से सुवर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशव खुराना। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुन्निसा बेगम, अकरम सैफी, जायदा सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, आबाद खान। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: गीत आपके नाम कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अगला गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और शुएब खान। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, लड्डू जाटव और टुकटुक जाटव। उमरखेड़ से सिराज खान और शबाना खान। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुरलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया कुमारी। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। आप तो सबकी फरमाइश पर पेश है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, साथ में है निहार ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, मैं और अलका याग्निक को कार्यक्रम गीत आपके नाम का। अब आज का अंतिम गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं नई बस्ती गंगटिंडवाला से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी और मोहम्मद तौसीफ हाशमी, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। गंगटिंडवाला उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। गांव लोगर ठाकुरावाला से सुहर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम, यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1 बजने वाला है, अब सुनिए समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि

0: अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी।

0: श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी कि आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिवार जगत। इसमें हम आपको सुनाएंगे चर्चा, साथ में भोजन करने के फायदे, वार्ता आप सुन सकेंगे सपनों की सफलता की सीढ़ी और परिवार का अटूट साथ। वार्ताकार होंगे निशभ रस्तोगी। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में आप सुनेंगे कामकाजी महिला की दोहरी जिम्मेदारी विषय पर और साथ ही कुछ हेल्थ टिप्स आप तक पहुंचेंगी। शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। इसमें हम आपको सुनवाएंगे चर्चा, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे सही करें, भेंटवार्ता आप सुनेंगे कृषि विकास में संचार माध्यमों की भूमिका, बातचीत होगी डॉक्टर अर्पिता शर्मा से। साथ ही कृषि संकेत के अंतर्गत आप सुनेंगे गन्ने की फसल से अधिक पैदावार कैसे लें। कानून और हम, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। इसमें हम आपको सुनाएंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण कानून, वरिष्ठ अधिवक्ता से आप सुनेंगे, अधिवक्ता हैं कृष्ण कुमार सक्सेना। सुगम संगीत कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा शाम 7:31 पर। इसमें आप सुनेंगे नुसरत फलते अली खां की गायी चंद गजलें, साथ ही आपको सुनाएंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में भी कुछ गजलें। आज के मेहमान आप सुनेंगे रात 9:30 पर। इसमें हम आपको सुनाएंगे श्री जुबैर शमसी से असीम सक्सेना की बातचीत। खेल दर्पण, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा रात 10:00। श्रोताओं, ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
7: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का इफ्तिताह किया। इससे देही और आधे शहरी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
1: एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में फायर और इमरजेंसी खिदमत डिपार्टमेंट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रियासत में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
0: एक दीगर मीटिंग में वजीर आला ने हैंडलूम और महकमे कपड़ा, सनत और खादी और ग्रामोद्योग महकमे का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लिबास और मलबूसात शोबे में सरमायाकारी, प्रोडक्शन और रोजगार के नजरिए से मुल्क की सफे उगल रियासतों में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। दरियस्ता वजीर आला ने डिप्टी रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार तरीके से पासपोर्ट खिदमत मराकज की तर्ज पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन महकमे के कामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में आज भी मुनक़िद किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा समेत सभी जिला में बनाए गए इम्तिहान मराकज पर CCTV की निगरानी में यह इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है। तकरीरी बोर्ड मुनसिफाना और नकल से पाक इम्तिहान कराने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया के साथ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वाज़ेह है कि तकरीरी के अमल के तहत कुल 32,679 ओहदों के 28,86,797 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त के लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी कयादत में गुज़िश्ता 12 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बुनियाद पर हिंदुस्तान में काबिले जिक्र तरक्की हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी हुकूमत के 12 सालों के मुख्तलिफ शोबों में की गई कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम सेहत खिदमात के शोबे में हुकूमत की कोशिशों की जानकारी दे रहे हैं।
3: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
0: वजीर बनाए सेहत और कुनबे बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वजीर आजम महफूज जिचगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके मां और बच्चे की शरेआमवाद को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में जिचगी की सेहत खिदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी NTA ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले NEET UG दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फेहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर

0: रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रियासत में तेज धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासिर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत।

0: श्रोताओं, मैं आयशा अनवर स्वागत करती हूं आप सभी का परिवार जगत कार्यक्रम में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार,
1: और साथ ही में स्वीकार कीजिए प्रेरणा गुप्ता का भी प्यार भरा आदाब और नमस्कार। थाली में परोसा भोजन स्वाद तभी बढ़ाता है जब अपनों का साथ उसमें मिठास घोल जाता है।
0: बिल्कुल प्रेरणा, तो आइए बात करते हैं उस खूबसूरत आदत की जो परिवार को और भी करीब ले आती है, और वो है साथ में भोजन करने की।
1: जी श्रोताओं, हमारी आज की चर्चा का विषय भी यही है, साथ में भोजन करने के फायदे।
0: श्रोताओं, आज की व्यस्त जिंदगी में अक्सर परिवार के सदस्य अलग अलग समय पर भोजन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साथ बैठकर भोजन करना केवल पेट भरने का नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने का भी माध्यम है।
1: सही कहा आपने आयशा, जब पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है तो सभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलता है, दिन भर की बातें साझा होती हैं और आपसी समझ बढ़ती है।
0: और मैं आपको प्रेरणा बता दूं, मुझे तो अकेले भोजन करना पसंद ही नहीं है। मैं सब लोगों का इंतजार करती रहती हूँ कि कब एक एक करके घर पर आए और हम मिलकर एक साथ भोजन करें। इतना ही नहीं, साथ भोजन करने से बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं, वे बड़ों का सम्मान करना, भोजन का महत्व समझना और अच्छी आदत भी सीखते हैं।
1: अगर हम विशेषज्ञों की माने तो परिवार के साथ भोजन करना मानसिक तनाव कम करता है और व्यक्ति अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करता है।
0: बिल्कुल प्रेरणा, और जब घर का बना पौष्टिक भोजन सभी मिलकर खाते हैं तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, साथ ही भोजन का स्वाद और भी अच्छा रहता है। तो क्यों ना प्रेरणा, आप भी अपने बारे में बताएं, आप भी क्या साथ बैठकर भोजन करती हैं?
1: जी बिल्कुल आयशा, साथ में भोजन करने का तो मजा ही अलग है।
0: सच है, परिवार के साथ बिताए गए ये छोटे छोटे पल जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में बदल जाते हैं। परिवार के साथ केवल जीवन में खुशियां ही लाता है बल्कि परिवार जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति भी देता है।
1: कहते हैं सफलता की राह भले ही व्यक्ति स्वयं तय करे, लेकिन उस राह पर हौसला देने वाला परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम प्रस्तुत करते हैं एक वार्ता। विषय है सफलता की सीढ़ी और परिवार का अटूट साथ, और वार्ताकार हैं ऋषभ रस्तोगी।
2: नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ रस्तोगी है, मैं एक मॉडल एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने अपने जीवन में कई सारी सॉन्ग्स एल्बम, फिल्म्स और मॉडलिंग शोज भी किए, लेकिन ये सफलता मेरे लिए आसान नहीं थी। आज मेरा विषय है सफलता की सीढ़ी और परिवार का अटूट साथ। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार वास्तव में मानव सभ्यता के विकास की धुरी है, क्योंकि संस्कारों की प्रथम पाठशाला परिवार से है और माता प्रथम शिक्षिका होती है। संस्कारों के बिना विकास मानव के लिए विनाश बन जाता है, इसलिए यह मानव विकास यात्रा से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन जरूरी है, लेकिन इस यात्रा को सरल और सार्थक बनाने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संबंध अधिकतर समस्याओं के समाधान

कराया जा सके। यही खोजी प्रवृत्ति न सिर्फ राष्ट्र का विकास करती है बल्कि व्यक्तिगत चरित्र निर्माण करने में भी सहायक होती है। परिवार केवल एक संभल नहीं बल्कि वह मजबूत नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। विकास यात्रा में जब भी आप किसी असफलता का सामना करते हैं या अपने कैरियर बनाने के दौरान दबाव में होते हैं तो परिवार का साथ आपको टूटने नहीं देता बल्कि वह आपकी ढाल बनकर आपका हौसला बढ़ाते हुए सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। मानव विकास की यह प्रथम पाठशाला है क्योंकि जीवन की शुरुआती मूल्य और सही गलत की पहचान हमें परिवार से ही मिलती है जो भविष्य में उचित तथा सही निर्णय लेने में मदद करती है। प्रेरणा और त्याग का परीक्षण और अभ्यास हमें परिवार से ही मिलता है क्योंकि कई बार माता पिता और परिजन अपने सपनों को पीछे छोड़कर हमारी सफलता और लक्ष्य का प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि सफलता और परिवार के बीच संतुलन का आधार गुणवत्ता समय होता है इसलिए चाहे आप कितनी भी व्यस्त दिनचर्या में हों लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ समय निकालें। अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार को दें और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करें ताकि पारिवारिक सदस्यों को संतुष्टि मिले कि उनके द्वारा दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। परिवार के सदस्यों को अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर संघर्ष व्यक्ति के साथ अवश्य बिताना चाहिए और उनके साथ ऐसे संबंध रखें कि वह बिना डरे अपने मन की बात परिवार के दूसरे सदस्य से कह सके। हालांकि परिवार के सदस्य उनकी अनुचित बात को कभी ना माने लेकिन अपनी इच्छा थोपने के बजाय उनकी रुचि के हिसाब से उनके कैरियर बनाने में सहायक करना चाहिए। क्योंकि परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के आचरण की जूनियर सदस्य के चरित्र पर अमिट छाप होती है। परिवार के सदस्यों के गलत कार्यों को छिपाकर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश ना करें बल्कि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करवाएं ताकि वह अच्छे बुरे उचित अनुचित और लाभ हानि के अंतर को समझ सकें। परिवार को चाहिए कि वह बचपन से ही बच्चे को सबके साथ मिलजुल कर रहना और अपनी चीजें बांटना सिखाएं। अपनी सीमित आमदनी में से ही खर्चे करें और बच्चे की खुशी के लिए हैसियत से बढ़कर कोई भी कार्य ना करें ताकि बच्चे में बचत की प्रवृत्ति पैदा हो और वह दिखावटी तथा बनावटी जीवन से दूर रहें। उसमें जिद और छीनने की प्रवृत्ति पैदा ना हो। एक झूठ बहुत सी परेशानियों को जन्म देता है इसलिए परिवार के सदस्यों के सामने सच बोलना चाहिए। विशेषकर वादा निभाना चाहिए क्योंकि झूठा वादा करने से परिवार के दूसरे सदस्यों के मन में वरिष्ठों की इज्जत कम हो जाएगी और वह स्वयं भी झूठ बोलना सीखेंगे। कनिष्ठ यानी जूनियर सदस्य विशेषकर बच्चों को बार बार ना नहीं बोलना चाहिए। इससे उनमें नकारात्मकता बढ़ती है जो कि एक गंभीर समस्या है। इसलिए सच बोलते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के सदस्यों में सकारात्मकता बनी रहे ताकि उनकी व्यावसायिक प्रगति में कोई बाधा नहीं आए। लाड़ प्यार के साथ साथ अनुशासन रखना भी आवश्यक है। विशेषकर छोटे बच्चों पर सख्ती करना भी जरूरी होती है। स्पष्टवादी अच्छी बात है लेकिन अगर मनमुटाव और टकराव भी स्थिति पैदा करती है तो वह घातक होती है। इसलिए सबको साथ लेकर चलने की शिक्षा देनी चाहिए। आज प्रबंधन के क्षेत्र में टीम वर्क पर जोर दिया जा रहा है। मेरा जन्म 1992 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुर के निवासी धार्मिक परिवार में हुआ जहां सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना बहुत बड़ा अपराध समझा जाता था और मॉडलिंग करना तो महापाप समझा जाता था। पिताजी के परंपरावादी परिवार के ठीक विपरीत मेरा माता जी का परिवार बहुत उदार कला प्रेमी और विकासवादी था। जब हम दूसरे शहर अपनी ननिहाल जाते थे तो चोरी छुपे सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखते थे। मेरी नानी के घर के सभी सदस्य किसी न किसी कला से जुड़े हुए थे। मेरी माता जी स्वयं एक बहुत अच्छी चित्रकार हैं और उन्होंने मुझे बचपन में ही चित्रकारिता की शिक्षा दे दी थी। मैं बहुत छोटी उम्र में ही अभिनय करना सीख गया था लेकिन मेरे पिताजी के शहर में अभिनय प्रदर्शन नहीं कर सकता था। मैंने इस समस्या का समाधान निकालते हुए

0: स्कूल और मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान निकाली जाने वाली धार्मिक झांकियों में भाग लेना शुरू किया। फिर धार्मिक नाटकों के अभिनय करना शुरू कर दिया। जब मुझे पुरस्कार मिलने लगे और मेरे चरित्र अखबार में छपने लगे तो मेरे दादा दादी को गर्व हुआ और वह मेरी पिक्चर और पुरस्कार अपने रिश्तेदारों को दिखाते हुए मेरी खूब प्रशंसा करते थे। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए सिनेमा हॉल में लगी एक धार्मिक फिल्म देखने का निवेदन किया। मेरे दादाजी ने तुरंत मेरे पिताजी को आज्ञा दी, जाकर बच्चे को फिल्म दिखाओ ताकि वह अच्छे तरीके से अभिनय कर सके। इस तरह मैंने अपने शहर में पहली बार एक फिल्म सिनेमा हॉल में जाकर देखी, जो कि मेरे पिताजी के जीवन की पहली फिल्म भी थी। जिस परिवार ने किसी सदस्य ने सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म नहीं देखी थी, आज उस परिवार के सदस्य मेरे पिताजी ने मुझसे वचन लिया कि मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के एक चलचित्र बनाऊंगा। धीरे धीरे मुझे अपने शहर के बाहर जाकर अभिनय करने की परमिशन भी मिल गई, लेकिन मॉडलिंग करने की इजाजत मुझे नहीं दी गई, जिसका मुझे बहुत जुनून था। परिवार को लगता था कि मॉडलिंग पेशा अपराध जगत से जुड़ा हुआ था और मैं अभी परिपक्व नहीं हूँ। मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में 10 साल का विलंब हो गया। अर्थात मॉडलिंग पेशे के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष मैंने पारिवारिक रूढ़िवादी के चलते खो दिए, जिसकी आज तक भरपाई नहीं हो सकी। सिक्के का दूसरा पहलू है कि आज मुझे जो सफलता मिली है उसमें मेरी माताश्री और मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी माँ मेरी पहली गुरु है और वह बचपन में मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी रही। मुझे माता जी से जितना सहयोग चाहिए था उससे कई गुना अधिक बढ़कर उन्होंने मुझे समर्थन और सहयोग दिया। परंपरावादी परिवार और रूढ़िवादी शहर में मेरे लिए फिल्म बनाना संभव नहीं होता अगर मेरी पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी नहीं होती। कोई विरोधी या ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे चरित्र पर लांछन लगाता है तो मेरी पत्नी ढाल बनकर मेरे बचाव करती है। आज मैं अपने परिवार को साधुवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने सहयोग और बलिदान के बिना इस कलाकार की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती थी। परिवार एक ब्रह्मांड की तरह है जिसके सभी सदस्य नक्षत्रों की तरह चमकते रहते हैं। यह एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं। अगर सूर्य अपनी किरणें पृथ्वी पर भेजना बंद कर दे तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। इसी तरह अगर परिवार के वरिष्ठ सदस्य दूसरे सदस्य के साथ सहयोग ना करें तो पारिवारिक विकास यात्रा को विराम लग जाएगा। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि सफलता की सीढ़ी और परिवार में अटूट संबंध है।
1: श्रोताओं, ये थी ऋषभ रस्तोगी द्वारा प्रस्तुत वार्ता सफलता की सीढ़ी और परिवार का अटूट साथ। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का सफर कभी आसान नहीं होता। इस राह में चुनौतियाँ, संघर्ष और बहुत सारी कठिनाई के मोड़ आते हैं, लेकिन जब परिवार का विश्वास, प्रोत्साहन और साथ हमारे कदमों के साथ चलता है ना, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने आयशा, यदि परिवार उनका हौसला न बढ़ाता, हर कदम पर उनका साथ न देता तो शायद सफलता की मंजिल तक पहुंचना इतना आसान न होता। तो श्रोताओं, वास्तव में परिवार वह मजबूत आधार है जिस पर सफलता की ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है।
1: प्रेरणा मैम, आज के समय में अनेक महिलाएं घर और कार्य क्षेत्र दोनों ही जगह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। वो परिवार का सहारा भी हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के नए आयाम भी खड़े कर रही हैं। ऐसे में उनकी दोहरी भूमिका और दोहरी जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है।
2: तो 6 संकलित कार्यक्रम में हम बात करेंगे जागृति से। वो एक कामकाजी महिला है और उनसे जानते हैं वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही हैं। तो चलिए सुनवाते हैं ये 6 संकलित भेंटवार्ता।
3: हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार प्रेरणा जी।
3: जागृति जी, सबसे पहले आप यह बताइए कि आज की कामकाजी महिलाओं के लिए दोहरी जिम्मेदारी क्यों कहा जाता है?
4: क्योंकि प्रेरणा जी, आज की महिलाएं ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, अलग अलग क्षेत्र, अपनी नौकरी और घर वापस लौटकर परिवार, बच्चों, बुजुर्गों, रसोई और घर के कार्य की भी जिम्मेदारी संभालती है। दोनों एक साथ मैनेज करना

0: उनकी दोहरी भूमिका या दोहरी जिम्मेदारी कहलाती।
1: घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है?
0: प्रेरणा जी, मेरा मानना है सबसे बड़ी चुनौती समय का सही बंटवारा है। ऑफिस की डेडलाइन और घर की जरूरतें दोनों को साथ चलाना मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने वाला होता है। कई बार आराम का समय भी खत्म हो जाता
1: क्या परिवार का सहयोग एक कामकाजी महिला के लिए जरूरी है?
0: है। बिल्कुल प्रेरणा जी, जब परिवार साथ और समझदारी दिखाता है तो छोटे छोटे काम बांट लेता है और भावात्मक सहारा देता है तो महिला का बोझ आधा हो जाता है। सहयोग से तनाव कम होता है और वह दोनों भूमिकाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाती है।
1: जी, ये तो सही कहा आपने। अच्छा, कई महिलाएं गिल्ट महसूस करती हैं कि वे घर को पूरा समय नहीं दे पा रही। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
0: मेरा मानना है यह गिल्ट समाज की बनाई सोच है। नौकरी करना कोई कमी नहीं बल्कि परिवार के भविष्य की मजबूती है। महिलाओं को यह समझना चाहिए कि वे दोहरी भूमिकाएं निभाते हुए परिवार का स्तर ऊपर उठा रही हैं। इस पर गर्व होना चाहिए, गिल्ट नहीं।
1: कितनी अच्छी बात कही है आपने। कामकाजी महिलाओं की सेहत पर दोहरी जिम्मेदारी का क्या प्रभाव पड़ता है?
0: लगातार भागदौड़ से थकान, तनाव, अनियमित भोजन और नींद की कमी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। खुद की केयर पीछे छूट जाती है जबकि वही सबसे जरूरी है।
1: आपने जागृति जी बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि महिलाओं की सेहत परिवार की मजबूती का आधार कहा जाता है। अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तभी घर परिवार और बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएंगी। कामकाजी महिलाएं खुद को कैसे संभाल सकती हैं? आप कोई सुझाव देना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, मैं सुझाव देना चाहूंगी। एक, समय का सही प्रबंधन यानी कि दिन की प्राथमिकताएं तय करें।
1: जी
0: दूसरा, काम बांटना सीखें, सब कुछ अकेले करना जरूरी नहीं। तीसरा, अपने लिए समय 15-20 मिनट रोज खुद दें, चाहे व्यायाम करें, मेडिटेशन करें या जो भी उनकी हॉबी है वो करें।
1: अच्छा, समाज को क्या बदलने की जरूरत है ताकि महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी हल्की हो सके?
0: समाज को यह समझना होगा कि घर सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की है। घरेलू काम की बराबरी से भागीदारी, सम्मान और उनकी मेहनत को स्वीकार करना बहुत जरूरी।
1: आप सभी कामकाजी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी प्रेरणा जी कि सभी कामकाजी महिलाएं अपनी मेहनत और संतुलन से पूरे परिवार और समाज को मजबूत बना रही हैं। अपनी सेहत और खुशी को भी प्राथमिकता दें क्योंकि आप स्वस्थ और खुश होंगी तभी घर और करियर दोनों संभाल
1: जागृति
0: पाएंगी।
1: जी, आपके शब्दों ने हमें समझाया कि कामकाजी महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी सच में कितनी महत्वपूर्ण और सराहनीय होती है। आप जैसे लोग इस समझ को नया दृष्टिकोण देते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रेरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, ये था छेद संकलित कार्यक्रम कामकाजी महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी, और हमने बात की थी जागृति से और यह जाना कि वे किस प्रकार अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाती हैं। और अब वक्त है सुरों के संग कुछ पल बिताने का,
3: तो आइए शब्दों से संगीत की ओर कदम बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं एक प्यारा संगीत अपने श्रोताओं को।

श्रोताओं, शुरू की इस खूबसूरत दुनिया से लौटते हैं हम आज के दूसरे क्षेत्र संकलित विषय की ओर। हम बात कर रहे हैं कामकाजी महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी, और इसी पर भेंट वार्ता की है मैंने मरियम से।

0: तो चलिए सुनवाते हैं आप सभी को ये एक और भेंट वार्ता।
1: हमारे कार्यक्रम परिवार जगत में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
2: जी थैंक यू सो मच। मेरा नाम मरियम इकबाल है, मैं रामपुर में ही रहती हूँ, BWD कॉलोनी में।
1: जी
2: मैं पहले टीचिंग किया करती थी, 2 to 3 years मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस था। अभी जो करेंटली मैं वर्क फ्रॉम होम में हूँ, फ्लिपकार्ट में जॉब करती हूँ, कस्टमर सपोर्ट में थी, और अभी मैं एज अ सीनियर वर्क करती हूँ।
1: जी
2: तो मोर देन 1 year से मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ। मतलब
1: जी जैसा कि इस टाइम वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा चलन में है, तो आप ये वर्क किस तरह से करती हैं?
2: मेरा मतलब ऐसा होता है, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, इस टाइम बहुत ज्यादा है वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। आपको कहीं जाना नहीं रहता, घर रहकर ही आपको आपका काम करना होता है, सेविंग्स हो जाती है, अर्निंग अच्छी हो जाती है, तो मैनेज करना इजी रहता है। अब जैसे मेरे लिए 8 hours का शिफ्ट रहता है, तो मैं अब वो 8 hours शिफ्ट वीकली चेंज भी होती है। जैसे करंटली जो मेरी शिफ्ट चल रही है वो 11 to 8 चल रही है, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ अलग ऑफिस लिए, तो बता ये मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स होती है। जैसे 11 to 8 इस वीक चल रही है, लास्ट वीक मेरी 9 to 6 थी, तो इसी तरीके से होती है मॉर्निंग टू इवनिंग। 8 hours का आपको शिफ्ट रहता है, अभी वो मैनेज करना होता है। अभी जो मेरा वर्क है, पहले जैसे मैं कस्टमर सपोर्ट में थी, तो मेरा काम था कि मैं कॉल लेती थी, कॉल्स आती थी, कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करना। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और उसमें आपको कोई शिकायत आई है, तो आप उसके लिए कॉल करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में, तो मैं वही कॉल को आंसर करती थी। पहले मेरा ये वर्क था, लेकिन अभी जैसे कि मैं प्रमोशन हुआ, तो एज SME वर्क करती हूँ। मतलब मैं हेल्प करती हूँ दूसरे न्यू बैचेस की जो कस्टमर्स आए हैं, मतलब कस्टमर सपोर्ट के लिए एजेंट्स, उनकी हेल्प करके उनको प्रोसेस समझाना कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करना होता है। अभी करंटली मैं वो करती हूँ।
1: जी तो पहले आप टीचिंग करती थी और अब आप ये वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो शुरू में आपको इसमें कुछ परेशानियां आई होंगी?
2: जी बिल्कुल परेशानियां आती हैं, मेरे लिए ये अलग ही फील था। अब आप समझ सकते हैं टीचिंग फील्ड से और फिर इधर सडनली आना वॉइस कॉल और ये सब कस्टमर हैंडल, तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। स्टार्टिंग में कोई भी फील्ड हो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब हम एक बार उस काम में सही समझ में आ जाता है और हमें उस काम में इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर वो मैनेज भी हो जाता है और वो ईजी हो जाता है समझने के लिए।
1: जी।
2: तो मेरे लिए टीचिंग मतलब वो मेरा शौक था, कि मुझे बहुत ज्यादा शौक था स्टार्टिंग से ही कि मैं मतलब टीचिंग करूं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा मतलब सैलरी भी मिल रही है, इतनी मेहनत नहीं, आपको घर में रहकर ही वर्क कर सकते हैं आप।
1: जी।
2: बस इतना है कि हाँ, आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को जितना आप अपने जॉब करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, तो उसमें आप दे सकते हैं। इसमें ये रहता है कि आपको रिटायर देना है, उसके बाद अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो फैमिली को दे सकते हैं। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट थी स्टार्टिंग में, एक ऑफ मिलता है क्योंकि वीक में और बाकी 6 days वर्किंग रहती हैं, तो लेकिन आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इजी रहता है, आ गया है वर्क समझ में, तो प्रॉब्लम भी नहीं होती है, मैनेज हो जाता है।
1: जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में हमें उसी काम में आदत हो जाती है। ये काम तो इतना अच्छा है कि वर्क फ्रॉम होम, हमें कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर पर रहकर ही हम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
2: जी जी सबसे अच्छी बात, और वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है, जैसे आप हाउस वाइफ है तो उनको अर्निंग भी कर सकती हैं अपना, साथ ही साथ घर भी मैनेज कर सकती हैं, और वो कहीं जाना भी नहीं रहता, कोई एक्सपेंसिव नहीं होते, कोई ट्रांसपोर्ट का नहीं देना होता आपको, कपड़े वगैरह इस सब में नहीं करना होता है। आप घर से रह करके अपने आराम से कंफर्ट जोन में अपने रूम में बैठकर, बस आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए। और भी जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ वहां तो लैपटॉप मेरा अपना मतलब पर्सनली यूज करती हूँ, रेस्ट जो कंपनीज है जैसे अमेजोन हो गई, तो वहां से तो आपको सिस्टम ये लैपटॉप प्रोवाइड भी किया जाता है जिससे कि आप इजिली वर्क करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपको अपना थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ टाइम मैनेज करना होता है, चीजें मैनेजेबल हो जाती हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
1: जी और आजकल ये ऑनलाइन शॉपिंग तो इतनी ज्यादा चलन में आ गई है कि हर कोई मार्केट जाने का, अगर लोगों के पास वक्त नहीं है तो घर बैठे वो शॉपिंग कर लेते हैं और वो चीज वो प्रोडक्ट आपके पास बहुत आसानी से आ जाए।
2: बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है कि आप जाएं आप कहीं पर भी इतना टाइम दें, क्योंकि एक शॉप से नहीं है, आपको फिर मार्केट जाना, तो आप डिफरेंट शॉप्स पर जाकर के चीज देखेंगे, तो उसमें आपका टाइम बहुत लगता है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप अपने फोन में ही चेक कर लीजिए, एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, आपने एप्लीकेशन में सर्च किया जो उस प्रोडक्ट की नीड है, वो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर आप परचेज कर लिए, आपके घर पर प्रोडक्ट आ जाएगा विद इन 3 to 5 days में, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। आपको कुछ कहीं जाना नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता, कई बार तो ऑफर्स रहते हैं तो और भी जो एक्चुअल प्राइस होता है MRP उससे भी कम प्राइस में मिल जाता है ऑफर पर।
1: जी कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम खरीदारी के लिए या अपनी मार्केट से कुछ हमें शॉपिंग करनी है तो हम घर से बाहर निकल सके, तो हम ये घर बैठे ही अपनी ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी हमें जरूरत का सामान है वो मंगा सकते हैं।
2: बिल्कुल, और सारी चीजें हैं आजकल, आज के टाइम में तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि आप नहीं परचेज कर सकते। ग्रोसरी से लेकर आप जितना चाहें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, आपको ग्रोसरी जो आप

0: से परचेज करते हैं वो अवेलेबल मिल हो सकती है घर पर टाइमली, और आपका जो भी प्रोडक्ट्स ऐसे यूजफुल रहते हैं वो भी आप इजीली ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, काफी मतलब इजी हो गई अब लाइफ देखी जाए तो लोगों की।
1: जी, और ये बहुत अच्छी बात है, आप घर बैठे जो है अपना काम भी कर लेती हैं।
0: वही चीज है कि मैं अब जैसे कर लेती हूँ वर्क मॉर्निंग में, अपना ये शिफ्ट रहती है, और इवनिंग में ट्यूशन भी लेती हूँ, तो मेरे पास जो अर्निंग ट्यूशन का भी हो जाता है, जैसे आते हैं बच्चे तो मैं उनको भी हैंडल कर लेती हूँ।
1: जी, आपके साथ वक्त के साथ जो है मतलब ये नहीं है कि आप किसी की मोहताज हैं।
0: और सेल्फ डिपेंडेंट होना भी चाहिए। मैं मेरा मानना है कि कोई भी लड़की हो, कोई भी विमेन हो, आप भले से आपके पास है ठीक है इनकम सोर्स भी, आपके हस्बैंड है या फादर है ठीक है, विच इज वेरी गुड कि वो अर्न करते हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इंसान खुद से करता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सैलरी होती
1: बात है।
0: है, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने मन से मर्जी से जब चाहें जो चाहें वो खरीद सकते हैं, आपको किसी पर डिपेंड होने की नीड नहीं होती, और साथ ही साथ सेविंग्स भी कर सकते हैं आप जितनी, बिल्कुल। तो वही चीज है कि अब मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है कि पहले ही होता था कि नहीं, पहले फादर से कहना होता था अपनी जरूरत की चीजों के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, अब खुद से ही मैनेज हो जाता है कि जो चाहिए वो इजिली मंगा लिया जाता है।
1: तो मरियम जी, आप जाते आते हमारे श्रोताओं को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी अगर कोई भी वर्क है, आप बिल्कुल इसमें आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। कोई भी वर्क स्टार्टिंग में लगता है डिफिकल्ट, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि जब हम नहीं जानते हैं, अब लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं कि इसमें ज्यादा मेहनत रहती है, कोई भी काम हो मेहनत बिल्कुल है, लेकिन इसमें साथ ही साथ अर्निंग भी है। आप अगर किसी स्कूल जॉब को करेंगे, प्राइवेट स्कूल में आपको प्राइवेट सेक्टर में उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, उसका डबल सैलरी आप खुद से अर्न कर सकते हो घर बैठकर, तो ये बहुत अच्छा है अगर वुमेन्स के लिए स्पेशली, कि उन्हें कहीं जाना नहीं है अपना, बस थोड़ा सा, हाँ ये रहता है एक रूम में आपको अपना एडजस्टमेंट करना है सिस्टम लेकर, आपको 8 आवर्स के लिए यहाँ थोड़ा बैठना है, लेकिन उसके बाद जब आप इस वर्क में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फिर साथ ही साथ अपनी फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स ये सब भी मैनेज कर पाएंगे और इजिली, और अर्निंग्स का तो है ही कि सेविंग्स तो आप कर ही सकते हैं।
1: जी, कुछ महिलाएं शादी के बाद घर से निकलने में उन्हें थोड़ी परेशानी
0: जी
1: होती है,
0: जी
1: तो ये काम उनके लिए बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मेरी अपनी भी जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनकी शादी हुई है, वो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें रेफर किया, तो वो अब कर रही हैं, इवन किसी के बच्चे हैं तो वो भी कर रही हैं, क्योंकि वही चीज है कि कोई भी हो, मैं या आप सभी ये चाहते हैं कि अर्निंग हो अच्छी, और टाइम सेविंग सबसे अच्छी बात यह है, फिर इसमें आपको कुछ ऐसे नहीं होता, कोई मेहनत नहीं, आप कंफर्ट जोन में अपने आराम से बैठकर कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं, कहीं किसी को कुछ जाकर कहना नहीं पड़ता, किसी के कोई बॉसी टोन नहीं होती, कोई आकर आपको कुछ बोल नहीं रहा, आप खुद आराम से अपना काम कर सकते हैं।
1: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
2: श्रोताओं, ये थी 6 संकलित भेंट वार्ता, कामकाजी महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी, और हमारी साथी आयशा अनवार बात कर रही थी मरियम से। हमें उम्मीद है आपको यह जरूर पसंद आई होगी।
3: श्रोताओं, स्वस्थ शरीर ही सुखी और सफल जीवन की पहली शर्त है। व्यस्त दिनचर्या में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि अच्छी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: तो अब समय हो गया है स्वास्थ्य की बात करने का। हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे परिवार और आसपास के लोगों को भी। वो आदत है धूम्रपान।
3: बिल्कुल प्रेरणा, धूम्रपान आज दुनिया भर में कई गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू के अन्य उत्पादों में मौजूद हानिकारक रसायन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे अधिक प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई, खांसी और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है।
2: इसलिए धूम्रपान से करें परहेज, क्योंकि इसका असर केवल फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी समस्याओं की संभावना भी बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, तंबाकू का सेवन दांतों और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है।
3: यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। अपने परिवार और मित्रों का सहयोग लें। जब भी आपको इसकी लत लगे तो पानी पिए, टहलें, गहरी सांस लें या किसी सकारात्मक गतिविधि में स्वयं को व्यस्त रखें।
2: अब बढ़ते हैं पत्रों की ओर। हमें प्यारा सा रंगीन खत भेजा है हमारे नियमित श्रोता थाना 3 ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना बी, आसिफा और शबीना ने। इन सभी को परिवार जगत कार्यक्रम को की 2 जून की प्रस्तुति बहुत पसंद आई है।
3: और ये प्रस्तुति हमारी साथी सुनीता सिंह और प्रेरणा गुप्ता की थी। कार्यक्रम को पसंद करने के लिए और अपना स्नेह, प्यार और हमारी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सभी हमें पत्र भेजते रहा करें और अन्य श्रोताओं से भी हमारा निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम को पत्र भेजते रहा करें। हम सभी को आपके पत्रों का इंतजार रहता है। और अब जाने से पहले क्यों ना प्रेरणा अपने श्रोताओं को एक और प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए।
2: जी बिल्कुल आयशा।

0: इसी गीत के साथ प्रेरणा गुप्ता को दीजिए कार्यक्रम से अनुमति और वादा कीजिए स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। नमस्कार।
1: साथ ही अपने साथी आयशा अनवार को भी दीजिए अनुमति। आदाब और नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा।

0: होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेंतुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी

0: क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

0: 1970 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, फिल्म हाथ की सफाई से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: यह दौर सुनहरे।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में ये गीत। फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। कार्यक्रम सुनहरा दौर आप सुन रहे हैं और हम आपको 1970 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, सीता और गीता फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

और अब आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, फिल्म है दूसरा आदमी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही सुनहरा दौर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 3 बजे हैं मीडियम वेव पर। अब हमारी आज की सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं, लेकिन अब से शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: यह आवाज है लता मंगेशकर की।

0: ಸಹೇಲಿ
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार
2: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं जो भी सखा हैं सभी सभी को सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार
1: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
2: जी।
1: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
2: बिल्कुल
1: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं, तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
2: बिल्कुल
1: चर्चा करेंगे।
2: और मौसम कोई भी हो पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत ज़ीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो की है संस्थापक है ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
1: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
2: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है। लेकिन आप कैसे कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
1: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके आपको सुरक्षित रखने के लिए।
2: बिल्कुल,
1: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
2: गुठलियों के दाम, यानी वैसे भी आम का मौसम है ना आम खाए जा रहे हैं।
1: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
2: बिल्कुल, और चंचल जी मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोता है सखियां हैं जो भी सखा है कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
1: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम,
2: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
1: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
2: गीत सुनने से
1: जी।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी,
1: हाँ
0: लेकिन
1: कोरा
0: अब हमें
1: कागज पे नहीं,
0: संदेश मिलते हैं हमारे सुनने
1: बिल्कुल
0: वालों के।
1: बिल्कुल। और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष,
0: जी
1: यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता
0: हम
1: देते
0: बात
1: हैं।
0: करेंगे जीनिया परसी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो जीनिया परसी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और जीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: जीनिया परसी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्जी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ
1: जी,
0: है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यावहारिक अनुभव मिला। और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
0: और इससे पहले जीनिया इवेंट्स का इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था। बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया। और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी

0: हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
1: और उनका काम, वी इनवाइट यू, यू ओन इवेंट, इस विचारधारा पर आधारित है। यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
0: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी, और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
1: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में, और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल पानी, और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे
1: बिल्कुल। और
0: लिए।
1: जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी
0: जी
1: हमने प्रगति करी, वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी,
0: जी
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो
0: बिल्कुल
1: ये सोचिए, ये एक हमें जागरूकता का विषय भी है
0: जी
1: कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है। जल है तो ही कल है, जिस तरह हवा बहुत जरूरी है,
1: जी
0: ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं,
1: जी
0: जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा
1: बहुत बहुत
0: लगता है,
1: अच्छा लगता है।
0: लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल,
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं, और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज़ को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि
1: बिल्कुल
0: हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और
1: बिल्कुल
0: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोची कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए।
0: जी
1: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।

0: आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
1: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
0: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने, जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है, वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है, ये हमारे आने वाले लोगों को, पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे, जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर

0: से कोई इस तरीके के, मतलब जो उन्होंने लिखी है, इस तरीके की चीज़ों का पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं, घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद, 70 जो पृथ्वी का 70% पानी है, वो जो 70% पानी है, और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो अब वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए, उसको ऐसे ही नहीं कि आपने से छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर
1: जी
0: भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश
1: बहुत
0: करिए।
1: सारी महिलाओं की आदत होती है, जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल
0: हाँ
1: चालू है, यहाँ
0: चल रहा है,
1: उधर काम चल रहा है उनका,
0: बिल्कुल
1: तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल
0: बिल्कुल।
1: को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये
0: और साथ
1: सबकी
0: ही ये
1: जिम्मेदारी
0: अगर
1: है।
0: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और पानी बाकी
1: हाँ,
0: फेंक दिया,
1: आधा
0: क्योंकि
1: ग्लास
0: वो
1: पानी पीते
0: बिल्कुल
1: हैं और आधा
0: जब जो
1: फेंक
0: पीने
1: देते
0: लायक
1: हैं।
0: पानी होता है, कितना कीमती पानी है, उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
1: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने
0: बिल्कुल
1: लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है, या आपने सब्जियां धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते
1: इसी
0: हैं।
1: तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: तो इस तरीके की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, है
1: क्या
0: ना। तो
1: बात है,
0: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
1: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं
0: अंतराल
1: छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी

0: कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों और झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाने नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो
0: जी
1: बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया, इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं
1: कदर
0: होती।
1: नहीं करते
0: जिस
1: हैं।
0: तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते।
1: बिल्कुल
0: पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब
1: इसी
0: वर्षा का
1: वजह
0: जल
1: से,
0: हमें
1: बिल्कुल
0: कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां
1: बिल्कुल
0: चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है। ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि
1: बिल्कुल,
0: चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी
1: पानी
0: वहां पर
1: महंगा होता है।
0: बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग
1: बिल्कुल,
0: लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज़ खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती हूँ, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है
0: जी
1: या पानी 2 दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए, इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे।
1: बिल्कुल
0: उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: पे क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई
1: हाँ
0: वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उससे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उससे भी आपको मुनाफा मिला।
1: बिल्कुल
0: दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा, इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों
1: गुठलियों
0: के
1: के दाम,
0: दाम।
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए
0: जी
1: और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको ही फायदा हुआ,
0: जी
1: तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो
1: और
0: सिर्फ
1: हमारे
0: एक
1: श्रोता
0: कहावत
1: क्या
0: है,
1: कहते
0: लेकिन
1: हैं?
0: बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव
1: हाँ
0: रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल। तो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो
1: हाँ
0: गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: सच में
0: एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई
0: हाँ,
1: कई तरीकों से
0: एक
1: कहा
0: पंथ
1: जाता
0: दो
1: है।
0: काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों का।
1: बिल्कुल। और व्यवहारिक जीवन में इसका इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है, तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी तो सच में एकदम सही बैठा कि
0: जी,
1: उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है।
1: जी
0: दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाएं भाई अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बहाने मैं आपको तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है,
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके, ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें, और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए अपनी गलती या छिपाने के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है, यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है
1: जब बहुत
0: जिसका
1: ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है।
0: बिल्कुल बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं, जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं।
1: जी।
0: और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है।

0: दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल अक्सर होता है ऐसा। और एक क्वेश्चन होता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने नोक झोंक प्यार और स्नेह तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं, तो
0: हमारे
1: अच्छी चीज
0: श्रोता ने
1: है।
0: लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई, मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने हैं जो हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं, मैं करती हूँ अक्सर। हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती, तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ, ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था, ये भी
1: बिल्कुल
0: बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती है कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ, इतनी गर्मी हो रही है। मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा
0: हाँ,
1: प्रोग्राम
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी।
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई, और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और जैसे हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है
1: बिल्कुल
0: लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीता में भी तो सुन लें गाना।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते,
1: बिल्कुल
0: लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा।
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत, लेते हैं विदा चंचल वर्मा।
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था।

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
2: पूरे तो याद नहीं है। हेरुवा का साकारो रन्नो चिन्नन्ना, आगे
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
2: उसका नाम था रोजुलु माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज्ड, दे विच लिटरली चेंज्ड माय लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलकर देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो

0: के लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए, तो मेरी नहीं समझ में आया दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे, तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कहने?
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे। तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर, तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी, बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं, तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
0: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वेदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरुदेव साहब
1: हाँ
0: को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। इसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ।
0: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
1: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आपकी कीजिए जैसे मैं कह रहा हूं, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
0: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए।
1: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे, और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशन बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।
0: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज

0: फूल का ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
1: हाँ
0: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक
1: हाँ।
0: बहुत दिल को छू लेने वाली है।
1: बिल्कुल
0: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
1: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो
0: आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा वेद जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है,

0: में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरुदेव जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरुदेव जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप देके स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखे, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरुदेव जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके नहीं, देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करें। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। तो गुरुदेव उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौधरी का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करती है, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरह से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
0: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
1: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए, अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी भी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक चीज होती है फिल्मों में उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
0: देव साहब के साथ में कैसी ट्यूनिंग थी आप?
1: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो CID में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ।
0: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
1: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर, लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे, देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, तो ठीक है। हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है, तो बोले मैं चश्मा लगाता हूँ। तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया, तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेस को पीछे

0: बैठने दो और तुम मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह मैंने कहा दे भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजयानंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा विजयानंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
0: खोया खोया चांद।

0: रुबेदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पर चढ़ के डांस करना था?
1: या, या, या। आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बापरे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है।

0: भाई भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले दो चार बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैद्य जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें
0: हाँ जी,
1: रिबेलियस
0: हाँ जी,
1: है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
0: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हम हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था। क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने सीएडी का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
1: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा,
0: एग्जैक्टली
1: आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला और
0: बिल्कुल सही है,
1: नीलकमल के लिए भी
0: हाँ
1: मिला।
0: बिल्कुल।
1: कभी आपको ऐसा लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, कभी अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
0: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
1: डाकुओं की समस्या पर वो फिल्म थी,
0: हाँ
1: सुनील दत्त साहब के साथ में,
0: हाँ जी,
1: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया, उनके साथ में, उनकी ट्रूप के साथ में जाती
0: हाँ
1: रही
0: जी,
1: ना।
0: हाँ जी, तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए। फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले

0: हमने मुझे जीने दो की बात की है तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है। उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
1: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था,

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेर, और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही, और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था तो बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बिचारेगा, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ें

0: लगता है उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा
1: कोई
0: है उनका ये।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा, जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कहे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक और एक टेक, फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको, तो हंसने लगी। बोले नहीं, अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने

0: बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है। कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
1: रेशमा कैसा वो एक मीठी सी चुबन एक
0: जी हाँ जी
1: हाँ बहुत मीठा गाना बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन एक ठंडी सी अगन

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देख के ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके नाम, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ, और आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में.

0: मैं कैसा हूं उनके साथ में, केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे। एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं। कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे।
0: इतना हक?
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे। तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। तो ही इज वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
0: और एक एनर्जी से भरे हुए
1: बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
0: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
1: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनके फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदे में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और FM पर आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम आज शाम।

श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, शाम के इस वक्त में, भाग दौड़ भरे इस दौर में, ये जो थोड़े से जो शाम के कुछ चाय के पल होते हैं ना, बहुत ही सुकून भरे होते हैं जब हमें अपनों का साथ मिलता है। आज के इस टाइम में सबसे बड़ा सवाल आजकल के बच्चों को यही पूछा जाता है कि लाइफ में करना क्या है, और ये सवाल अक्सर चाय पर ही निकलते हैं, क्योंकि इन दिनों कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, जून का महीना चल रहा है, और सभी अपनी अपनी लाइफ में करना क्या है इस विषय पर सोचने में लगे हुए हैं। और सबसे मजाकिया बात तो यह है कि ये सवाल सबके पास है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं।

0: श्रोताओं, और अब रुकते हैं एक कॉमर्शियल ब्रेक के लिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

आपका रेडियो साथी अंकुर राजपूत। श्रोताओं, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें क्या बनना है, कहाँ जाना है, फ्यूचर क्या है, और हम खुद सोच रहे होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता। सबको हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पर हमें खुद से क्लियरिटी नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेस कर रहा है, सबको देखकर लगता है कि सबको पता है उन्हें क्या करना है, बस सिर्फ हम ही कंफ्यूज हैं। हमें लगता है सबको रास्ता पता है, पर सच क्या है? सच ये है दोस्तों कि सभी भटक रहे हैं। फैमिली का प्रेशर अलग होता है, या ये फील्ड चूज करो, ये सेफ है, इसमें फ्यूचर है, तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, पर डिसीजन किसी और के इन्फ्लुएंस में हम ले रहे होते हैं। हम अपना सपना नहीं, किसी और का सपना जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ भी है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो आपका सपना है, आप उसे जीने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपना सपना जिएंगे तब आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा कि मैंने अपने सपने के लिए मेहनत जरूर की।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

तो दोस्तों अपने पैशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि सुकून बहुत ज़रूरी है। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आज शाम से अपने साथी अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आज शाम। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का ये कंपेयर्ड कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना फेवरेट कार्यक्रम भी जरूर सुन रहे होंगे। आज आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त खुशी,
1: और साथ हूं मैं आपकी रेडियो साथी फातिमा खान। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिना देर किए जान लेते हैं हमारा आज का सवाल। और हमारा आज का सवाल है, पृथ्वी का वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां चींटियों की कोई भी मूल प्रजाति नहीं पाई जाती है।
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी का वे एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां चींटियों की कोई भी मूल प्रजाति नहीं पाई जाती है।
1: दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेट किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने सही जवाब। और सही जवाब देने वाले आप सभी श्रोताओं के नाम हम बताएंगे इस प्रोग्राम के अंत में।
0: पता है फातिमा, आज सुबह मैंने एक्वेरियम में रंग बिरंगी मछलियों की तस्वीरें देखी। उन्हें देखकर समुद्र की खूबसूरत दुनिया याद आ गई।
1: अच्छा खुशी, वैसे समुद्र के भीतर की दुनिया किसी जादुई संसार से कम नहीं लगती ना। रंग बिरंगी मछलियां, अद्भुत जीव और सुंदर मूंगे यानी कोरल रीफ्स, सब कुछ बेहद आकर्षक होता है ना।
0: हाँ फातिमा, और जब कोरल रीफ्स की बात हो रही है तो आज का हमारा विषय भी इसी से जुड़ा है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे कोरल ट्रायंगल की, जिसे दुनिया का समुद्री जैव विविधता का केंद्र भी कहा जाता है।
1: जी हाँ दोस्तों, कोरल ट्रायंगल प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक विशाल समुद्री क्षेत्र है। इसमें 6 देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गायनी, सोलोमन आइलैंड और टाइमोर लेस्ट।
0: दोस्तों, इस क्षेत्र को कोरल ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानचित्र पर यह क्षेत्र लगभग त्रिकोणीय आकार बनाता है। ये दुनिया के सबसे समुद्र पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है।
1: दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया की लगभग 76% ज्ञात प्रवाल यानी कोरल प्रजातियां और हजारों प्रकार की मछलियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे समुद्री जीवन का खजाना मानते हैं। यहां समुद्र कछुए, शार्क, डॉल्फिन और अनेक दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं।
1: लेकिन खुशी, जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने और बढ़ते समुद्री तापमान के कारण इस क्षेत्र की जैव विविधता को खतरा भी बढ़ रहा है।
0: हाँ सही कह रही हो, समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल ब्लीचिंग की समस्या होती है, जिसमें कोरल अपना रंग और जीवन शक्ति खोने लगता है।
1: हाँ खुशी, इसलिए कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर कोरल ट्रायंगल के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और जैव विविधता की रक्षा करना है।
0: तो दोस्तों, कोरल ट्रायंगल हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति की अनमोल धरोहरों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि समुद्र स्वस्थ रहेगा तो पृथ्वी का पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। दोस्तों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार है आपके लिए बहुत कुछ खास।
2: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग।

0: दोस्तों, चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, भारत के स्वतंत्र संग्राम का इतिहास केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध नेताओं तक सीमित नहीं है। इस इतिहास में ऐसे अनेक वीरों का योगदान भी शामिल है जिन्होंने अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। ऐसे ही महान जननायक थे बिरसा मुंडा, जिनकी शहादत को आज भी पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है।
3: बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उल्लीहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय, शोषण और अत्याचार को देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके संघर्ष का आधार बना।
0: दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के कारण आदिवासी समुदाय अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। बिरसा मुंडा ने अपने समाज को जागरूक करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किए।
3: उनके नेतृत्व में चला आंदोलन उर गुलान अर्थात

0: आत्मसम्मान और जन जागरण के प्रतीक बन चुके हैं। देश के अनेक संस्थान, विश्वविद्यालय, पार्क और योजनाएं उनके नाम पर हैं। उनकी स्मृति हमें ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए दिया गया हर बलिदान राष्ट्र के अमूल्य धरोहर होता है। दोस्तों, आज का दिन और भी खास है। जब भी भारत की उन महिलाओं का नाम लिया जाता है जिन्होंने अपने साहस, दृढ़ निश्चय से समाज में एक नई पहचान बनाई, तो उनमें से एक प्रमुख नाम है किरण बेदी।
1: दोस्तों, किरण बेदी का जन्म 9 जून यानी आज ही के दिन 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ाई, खेल और अनुशासन में उत्कृष्ट थीं। उन्होंने टेनिस में भी राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल कीं, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था देश की सेवा करना, और इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा का मार्ग चुना।
0: साल 1972 में किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। उस समय पुलिस सेवा को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इस सोच को बदल कर रख दिया।
1: दोस्तों, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वो कानून व्यवस्थाएं बनाईं, साथ साथ समाज सुधार के कार्यों के लिए भी जानी गईं। विशेष रूप से तिहाड़ जेल में किए गए उनके कई सुधार कार्यों की देश विदेश में सराहना भी हुई।
0: किरण बेदी का जीवन हमें सिखाता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति और सही उद्देश्य हो तो सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने महिलाओं को ये संदेश भी दिया कि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं और नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं।
1: दोस्तों, किरण बेदी का जीवन साहस, अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कहानी हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और समाज में सकारात्मकता बदलाव लाने की प्रेरणा देती है।
0: दोस्तों, कुछ खास है आज के अंतर्गत ही अब हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा का इतिहास। केवल अभिनेताओं और निर्देशकों की कहानियों से नहीं बना है, बल्कि उन संगीतकारों के योगदान से भी स्मृत हुआ है जिन्होंने अपनी धुनों से पीढ़ियों के दिलों को छुआ। आज हम बात करेंगे हिंदी और मराठी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई जी की, जिनकी रचनाएं आज भी संगीत प्रेमियों के बीच विशेष स्थान रखती हैं।
1: दोस्तों, वसंत देसाई जी का जन्म 9 जून यानी आज ही के दिन 1912 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में एक विशिष्ट पहचान दिलाई।
0: अपने करियर की शुरुआत में वसंत देसाई प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक वी शांताराम के साथ जुड़े। यहीं से उन्हें अपनी संगीत प्रतिभा को निखारने और बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर मिला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि उनका नाम भारतीय फिल्म संगीत के सम्मानित संगीतकारों में लिया जाने लगा।
1: दोस्तों, वसंत देसाई की सबसे बड़ी विशेषता थी भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक धुनों का सुंदर समन्वय। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन बनाया।
0: दोस्तों, उन्होंने कई फिल्मों के लिए संगीत दिया, जिनमें दो आंखें, बारह हाथ, झनक झनक पायल बाजे और गूंज उठी शहनाई जैसे फिल्में शामिल हैं। वसंत देसाई जी ने केवल फिल्मों तक ही अपने संगीत को सीमित नहीं रखा, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, भारतीय संगीत जगत में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कुछ खास है आज में बस इतना ही।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ।

0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
0: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते बढ़ते आइए सुनवाते हैं आपको ये प्यारी सी गजल।

0: आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ, जिसमें बात करी है फातिमा ने महक के साथ।
1: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल यानी 8 जून को आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का आयोजन हुआ था, जो आकाशवाणी रामपुर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्गों का काफी सहयोग रहा। उन्हीं में से हमारे साथ हैं एक युवा प्रतिभागी। आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: जी मैम, धन्यवाद। मेरा नाम महक है, मैं रामपुर से हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
2: जी अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ।
1: आपकी उम्र लगभग कितनी है?
2: 18 प्लस।
1: आप आकाशवाणी परिवार से अभी जुड़ी हैं या आपके घर परिवार में कोई पहले से रेडियो सुनता आ रहा है? ऐसा होता है ना, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स जो है वो रेडियो को सुनते हैं या आकाशवाणी से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा कुछ आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी मैम, मेरी फैमिली में मेरी दादी बहुत टाइम से रेडियो के साथ जुड़ी हुई है, तो जब से मतलब हमने उन्हीं को देखा है रेडियो सुनते हुए, तो हमें भी अच्छा लगता है। हम भी प्रोग्राम सुनते हैं जब वो भी प्रोग्राम सुनते हैं तो।
1: अच्छा महक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको इस वॉकथॉन में शामिल होकर कैसा लगा?
2: मुझे इस वॉकथॉन में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। सुबह से ही वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, उत्साहपूर्ण माहौल था, और वहाँ बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी और विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल हुए थे। सभी का उत्साह देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली।
1: अच्छा, आपको इस वॉकथॉन में भाग लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूंगी।
2: मेरा मानना है ये, मतलब स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, तो आज के व्यस्त जीवन शैली में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को पर्याप्त ध्यान नहीं देते। इस वॉकथॉन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया गया था, इसलिए मैंने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया।
1: बहुत ही उचित विचार है महक आपके। मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी, मैं इस आयोजन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा?
2: मेरे लिए ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। जब मैंने अपने आस पास के सैकड़ों युवाओं को एक साथ चलते हुए देखा, तो लगा कि यदि हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए एकजुट हों तो बड़ा बदलाव ला।
1: जी आपने बेहद खूबसूरत अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं को बताइए, वॉकथॉन के दौरान आपको सबसे अच्छा क्या लगा वहाँ?
2: मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ हर आयु वर्ग के लोग मौजूद, सभी एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे थे। यह आयोजन केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक भागीदारी का भी संदेश दे रहा।
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने महक, आपके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा।
0: दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ। अब सुनवाते हैं आपको ये दिलकश गजल।

0: आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेगमेंट भारत के गलियारे से के सेगमेंट इमारतें बोलती हैं में।
1: दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की उस ऐतिहासिक धरोहर की ओर, जिसने ना जाने कितने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। ये स्थान केवल एक किला नहीं बल्कि साहस, संस्कृति और आध्यात्मिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं कालिंजर किला की।
2: दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ी पर स्थित कालिंजर किला भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला अपने विशाल स्थापत्य, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है।
1: कालिंजर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काल अर्थात समय या मृत्यु और जयर अर्थात विजय। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और काल पर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम कालिंजर पड़ा। किले के भीतर स्थित नीलकंठ मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है।
2: साथियों, इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो कालिंजर किले का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। ये किला विशेष रूप से चंदेल शासकों के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ। चंदेल राजाओं ने इसे अपनी शक्ति और गौरव का प्रतीक बनाया। कहा जाता है कि इसी वंश ने खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण भी किया था।
1: कालिंजर किला कई ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है। अनेक शासकों ने इसे जीतने का प्रयास किया, लेकिन इसकी मजबूत संरचना और रणनीतिक स्थिति के कारण इसे जीतना आसान नहीं था।
2: साथियों, 1545 में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण किया था, किंतु युद्ध के दौरान तोप के गोले के विस्फोट में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने कालिंजर किले को भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया।
1: दोस्तों, किले की वास्तुकला भी अत्यंत आकर्षक है। यहाँ प्रवेश के लिए कई विशाल द्वार बनाए गए हैं, जिनमें आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार और हनुमान द्वार प्रमुख हैं। किले की दीवारें, जलाशय, गुफाएं और शिलालेख उस समय की उन्नत निर्माण कला का परिचय देते हैं। यहाँ स्थित सीता सेज, पाताल गंगा और भैरव कुंड जैसे स्थल पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं।
2: दोस्तों, आज कालिंजर किला ऐतिहासिक प्रेमियों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इसकी भव्यता को देखते हैं, बल्कि उस गौरवशाली अतीत को भी महसूस करते हैं जिसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया।
1: तो दोस्तों, यदि आपको इतिहास, स्थापत्य कला और आध्यात्मिक स्थलों में रुचि है तो कालिंजर किला आपके लिए एक अद्भुत अनुभव साबित हो सकता है। ये किला हमें याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी बदल

0: जाए। हमारी धरोहरें सदैव हमारे इतिहास और संस्कृति की कहानी कहती रहती है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भारत के गलियारे से के सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं को। दोस्तों, कुछ एहसास अल्फाजों में ढल जाते हैं, कुछ जज्बात सुरों में पिघल जाते हैं। जब दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचानी हो तो गजल का सहारा लिया जाता है। श्रोताओं, पेश है एक खूबसूरत गजल जो मोहब्बत, यादों और जिंदगी के रंगों को अपने अंदाज में बयां करती है। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेगमेंट भारत के गलियारे से के सब सेगमेंट में, जो है घुमक्कड़ी, जिसमें हम आपको घुमाने वाले हैं आज एक नया शहर। दोस्तों, भारत की धरती पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता के जीवंत प्रतीक हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही प्रसिद्ध नगर की ओर, जिसे दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी अत्यंत श्रद्धा के साथ देखते हैं। ये स्थान है कुशीनगर।

0: दोस्तों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। ये वही पावन भूमि है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसी कारण कुशीनगर बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है।
1: दोस्तों, इतिहास के अनुसार लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कुशीनगर में बिताए थे। यहीं उन्होंने संसार को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश देकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है।
0: कुशीनगर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है महापरिनिर्वाण मंदिर। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की लगभग 6 मीटर लंबी शयन मुद्रा में बनी प्रतिमा स्थापित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये प्रतिमा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। मंदिर का शांत वातावरण मन को गहरी शांति का अनुभव कराता है।
1: दोस्तों, इसके अलावा यहाँ स्थित रमाभार स्तूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। यह स्तूप बौद्ध अनुयायियों के लिए गहरी आस्था का केंद्र है।
0: कुशीनगर की विशेषता ये भी है कि यहाँ अनेक देशों द्वारा निर्मित सुंदर बौद्ध विहार और मंदिर मौजूद है। जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों ने यहाँ अपने अपने बौद्ध मंदिर बनवाए हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और सांस्कृतिक विशेषताएं पर्यटकों को विश्व संस्कृति की झलक प्रदान करती है।
1: साथियों, यदि हम वर्तमान की बात करें तो कुशीनगर आज एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। ये स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: यदि कभी आपको इतिहास, अध्यात्म और शांति के अद्भुत संगम को महसूस करने का अवसर मिले तो कुशीनगर की यात्रा अवश्य कीजिए। ये स्थान न केवल आपको अतीत से जोड़ता है बल्कि जीवन को नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी देता है।
2: साथियों, ये था हमारा सब सेगमेंट घुमक्कड़ी। आज के सेगमेंट में बस इतना ही।

0: दोस्तों, चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर। अब वक्त हो चला है स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने का। हमारा आज का सवाल था, पृथ्वी का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहां चींटियों की कोई भी मूल प्रजाति नहीं पाई जाती है, और इसका सही जवाब है अंटार्कटिका। आइए जानते हैं हमारे किन श्रोता साथियों ने हमें इस सवाल का सही जवाब लिखकर भेजा है।
1: सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी, पुंजा जी नाफकर, मोहम्मद रफीक पवार, किशन सपकाल, जॉन डी कैस्ट्रो, नंद कुमार ठाकुर, दिनेश वर्मा, धर्मेंद्र छिपा, एम डी यासीन अनजान, नानक खन्ना, रियासत हुसैन सिद्दीकी, जगदीश धाकड़, सुदर्शन शाह, भाई रफत साहब, विनोद मुन्नत, प्रवीण चौहान, बीपी गौतम, अभिजीत गवानकर, फागुराम यादव, बी आई धाकड़, शाहजी बोधके, मसरूर हसन, राजकुमार दूदी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हुकुम करमरकर, आकाश रस्तोगी, कमाल सिंह, विजय सुरलकर, राजीव सिंह यादव, मोहम्मद सईद अब्बासी, सत्येंद्र चंसोलिया, सुरेश जायसवाल, हाजी गफ्फार खां, शकील अहमद इदरीसी, मुजफ्फर अली खान, बलवंत कुमार वर्मा, दिग्दर्शन गुण, अरविंद कुमार, शाहरून नूर अंसारी, मोहम्मद आमिर अंसारी, हिरामानी वर्मा, धीरज भाई राबरी, संजय ढींगिया, विठल सुरोशे, राष्ट्रपाल गजभैये, नवी हसन अब्बासी, दिलशाद हुसैन, धर्मवीर कश्यप, कैलाश फूलमाली, सुरेश गगनेजा, इसाक अहमद, चौधरी राजवीर सिंह, भाई रफत साहब, मुकेश कश्यप और गंगा सिंह रावत।
0: तो दोस्तों, आज के युवाणी प्रोग्राम में बस इतना ही। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी रामपुर।
1: साथियों, हमारा पता एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कार्यक्रम चिट्ठी आई है द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901।
1: दोस्तों, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramilaairrampur@gmail.com।
0: एक बार ईमेल एड्रेस फिर सुन लीजिए, patramilaairrampur@gmail.com।
1: और आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिख भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर फिर से सुन लीजिए। हमारा नंबर है 9410087876। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त खुशी
1: और फातिमा को इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: बोल रहे हैं।
1: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे? तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
2: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
3: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
1: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
2: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।
4: मम्मी मम्मी, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
5: अभी लाई।
6: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे, और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया। क्या करूँ इस बचे हुए पानी का?
4: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो। कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है पानी।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में

0: कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं।

श्रोताओं, जफर पुत्र मोमिन ग्राम कटौनी थाना हजरत नगर गढ़ी से जिला संभल से दिनांक 18 मई सन 2026 से लापता हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, लंबाई 5 फुट है, रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य है, इनकी आंखें काली हैं, चेहरा लंबा है, बाल काले हैं और इन्होंने सफ़ेद शर्ट और नीली पैंट पहनी हुई है। यदि इनके संबंध में किसी व्यक्ति को कोई सूचना मिले अथवा हो तो निम्न पते पर सूचित करने की कृपा करें। श्रीमती जुवेदा, पत्नी मोमिन, ग्राम कटौनी, थाना हजरत नगर गढ़ी, जनपद संभल। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 6398730330। एक और नंबर नोट कर लें, थाना हजरत गढ़ी, जनपद संभल, 7078352406। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, एक और आवश्यक सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, थाना प्रभारी थाना धनारी जनपद संभल सूचित करते हैं कि मधु पत्नी किशन पाल निवासी भैयापुर थाना धनारी जनपद संभल से दिनांक 4 मई 2026 से लापता हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष है। आंख नाक कान और इनकी रंग का कद का जो हुलिया है वो औसत है, रंग गेहुआ है। इनकी लंबाई 5 फीट है। इन्होंने नीले कलर की साड़ी पहनी हुई है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा मिले तो निम्न पते पर सूचित करने की कृपा करें। थाना प्रभारी थाना धनारी जनपद संभल मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9454402936। एक और

पता नोट कर लें, किशनपाल निवासी भैयापुर थाना धनारी जनपद संभल। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9454457659। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अब सुनिए एक और सूचना। थाना प्रभारी थाना धनारी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि मालवती पत्नी चौधरी निवासी गढ़ा थाना धनारी जनपद संभल की रहने वाली हैं, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, जो कि 5 मई सन 2026 को अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनकी आंख, नाक, कान और कद का हुलिया औसत है, रंग गेहुआ है। इनकी लंबाई 5 फुट है। इन्होंने सलवार और सूट पहना हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो अथवा मिले तो निम्न पते पर सूचित करने की कृपा करें। थाना धनारी जनपद संभल, मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9454402936। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म गदर से, आवाज़ है उदित नारायण की।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया पंकज की
0: राम राम, राम। और सुनाओ पंकज भैया, कैसे हाल चाल है आपके?
1: बस मीना बहन बढ़िया है, और आप ठीक हो?
0: हाँ भैया, हम तो ठीक है।
1: और हम उम्मीद करते हैं जो भी हमारे किसान साथी हैं ना, वे ठीक होंगे और अपने खेती बाड़ी को काम भी सही प्रकार से कर रहे होंगे।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: लेकिन मीना बहन एक चीज और है, इस समय देखो गर्मी को मौसम चल रहा है।
0: हाँ भैया।
1: और हम अपने किसान साथियों से जय कहेंगे कि गर्मी के मौसम में जब भी बाहर निकले तो भैया अंगोछा अपने सिर पर रख लें और पानी की व्यवस्था जरूर रखें।
0: हाँ भैया, अपने साथ में पानी लेके चले
1: लेके चले। हाँ। और जब भी खेती पे जाएं, खेती को काम होए हमारो है ही देखो, तो वो बाको सुबह सुबह निपटा लेगा।
0: हाँ भैया, ज्यादा धूप में काम ना करें।
1: हाँ।
0: और भैया ऐसे कि हमारे किसान भैया बहन के लिए, जैसे किसान साथी जो खेती हमारी पहचान है, हमारे किसान साथियों की ना भैया
1: जी,
0: और मिट्टी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि भाई जब खेती, जब मिट्टी सही हुई हमारे खेत की, तभी तो हमारी खेती भी नमन सही पा भाई।
0: हाँ, लेकिन जब ये मिट्टी बीमार होने लगे ना, तो भैया
1: जी
0: खेती भी कमजोर पड़ जाती है भैया।
1: अरे ये क्या हो गया मेरी जमीन को, पहले तो इसी खेत से अनाज के ढेर लग जाते, अब ज्यादा खाद डाले हैं, पानी भी ज्यादा दे रहे हैं, तो भी फसल जो है वो पहले जैसी नहीं हो रही है।
0: क्यों पंकज भैया, आज बड़े परेशान दिख रहे हैं।
1: परेशान ना हो तो क्या करें मीना बहन, हर साल लागत बढ़ रही है, पैदावार घट रही है, समझ में ना आ रहा मीना बहन कि गलती हमसे कहां हो रही है।
0: लगता है तुम्हारे खेत की मिट्टी कुछ कहना चाह रही है भैया।
1: अरे मिट्टी भी क्या बोलती है मीना बहन।
0: अरे भैया, जब किसान उसकी बात नहीं सुनता है ना
1: जी,
0: तो मिट्टी इसी तरह से पैदावार कम करके अपनी परेशानी बता देती है भैया।
1: अच्छा, तो फिर मेरी जो खेत की मिट्टी है वो किस बात से नाराज हो सकती है मीना बहन।
0: भैया जरा सोचो कि कितने साल आपने एक ही फसल मतलब बार बार उस खेत में करते रहे।
1: मीना बहन, हम तो बस गेहूं धान।
0: अच्छा, यही तो बात है, मिट्टी भी थक जाती है, हर साल एक ही फसल उससे बड़ी पोषक तत्व खींच लेता है। जब एक फसल अगर एक खेत में कतरा रहा हो ना
1: जी,
0: तो बाकी जो पोषक तत्व है ना
1: जी,
0: वे सब खींच लेती है एक फसल।
1: तो मीना बहन सच कहूं, हमने जो है वो इस बारे में कभी सोचो ही ना हो।
0: और बताओ भैया
1: जी,
0: जैसे आप जो बताओ हमारे कि गोबर की खाद आपने कब डाली, आपको कुछ याद है?
1: देखो, हमने बहुत साल पहले गोबर की खाद डाली, कई साल ही गए, अब तो बस जो है यूरिया और डीएपी से काम चला रहे हैं।
0: यही तो दूसरी गलती कर दी भैया आपने, जैसे आदमी सिर्फ मिठाई खाकर स्वस्थ ना रह सकता है, वैसे ही मिट्टी केवल रासायनिक खादों के भरोसे स्वस्थ ना रह सकती है भैया।
1: तो आपको मतलब जो है कि मिट्टी को भी संतुलित भोजन चाहिएगा।
0: बिल्कुल भैया, गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट और हरित खाद मिट्टी की ताकत बढ़ाते हैं भैया।

0: कि ये दोहरा फायदा हुआ।
1: और मिट्टी की जांच आपने भैया करवाई या फिर ना करवाओ?
0: बहुत पहले करवाई, लेकिन अब इसकी जरूरत कभी महसूस नहीं भैया अभी तक।
1: जैसे भैया डॉक्टर होता ना
0: जी,
1: बिना जांच के दवा ना देता
0: जी,
1: वैसे ही मिट्टी की जांच के बिना खाद डालना भी ठीक ना है।
0: अच्छा, तो अब तो जो लगता है कि सबसे पहले जो है ना वो हमें मिट्टी परीक्षण ही करवाना पड़ेगा मीना बहन।
1: बिल्कुल, तभी पता चलेगा कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम है और कौन कौन से ज्यादा भैया।
0: बिल्कुल मीना बहन, आज तो मेरी आंखें खुल गई, अब समझ में आ रहा हूँ मैं कि मेरी फसल कमजोर क्यों ही, लेकिन असल में मेरी मिट्टी ही बीमार थी इसलिए मेरी फसल कमजोरी।
1: और याद रखो भैया ना
0: जी,
1: स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध किसान की पहचान है।
0: अच्छा, अब मैं मिट्टी की जांच जरूर करवाऊंगा, जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाऊंगा, फसल चक्र को अपनाऊंगा मैं, और पराली भी कभी न जलाऊंगा मीना बहन।
1: भैया यही समझदारी है, जब मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो खेत सोना उगलेगा और किसान खुशहाल रहेगा। तो किसान साथियों, मिट्टी को केवल जमीन न समझें, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: इसकी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी ही बेहतर भविष्य की गारंटी है। और मीना बहन,
1: हाँ
0: एक चीज और है, जैसे हमारी खेती बचाओ आंदोलन है, तो जो हमारे जो किसान भैया हैं, कृषि संगठन हैं और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो समय समय पर एक जागरूकता अभियान या आंदोलन चलाओ जाते हैं, और जो वो जो मुख्य उद्देश्य है ना वो खेती।
1: हाँ भैया, इस खेती और जैसे किसानों और कृषि भूमि को विभिन्न समस्याओं से बचाना है भैया
0: होते हैं। तो साथियों, हम इन चीजों को अपने ध्यान रखें, क्योंकि जब हमारे खेत की मिट्टी ठीक होगी तो हमारी फसल भी जो है वो पैदावार ज्यादा देगी। और मीना बहन, हम लोग खेती बाड़ी तो कर ही रहे हैं।
1: हाँ भैया,
0: और खेती बाड़ी में संचार जो माध्यम होता है ना,
1: हाँ हाँ,
0: उनको बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: हाँ,
0: क्योंकि आज को जो समय है वो संचार को समय है, मतलब सोशल मीडिया को जमाना है, और नई नई तकनीकी बात से हमारे जानकारी मिलती रहती है, और जब जानकारी मिलती है तो हमारे किसान साथी वह जानकारी को अपने खेती में प्रयोग करते हैं, और जब खेती में वह जानकारी को प्रयोग करेंगे तो पैदावार तो एटम ज्यादातर बढ़ेगी और फायदा होगा। तो हम अपने साथियों को इसी से संबंधित एक सुनवाते हैं वार्ता, जाको जो विषय है वो है कृषि विकास में संचार माध्यमों का प्रयोग भूमिका। इस विषय पर जो जानकारी दे रही हैं वो डॉक्टर अर्पिता शर्मा जी। तो आपको सुनवाते हैं एक वार्ता।
2: किसान भाइयों, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा समय समय पर वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती करना है इसकी सूचनाएं आपको प्रदान की जाती हैं, तो मैं आपको संचार के कुछ साधनों के बारे में बताना चाहूंगी कि कृषि विश्वविद्यालय किस तरीके से आपको जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जो हैं उनके 3 मैंडेट्स होते हैं, शिक्षण का कार्य विशेष रूप से किया जाता है, शोध का काम और एक्सटेंशन यानी प्रसार का काम। प्रसार का काम करने के लिए हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि देखिए, हमारा जो सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वो 1974 में तमिलनाडु में बना था। तो कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं, किसान भाइयों की समस्याएं क्या हैं, उनकी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिक तकनीकियों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। आज आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे देश में 638 से भी ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को और सशक्त बनाने के लिए और हमारे किसानों को नवोन्मेषण की जानकारी देने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी के साधनों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए आजकल कृषि विज्ञान केंद्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, सूचना एवं संचार के अनेकों साधनों का प्रयोग करके किसान भाइयों को सशक्त बनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में स्टेट लेवल पे भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो वर्क करती हैं। उनका विशेष कार्य ये होता है कि प्रशिक्षित करना, किसान भाई आते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम साप्ताहिक होते रहते हैं। अगर आप लोग भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय में आना चाहें तो समेटी में आ सकते हैं, वहां पर आपको नवोन्मेषणों की जानकारी दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकारी कुछ और डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे कि आत्मा के बारे में आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इस आत्मा का भी मुख्य उद्देश्य यही होता है किसान भाई

को सशक्त बनाना, नवोन्मेषों की जानकारी देना, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी हमारे किसान भाइयों को प्रदान करना। तो ये सारी जानकारियां हमारी आत्मा के थ्रू किसान भाइयों को प्रशिक्षण के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोग किस तरीके से, कौन से ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा कृषि से संबंधित और जानकारियां ले सकते हैं। जैसे रेडियो, रेडियो पे आज मैं कार्यक्रम देने के लिए आई हूं, ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स डेली यहां पर आते हैं, आपको जानकारियां देते हैं, आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है, क्या कीटनाशक का प्रयोग करना है, किस बीमारी में आपको जानवरों को क्या खिलाना है। तो इस तरीके से रेडियो एक सशक्त माध्यम है जो कि आपको सशक्तिकरण की ओर ले जा सकता है। जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसानों की इनकम को दोगुना करना, वो दोगुना करने का सपना साकार हो रहा है रेडियो के थ्रू। ऑल इंडिया रेडियो रामपुर के द्वारा रोजाना ही कृषि से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, तो किसान भाई चाहें तो ये सारे कार्यक्रम सुनें और अपने आप को सशक्त बनाएं। तीसरा संचार के माध्यम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, टेलीविजन। टेलीविजन पे भी कृषि से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, किसान भाई टेलीविजन पे दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। चौथा साधन की हम जो बात करते हैं वो है कृषि पत्रिकाएं और समाचार पत्र। कृषि पत्रिकाओं में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर टुडे नाम की एक नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, जिस पत्रिका के माध्यम से किसान भाइयों को नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है। इसमें वैज्ञानिक अपने लेख लिखते हैं, उन लेखों को पढ़ के जो हमारे शिक्षित किसान भाई हैं वो अपनी तकनीकों को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो किसानों की इनकम दोगुना हो सकती है। दूसरी मैगजीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, योजना और कुरुक्षेत्र, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में प्रकाशित होती हैं, जिसमें किसानों को जो नई तकनीकों का इस्तेमाल करना है वो सारी जानकारियां वैज्ञानिकों के लेखों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ और भी कृषि मैगजीन है, जैसे इंडियन फार्मर डाइजेस्ट है या फिर किसान भारती है, जो कि हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित हो रही है। अगर किसान भाई चाहें तो हमारे यहाँ आएं, एटिक सेंटर है हमारा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पर आने के बाद किसान भाई अपना पंजीकरण करा दें। पंजीकरण 120 रुपीज में हो जाता है पंजीकरण, 10 रुपये पर मंथ आपकी मैगजीन बैठेगी, तो आप उस मैगजीन को खरीद सकते हैं। इतनी कम कीमत पे आपको कृषि से संबंधित सारी जानकारियां प्रदान हो जाएंगी, आपको किस मौसम में कौन सी फसल लगानी है, अगर कोई कीड़ा हो गया तो कौन सा आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। पशुपालक भाइयों के लिए पशुपालन से संबंधित जानकारी होती है, महिलाओं से संबंधित जानकारी भी हमारी किसान भारती में आती है, जैसे महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारे लेख आते हैं, तो किसान भाई इन मैगजीनों से अपने को जागरूक कर सकते हैं। अब मैं किसान भाइयों को कुछ और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यमों के बारे में बताना चाहूंगी, जिससे किसान भाई रोजाना जागरूक हो सकते हैं और कृषि से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। जैसे किसान कॉल सेंटर, ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, किसान भाइयों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। किसान कॉल सेंटर की जो स्थापना हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान भाइयों को सही समय पर सही सूचनाएं देना। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच पाते, कृषि विज्ञान केंद्रों तक उनका जाना नहीं हो पाता, वो ऐसे ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं, तो ऐसे समय पे जब उनकी खेती में कुछ समस्या आ जाए या उनके पशुओं को कुछ समस्या आ जाए तो वो क्या करें, तो ऐसे समय पर जो किसान कॉल सेंटर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसान भाई चाहें तो ये टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं, 1800 180 1551। ये एक टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे किसान भाई अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। दूसरा नवोन्मेषण के बारे में हम बात करेंगे, ई चौपाल। ई चौपाल जो है इंडियन टोबैको कंपनी के द्वारा संचालित किया गया है, ये भी एक नवोन्मेषण है। ये एक पोर्टल है जो कि इंटरनेट पे के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। इस ई चौपाल में, जैसे हम किसान चौपाल की बात करते हैं या पहले के जमाने में जो चौपाल हुआ करती थी उसमें सरपंच बैठते थे, ग्राम पंचायत हुआ करती थी और किसान भाइयों की समस्या या गांव की जो समस्याएं होती थी उनका निराकरण किया जाता था, पर ये चूंकि अब जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हो गई हैं, तो ई चौपाल जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एक माध्यम है जिसके सहायता से किसान भाई नवीनतम तकनीकी की जानकारी ले सकते हैं। ई चौपाल आजकल हर गांव में ई चौपाल लगाई गई है, जहां पर इंटरनेट है, इंटरनेट पे ई चौपाल की पोर्टल है।

संचालक एक पर्सन होता है, संचालक इसको संचालित करते हैं, किसान भाइयों की समस्याओं को सुनते हैं और उसको नेट पे सर्च करके किसान भाइयों को उनके से संबंधित सूचनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। तो ई चौपाल में, इस नवोन्मेषण में कृषि संयंत्र हो गया, मौसम, कृषि उपज, सोयाबीन, गेहूँ, धान, मक्का, दलहनी फसल जैसे कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री संबंधित सूचनाएँ कृषकों तक पहुँचाई जाती हैं। तो ये ई चौपाल किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँ कि कृषि से संबंधित आपकी जितनी भी चुनौतियां हैं ना, उनका समाधान करने के लिए ई चौपाल बहुत सक्षम है। फिर हम बात करना चाहेंगे किसान चौपाल के बारे में। किसान चौपाल जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा संचालित किया गया एक मॉडल है। इस मॉडल में होता क्या है कि जैसे ई चौपाल की बात करी वो तो ऑनलाइन पोर्टल हो गई, लेकिन किसान चौपाल में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गाँव में जाते हैं। गांव में जाने के बाद किसान भाइयों को एक जगह एकत्रित करके, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आपने नाम सुना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास लैपटॉप होगा, उस लैपटॉप में कैमरा होता है, आप उस कैमरे को ऑन करेंगे और आप जहां भी हैं, आप अपने खेत में हैं, आपके खेत में कोई बीमारी हो गई है, कोई परेशानी हो गई है, आपके पशुओं को कोई परेशानी हो गई है, आप उसका फोटो क्लिक करेंगे, आप ऑनलाइन बताइए मेरे ये जानवर को ये समस्या है या मेरे पौधे में ये समस्या हो गई, ये कीटाणु लग गए हैं, और वो ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंच जाएगी और वैज्ञानिक जो भी उसका निराकरण होगा कि ये प्रॉब्लम है और आप इसमें ये कीटनाशक लगाइए, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसान चौपाल एक नया माध्यम बन के आया है। कहने को चौपाल के बारे में आपने बहुत पहले से सुना होगा, लेकिन सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जो उपयोग किया जा रहा है उससे एक नवीनतम तकनीकों की जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई जा रही है। फिर इसमें किसान चौपाल में पावर पॉइंट का भी यूज करते हैं हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं। पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके, पावर पॉइंट में वीडियो वगैरह का इस्तेमाल करके कृषि चौपाल को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा रहा है और पावर पॉइंट के थ्रू भी हमारे किसान भाइयों को नवोन्मेषण की जानकारी प्रदान की जाती है। फिर हम बात करना चाहेंगे संदेश पाठक आवेदन के बारे में। संदेश पाठक आवेदन जो है ये एक पोर्टल है जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को उचित समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराना। हम जो बात कर रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको सही समय पर सही सूचनाएं उपलब्ध हो जाएं। ये जिस पोर्टल की मैं बात कर रही हूँ ये सीडैक और IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। मैं बताना चाहूंगी किसान भाइयों आपको दूसरे मोबाइल ऐप के बारे में, जो कि भुवन हेलिस्ट्रोम ऐप है। इस ऐप में किसानों के खेत में यदि ओलों के कारण नुकसान हुआ है तो इस ऐप के द्वारा उनके खेत की फोटो और उनकी जानकारी भुवन पोर्टल पर डाली जाती है और किसानों को उनके खेत में हुई हानि की भरपाई का मुआवजा भी दिया जाता है। तो आपके खेत में अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप भुवन हेलिस्ट्रोम ऐप को डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिर हम बात करना चाहेंगे क्रॉप इंश्योरेंस ऐप की। देखिए किसान भाई, इस ऐप में आपको फसलों के इंश्योरेंस के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आप लोन इत्यादि के लेन देन की सारी जानकारी क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से ले सकते हैं। फिर किसान भाई हम बात करेंगे एग्री मार्केट ऐप के बारे में। देखिए एग्री मार्केट ऐप जो है कृषि विपणन से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रदान करता है। किसी भी फसल के विपणन से संबंधित अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप एग्री मार्केट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम बात करना चाहेंगे किसान भाई स्काई मेट मोबाइल ऐप के बारे में। देखिए स्काई मेट एक मौसम विभाग के द्वारा शुरू किया गया एक नया मोबाइल ऐप है जिसमें आप मौसम से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम मौसम को देखकर उससे संबंधित रिस्क और किस प्रकार मौसम के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है ये सारी जानकारी स्काई मेट ऐप के थ्रू प्रदान की जाती है। फिर किसान भाई हम बात करना चाहेंगे डिजिटल ग्रीन के बारे में। देखिए डिजिटल ग्रीन एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य जो फोकस है ना, कहना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि देखो और विश्वास करो। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वीडियो में ग्रामीण परिदृश्य की परेशानियों को बताया जाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी अनेकों वीडियो बनाई है जिससे ग्रामीण भाइयों की समस्याओं को समझना और उसके बाद उसका निवारण करना ये कार्यक्रम किया जाता है। फिर किसान भाई हम बात करना चाहेंगे एग्रो स्टार की। यह पुणे में स्थित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका सीधे संबंध किसानों से होता है। तो किसान भाई टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी समस्या बताते हैं जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाता है। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे एक गांव की। यह IT पर आधारित एक ऐसा नेटवर्क है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं का निदान करना है। यह मोबाइल ऐप जो है बैंकिंग का एक ऐसा

0: प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड हो गया, निवेश, बंधक इत्यादि की जानकारी प्रदान की जाती है। एक गांव का एक नेटवर्क है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम बात करना चाहेंगे किसान भाई मित्रा के बारे में। देखिए मित्रा जो है, मित्रा मींस देखिए MITRA, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहेंगे तो MITRA। अब इसमें M का मतलब हुआ मशीन, I का मतलब हुआ सूचना, T का मतलब हुआ प्रौद्योगिकी एवं R का मतलब हुआ संसाधन। तो इसका मुख्य उद्देश्य आप समझिए, मित्रा का उद्देश्य है कि कृषि के नवीनतम उपकरणों के द्वारा बागवानी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये जानकारी प्रदान की जाती है। और ये सारी जानकारी शोध पर आधारित होती है। तो इसके द्वारा वायु विस्फोट स्प्रेयर्स विकसित किए गए हैं जो सब्जी एवं फलों के लिए बहुत उपयोगी हैं। स्प्रेयर्स के माध्यम से क्रॉप का हार्मोन भी चेंज किया जा सकता है, तो जिससे पैदावार आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी। तो क्रॉप इन प्रौद्योगिकी में क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया जाता है, इसे स्मार्ट फार्म के नाम से जाना जाता है। यह किसानों की मदद करती है ताकि किसान नवीन उपकरणों की जानकारी हासिल करें एवं ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ा सके। किसान भाई हम बात करना चाहेंगे अब यूरेका प्रौद्योगिकी के बारे में। यह प्रौद्योगिकी किसानों को पानी के संरक्षण एवं पानी के उपयोग के बारे में बताती है। यह किसानों को एक बड़े रिस्क से बचाती है। इस प्रौद्योगिकी में सोलर के द्वारा संचालित पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मछली के जीवित रहने के लिए पानी में कितनी मात्रा में पीएच होना चाहिए, ये सारी जानकारी इस यूरेका प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे जल संरक्षण कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये सारी जानकारी आप यूरेका प्रौद्योगिकी के थ्रू ले सकते हैं। किसान भाई ये तो थी कृषि से संबंधित जानकारी, थोड़ा सा मैं पशुपालन पे भी जोर देना चाहूंगी। देखिए अगर आप पशुपालक हैं तो एक मोबाइल ऐप मैं बताना चाहूंगी, पशु कृषि नाम का एक मोबाइल ऐप है जो आपको बताएगा पशु प्रबंधन, पशु रोग के निदान या पशुओं में कोई भी अगर परेशानी हो जाती है तो आप पशु कृषि से संबंधित एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप से आप जानकारियां ले सकते हैं। एक किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगी आपको पशु पोषण ऐप के बारे में। इस ऐप के माध्यम से पशुपालकों के पशुओं का रखरखाव कैसे करना है, दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाना है, उनका रोग निदान कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको पशु पोषण मोबाइल ऐप से प्रदान हो जाती है। फिर हम किसान भाई बात करना चाहेंगे कि डेयरी जो है, डेयरी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे शुरू किए हैं जिसमें हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए सरकार ने पशुपालकों की समस्या का समाधान करने के लिए पशुधन संजीवनी, नौकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन हार्ट, ये ऐसे सेंटर स्थापित किए गए हैं जहां पर कि हमारे डेयरी पालकों की सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए नौकुल स्वास्थ्य पत्र जो है वो एक ऐसा हेल्थ कार्ड है जिसमें किसान अपने पशुओं का रिकॉर्ड रख सकते हैं। पशुपालकों के द्वारा पशुओं को कब टीका लगवाना है, उन्हें क्या खिलाना है, इन सबका लेखा जोखा इस कार्ड में रखा जाता है। अगर हमारे पशुपालक भाई चाहें तो इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी का ये उपयोग कर सकते हैं। फिर हम बात करना चाहेंगे ई पशुधन हार्ट के बारे में। देखिए किसान भाई या पशुपालक भाई हमारे जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये ई पशुधन हार्ट जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पशुपालक अपने जानवरों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि एक वर्चुअल मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है जिसमें आप अपने पशुओं के बारे में जानकारी दीजिए, कोई बंदा है जो आपके पशुओं को खरीदना चाहता है तो इस तरह से खरीद और बेचने का काम हमारे ई पशुधन हार्ट प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। और किसानों को स्वास्थ्य हो गया, पोषण, ये इन सारी जानकारियां भी प्रदान की जाती हैं। तो किसान भाई आज हमने बात करी कि हम सूचना एवं संचार के द्वारा कैसे नवोन्मेषणों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके हम अपनी इनकम को दोगुना कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना रहा है कि किसानों की इनकम को दोगुना करना, किसानों को सशक्त बनाना। तो किसान भाई तभी सशक्त होंगे जबकि वो सही समय पर सही सूचनाओं का इस्तेमाल करेंगे। यही अगर सही समय पर सही सूचना इस्तेमाल करी जाएंगी तो किसान भाई सशक्त हो सकते हैं और आगे जाएंगे। और ये मेरा दावा है कि किसान भाई सशक्त हो जाएंगे क्योंकि हम खोजें कर रहे हैं, डेली हम कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, बट क्या वो इनोवेशन हमारे किसान भाई तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कंसेप्ट रखा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो हम नवोन्मेषण कर रहे हैं, जो हम विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं, वो शोध, वो सूचनाएं, वो समाचार हमारे किसान भाई तक पहुंच जाए ताकि किसान भाई सही समय पर सही सूचनाओं का इस्तेमाल करें और अपने आप को सशक्त बनाए।
1: किसान साथियों अभी आपने सुनी जब वार्ता कृषि विकास में संचार माध्यमों की भूमिका, जानकारी दे रही थी डॉक्टर अर्पिता शर्मा।

0: और पंकज भैया अब मनोरंजन हो जाए कुछ।
1: बिल्कुल बहन, क्योंकि बहन हमारे जो किसान साथी हैं ना, जब खेत से काम करके आते हैं तो बहुत थकान जाती है, और जब थकान को दूर करने के लिए जब उनको मनोरंजन करा दें हम तो वो एक अच्छी बात है।
0: हाँ भैया,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: मनोरंजन के लिए आप कौन सा लोकगीत हमारे किसान साथियों सुन रही हूँ आज?
0: हम अपने किसान भैया के लिए सुनवा रहे हैं लोकगीत, मर जा रहे हम गर्मी में हाय वालों में।
1: लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत जिसको अपनी मधुर आवाज दी सोनू तिवारी जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों को जो लोकगीत जरूर पसंद आए होंगे। और मीना बहन,
1: हाँ भैया,
0: जैसे कि हम सब किसान साथी जानते हैं कि क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हम रोजाना किसी न किसी गांव में जाते हैं।
1: हाँ,
0: तो ऐसी ही किसान साथियों, आज हमारी बहन मीना गई एक गांव में, और जो गांव का नाम है भूला नबीपुर, जो ब्लॉक बहेड़ी में पड़ते हैं, और यहाँ

0: हमारे एक प्रगतिशील कृषक से इन्होंने बातचीत करी, श्री आशीष कुमार जी जो कृषक हैं हमारे, उन्होंने क्या बातचीत करी ये बातचीत हम आपको सुनवाते हैं।
1: आज हम पहुंचे बहेड़ी ब्लॉक के गांव भूला नबीपुर में। तो भैया आपका परिचय?
2: मेरा नाम आशीष सिंह है, मेरा गांव पड़ता है भूला नबीपुर ब्लॉक बहेड़ी में, तहसील बहेड़ी जिला बरेली।
1: अच्छा, तो भैया आपने पढ़ाई की है भैया?
2: हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, तब से मैं खेती का ही।
1: धान की रोपाई करते समय खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए भैया?
2: खेत की तैयारी धान के लिए तो वही खेत सब लेवल करवा के और उसके बाद में खेत की जुताई करके खेत छोड़ देते हैं और अपनी मेड़े फेड़े डाल के और पानी भर के उसमें कन्हड़ जो होता है ट्रैक्टर से या कल्टीवेटर से और फिर उसके बाद लगाया जाता है।
1: तो इसमें देसी खाद भी तो आप डालते हो भैया?
2: देसी खाद भी पड़ती है, डीएपी पड़ती है और भी लगने के बाद में और भी कीटनाशक पड़ते हैं, फिर उसके बाद में फिर चलता ही रहता है समय।
1: अच्छा अच्छा, तो आप जैसे देसी खाद तो कितने समय पहले डाल देते हो?
2: देसी खाद फसल बोने से पहले खेत तैयार किया जाता है तभी पड़ जाता है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसमें कितनी जुताई आप करते हो खेत की तैयारी के लिए सही से?
2: धान तो वैसे तो खेत में इतनी ज्यादा जुताई हो जाए इतना अच्छा होता है, इतनी ज्यादा जुताई हो जाए। अब धान का ये होता है कि क्योंकि पानी में भी जुताई होती है, सूखे में अगर आप थोड़ी कम भी कर देंगे, दो बार कम भी कर देंगे तब भी चल जाएगा, उधर अगर पानी में हो जाए।
1: जैसे हम जब धान गाड़ते हैं, धान गढ़ाई के समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए?
2: 6 इंच से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए।
1: अब जैसे किसान भैया की वजह से पौध पतली हो जाती है, तो पतली पौध अच्छी रहती है या मोटी पौध अच्छी रहती है?
2: पतली पौध से कोई फर्क नहीं है, पौध सही समय की है मतलब सही दिनों की है तो पतली से कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन मतलब दूरी पौध की सही हो जानी चाहिए, मतलब पैदावार आपको तभी तो मिलेगी।
1: अच्छा,
2: आपने लगा दी 1 फीट पे, 6 इंच पे, 9 इंच पे, क्योंकि लेबर का काम बहुत कठिन हो गया है और लेबर कुछ मतलब जिस किसी में ये होता है लेबर में ये धान लगाने के लिए बच्चों से लगवा देते हैं, कम उम्र के बच्चों से लगवा देते हैं, तो समझदार आदमी कोई होता है वो तो काम सही करता है, लेकिन ना समझ अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं बच्चे से, अब लेबर में तो धानों में ये बच्चे लगवा देते हैं, 6 इंच की जगह पता चला बच्चों ने 8 इंच पे लगा दी, बढ़ा दिया, तो आपको फिर उसमें पैदावार में फिर दिक्कत आ, मतलब सही अगर दूरी बढ़ जाएगी जो है पैदावार उतनी नहीं मिलेगी इतनी मिलना, अगर आपने 2 इंच का गैप बढ़ा दिया हर पौधे में तो पूरे खेत में कितने पौधे कम होगा, ज्यादा पास भी लगा देंगे तब भी पैदावार नहीं आएगी, मतलब उचित दूरी सही पैदावार के लिए उचित दूरी होना
1: जिससे कि हमारे खेत में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए सबसे ज्यादा पौधे का ध्यान रखना चाहिए। आशीष भैया, जैसे आपके खेत में हम देख रहे हैं पौध काफी बड़ी हो चुकी है, तो आपने ये आपकी पौध कितने दिनों की हो गई?
2: ये पौध हमारी हो गई लगभग 15 दिन।
1: इसकी रोपाई कितने दिन बाद कर देंगे?
2: रोपाई हम लेके चलना है 15 या 16 तारीख कर देंगे शुरू कर, तो ये लगभग 23-24 दिन की पौध हो जाएगी जब हम लगाएंगे।
1: अगर कुछ किसान भैया बहन देर से रोपाई करते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए किस तरीके से अपने खेत की देखभाल करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: देर से रोपाई में कुछ नहीं, वो ये होता है इतना आप इधर देर से करेंगे उतनी आप उधर देर से आपकी फसल कट,
1: तो उन्हें जैसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी फसल सही से उन्हें पैदावार मिल जाए, अच्छा लाभ मिल जाए?
2: ध्यान तो यही है कि खेत की तैयारी ठीक से होना चाहिए और अपने लगने के बाद में उस पर जो भी खाद दवाई कीटनाशक बचा रहे, क्योंकि आजकल बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा
1: जी,
2: तो इन्हीं सब चीजों से खेत बचा रहे और खेत में जिस उर्वरक की अगर जरूरत है तो वो समय आ रहा है
1: जी।
2: तो
1: और भैया आजकल हमारे जैसे किसान भैया बहन बहुत ज्यादा ही रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे हमारी खेती को बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नुकसान तो हो रहा है, धान में आप देख लें कि 5-5, 6-6 बार स्प्रे करानी पड़ती है, अगर आप दवाई लगाते नहीं है तो होगा नहीं, बीमारी इतनी है तो फसल नहीं होगी, तो मजबूरी है वो लगाने, और दूसरा कोई ऐसा विकल्प अभी है नहीं जो अगर आप जैसे ऑर्गेनिक में चले जाएं या उसमें चले जाएं
1: जी,
2: तो उसमें यह है कि खर्चा ज्यादा है पैदावार कम है तो किसान को कुछ बचेगा,
1: लेकिन जो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य है वो तो खराब होता जा रहा है।
2: इसमें यह है कि अगर आप थोड़ा जैविक और देसी खाद का या जैविक दवाइयों का ज्यादा प्रयोग करें तो उससे हमें रासायनिक दवाइयों का एक विकल्प है जैविक और देसी खाद से, तो फसल ज्यादा से ज्यादा हो जाए।
1: और आशीष जी, आप अंत में हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहोगे जिससे कि वो अपनी धान की खेती या धान की पौध जो डाली उसको अच्छे से रखे और अच्छे से धान की रोपाई?
2: मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने धान की रोपाई जो है सही समय पर करें।
1: आशीष जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इस जानकारी को सुनके हमारे किसान भैया बहन लाभ जरूर उठाएंगे और आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रगतिशील कृषक से की गई बातचीत श्री आशीष सिंह। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और मीना बहन,
3: हाँ भैया,
0: अब देखो समय ही चुका हुआ है कृषि संकेत को,
3: हाँ
0: तो

0: आप हमारे किसान साथियों को कृषि संकेत में क्या जानकारी दे रही हैं बहन?
1: हम अपने किसान साथियों के लिए कृषि संकेत में जानकारी लेके आए हैं, गन्ने की फसल से अधिक पैदावार कैसे लें।
0: जी
1: अरे पंकज भैया जरा इधर तो आओ, बड़ी चिंता में हूँ मैं तो।
0: अरे मीना बहन क्या हुआ, शाम के समय इतनी परेशान क्यों हो?
1: भैया इस बार मेरे गन्ने का खेत देखकर मन बड़ा उदास है भैया।
0: क्यों?
1: मेहनत तो खूब की लेकिन गन्ना वैसा नहीं बढ़ रहा है जैसा होना चाहिए भैया।
0: अरे बहन गन्ना भी बच्चे ऐसा होते, अगर शुरू से हम अच्छी देखभाल करेंगे ना तो खूब बढ़े, नहीं तो वो रूठ जाए।
1: अच्छा तो फिर बताओ गन्ने को मनाने को क्या तरीका है भैया?
0: तरीका बड़ो सीधो है बहन। सबसे पहले खेत को पहचानो।
1: अच्छा
0: खेत की जो मिट्टी है ना वो क्या कह रही है ये जानना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा पंकज भैया मिट्टी भी कुछ कहता है का?
0: अरे क्यों नहीं बहन, मिट्टी की जांच कराओ फिर बात से पता चला है कि आपके खेत में कौन सा पोषण चाहिए। बिना जांच खाद डालने तो ऐसा है जैसे बिना नाप के कपड़ों से सिलवाना।
1: अब समझ गई भैया मैं, तभी तो मेरे पड़ोस वाले जो रामलाल चचा है ना
0: जी
1: उनको खेत खूब लहलाए रहो।
0: अच्छा क्योंकि वह पहले खेत तैयार करते होंगे, गहरी जुताई सड़ी गोबर खाद और समतल खेत, गन्ने की खेती की यही मजबूत नींव है बहन।
1: सुनो सुनो पंकज भैया।
0: हाँ भैया।
1: गांव में तो लोग कहते हैं कि गन्ने को जितना पानी दो उतना अच्छा होता है।
0: मीना बहन यही तो गलत है, गन्ने को पानी चाहिए लेकिन जरूरत के हिसाब से।
1: अच्छा
0: ज्यादा पानी भी नुकसान करता है और कम पानी भी। बिल्कुल समय पर सिंचाई मिले
1: अच्छा
0: तो गन्ना खेत में ऐसे खड़ा होता है जैसे जवान हमारे फौजी भैया सीमा पे।
1: वाह भैया बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन एक बात और है भैया।
0: का बहन?
1: कई किसान अपने ही खेत के पुराने गन्ने को बीज बना लेते हैं।
0: हाँ बहन और फिर शिकायत करते हैं कि पैदावार कम हो रही है। अच्छा बीज आधी खेती के बराबर होते हैं, रोग मुक्त और उन्नत किस्म को बीज ही हमें लगाना चाहिए।
1: अच्छा यानी शुरुआत ही अच्छी होनी चाहिए भैया।
0: हाँ बहन क्योंकि बीज उपचार भी जरूरी है, इससे कई बीमारियां शुरू में ही दूर हो जाती हैं।
1: भैया हमारे गन्ने के खेत में घास फूस भी बहुत निकल आती है भैया।
0: अरे बहन वही तो चोर है खेत के।
1: अच्छा
0: खाद भी खाएं पानी भी पिए और फसल को भी कमजोर कर रहे हैं, इसलिए समय पर निराई गुड़ाई जरूरी है।
1: अच्छा
0: जब खेत साफ रहेगो तो हमारा गन्ना भी खुश रहेगो।
1: पंकज भैया जो हमारे किसान भैया बहन ना
0: जी
1: गन्ने में मिट्टी चढ़ाता है इसको क्या फायदा हुआ है?
0: बहुत फायदा है बहन, इससे मजबूत पौधा होता है, बेगिरत ना है और जो जड़ों को विकास है वो भी बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा इसीलिए बड़े किसान इस काम को कभी ना छोड़ा था भैया।
0: सही पहचानो आपने मीना बहन।
1: भैया
0: जी
1: पिछले साल मेरे खेत में कीट लग गए थे
0: जी,
1: आधी फसल तो खराब हो गई।
0: किसान को अपने खेत पर रोज नजर रखनी चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चों को ध्यान रखती है
1: हाँ भैया
0: वैसे ही किसान को अपने फसल को ध्यान रखना चाहिए बहन।
1: और बीमारी देखो तो भैया?
0: अगर बीमारी देखो तो तुरंत जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लो, समय पर जब इलाज होगा तो नुकसान भी ना हुए।
1: अब तो मैं समझ गई भैया, जैसे गन्ने की ज्यादा पैदावार किसी भाग्य का खेल नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं, अच्छी तैयारी मिट्टी की जांच उन्नत बीज संतुलित खाद समय पर सिंचाई निराई गुड़ाई और रोग कीट नियंत्रण ही सफलता की चाबी है।
1: अच्छा यानी जो किसान इन बातों को ध्यान रखेगा उसके खेत में गन्ना भी खूब होगा और आमदनी भी भैया खूब होगी।
0: बिल्कुल और घर में खुशहाली आएगी।
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: तो साथियों इस तरह से हम अपने जो हमारी गन्ना की जो फसल है उसकी हम पैदावार ले सकते हैं। और बहन
1: हाँ।
0: जो हमारा प्रोग्राम है वहाँ समय ज्यादा ना है तो हम कल के प्रोग्राम कार्यक्रम की जानकारी अपने किसान साथियों को दे दी। कल जो चर्चा का विषय रहेगा वो फार्मर रजिस्ट्री क्यों जरूरी, और भेंट वार्ता में सफल महिला कृषक से बातचीत सुनी जाएगी। मनोरंजन के लिए हमारे किसान साथियों को कल लोकगीत सुनाया जाए, कृषि संकेत में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर चर्चा होगी, मौसम की जानकारी दी जाएगी, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किया जाएगा और जब कार्यक्रम की जानकारी जो देंगे वो हमारे भैया प्रवीण और जसविंदर भैया देंगे।
1: अच्छा भैया
0: तो हम क्यों ना अपने साथियों को कल के जो मौसम की जानकारी है मीना बहन वो दे दें।
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: कल को जो अधिकतम तापमान रहने की जो उम्मीद है साथियों वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। वायुमंडल में

0: आर्द्रता 30% और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की उम्मीद है। तो साथियों, अब समय ज़्यादा ना दे रहे कि हम आपसे और बातचीत करें, तो आज की जानकारी यहीं तक। कल हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भैया पंकज
1: और अपनी बहन मीना को देवनवती
0: राम राम, राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। आज कार्यक्रम में सुनिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण कानून, इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार सक्सेना से अवधेश कुमार गौतम की ये बातचीत, जिसमें कार्यक्रम की प्रस्तुति है अवधेश कुमार गौतम की।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम कानून और हम में आपका स्वागत है। हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में बाजार जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, सेवाएं लेते हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कभी मोबाइल नेटवर्क, बिजली पानी जैसी सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमें खराब वस्तु मिले, सेवा अधूरी रहे या हमारे साथ धोखा हो जाए तो हम क्या करें? अक्सर उपभोक्ता अपने अधिकारों को ना जानने के कारण चुप रह जाते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम इन्हीं अधिकारों पर केंद्रित है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार सक्सेना जी। आज के कार्यक्रम में हमारा विषय रहेगा वर्तमान परिपेक्ष में उपभोक्ता संरक्षण कानून। पहले जानना चाहेंगे आपसे कि उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उद्देश्य क्या है और इन कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी?
2: गौतम जी, हम सभी को पता है और हम लोग जानते हैं कि जो अभी आपने बताया कि उपभोक्ता चाहे बाजार से सामान खरीद रहा है या किसी की सेवाएं ले रहा है तो वो सब उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ये बात भी सही है कि सामान लेते वक्त हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जान पहचान का दुकानदार है और जो उसने जिस भाव भी दे दिया वो ले लिया और उसकी रसीद तक नहीं लेते।
1: रसीद तक नहीं लेते जी, बिल्कुल।
2: ये रसीद ना लेना ही सबसे बड़ा घातक है एक उपभोक्ता के लिए
1: जी।
2: हम चाहे कितना ही हमारा जान पहचान का हो या कुछ भी, यदि 5-10 रुपए की चीज है तो चलिए मत लीजिए, लेकिन अगर आप टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं या कोई और ऐसी वस्तु है जो 5-10 हजार 20 हजार की है तो उसकी रसीद लेने में क्या हर्ज है? वो ये जरूर आपको लालच देगा कि इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक मात्र 20-100 रुपए के टैक्स बचाने के लिए हम लोग रसीद को अवॉइड करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा कमी है जिस कारण से हम लोग आगे जाकर नुकसान उठाते हैं
1: जी।
2: मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले जरूरी जो है वो रसीद या कोई सामान खरीदते वक्त लिखित प्रत जरूर लेना चाहिए। ये करने के बाद आपके पास अधिकार बन जाता है कि यदि उस वस्तु के में कोई गुणवत्ता में कमी पाई जाती है या उसके कोई रेट में कमी या गलत पाई जाती है तो आप उसके विरुद्ध उसको नोटिस दे सकते हैं और उसके बाद अगर वो पालन ना करे तो आप आयोग, जो कि जिला उपभोक्ता आयोग कहलाता है, जिला हर जिला स्तर पर है, वहां पर आप अपनी परिवाद दायर कर सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही सर आपने। उपभोक्ताओं को अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अधिकारों का दावा करने के लिए जागरूक रहना होगा। सर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की अगर हम बात करें तो एक उपभोक्ता किस प्रकार अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है?
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके अंदर जो है, जब जिला उपभोक्ता आयोग के अंतर्गत हम जब जाते हैं तो परिवाद प्रस्तुत करने का भी एक लिमिट है, यानी सीमा निर्धारित की गई है। ये नहीं है कि अगर आज आपने कोई चीज़ खरीदी और 5 साल तक आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद आयोग जाएंगे तो आप देरी कहलाए, क्योंकि 2 वर्ष के अंतर्गत आपको यदि किसी चीज़ के बारे में शिकायत है तो उपभोक्ता आयोग में आना पड़ेगा, एक बात
1: जी।
2: दूसरी बात ये आ जाती है कि कितने अमाउंट की वैल्यू का जो है, यानी कि जो कीमत है उसकी, कि सामान की या जो भी परिवाद की है, तो वो जिला स्तर पर जो आयोग है उसकी समय वो जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक की है
1: जी।
2: तो 50 लाख रुपए तक का यदि कोई डिस्प्यूट है, यदि कोई विवाद है तो आप जिला आयोग में उपस्थित होकर अपना परिवाद दायर कर सकते। रह जाती बात यह कि अगर इसमें

0: फीस देने वाली बात, क्योंकि हर चीज़ में जो आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट फीस तो अदा करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जो है उपभोक्ता के लिए 5 लाख तक की उन्होंने छूट दी है। लेकिन 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर है तो 200 रुपये उसकी कोर्ट फीस रखी गई है, और 10 लाख से 20 लाख है तो 400 रुपये, और 20 लाख से 50 लाख है तो 1,000 रुपये। ये एक श्रेणी बना दी गई है कि ये आपको परिवार दायर करते वक्त यदि इसकी वैल्यू ये है तो आपको दायर करना पड़ेगा। तो वैल्यू के आधार के ऊपर कोर्ट फीस जमा कर दीजिए और उसके बाद आपका परिवार दायर हो जाएगा।
1: उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा उपभोक्ता को सशक्त बनाने की दिशा में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं?
0: इसमें गौतम जी आपको बताऊं, अभी लेटेस्ट जुलाई में एक रजिस्ट्रार साहब का सर्कुलर आया है, तो उसमें अब जो पहले परिवार डाल दिया जाता था, सीधा टाइप करा और उसको उपभोक्ता आयोग में डाल दिया, पार्टी बनाया, उसको रजिस्ट्री चली जाती थी, अब ये वाली बात नहीं है, अब ऑनलाइन होने लगा है। यानी ऑनलाइन से मतलब ये है कि अब जो भी होगा कंप्यूटराइज, अब पेपर वर्क बाद में, पहले सब जो भी होगा कंप्यूटर से आपको जमा करना है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया, ई जागृति पोर्टल बनाया गया, उसमें जो है वो हेल्प डेस्क तैयार कर दी गई है, और कोई भी व्यक्ति यदि वो इतना जानकार है, पढ़ा लिखा है, खुद कर सकता है तो वो यूट्यूब पर जाए। यूट्यूब पर जाने के बाद में आप जैसे पता ही है कि ई जागृति पोर्टल जो है उस पर टाइप करेगा, वो ई जागृति पोर्टल खुल जाएगा और उसके अंतर्गत वो रिक्वायरमेंट आती रहती हैं कि आपका पासवर्ड बनवाएगा, फिर आप उसके अंतर्गत जो है वो लॉग इन करके, और आप पूरा फॉर्मेट आ जाता है, और पूरा फॉर्मेट के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप भरिए। उसके अंदर ही आपको सबसे पहले, जैसे आपको ये वो तो पोर्टल जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए बना हुआ है, तो उसमें अगर आपको जैसे डालेंगे कि आप 40 लाख रुपए, आपने देखा कि मेरी परिवार की वैल्यू है, तो 40 लाख जैसे ही डालेंगे वैसे ही आ जाएगा जिला उपभोक्ता विवाद से संबंधित। उसके बाद क्या होगा कि तुरंत जब ये आएगा तो आप पार्टी का नाम डालेंगे और उसके साथ ही आ जाएगा वैल्यूएशन जितनी आप डालेंगे, या आप जो चाह रहे हैं कि रिलीफ चाह रहे हैं वो उसके अमाउंट डालेंगे, तो उसके साथ ही उसकी कोर्ट फीस की आ जाएगी, तो वो कोर्ट फीस आप वहां पर एंटर कर देंगे। उसके बाद इसी ढंग से आप फॉर्मेट में मुश्किल से 5-10 कॉलम हैं, उसको देखते रहिए, ठीक से भरते रहिए, तो किसी भी उसकी अन्य आवश्यकता नहीं है। तो इसमें एक चीज और करके, पैसा भी जो जमा होगा, जो पहले जो था वो स्टेट बैंक में चालान से जमा किया जाता था, वो भी अब इसी पोर्टल के माध्यम से उनका एक अकाउंट खुल गया है, उस अकाउंट के नंबर पर ही आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे,
1: ऑनलाइन ट्रांसफर
0: आपको उसी जमा करना है, अपने अकाउंट से किस अकाउंट से आप ट्रांसफर करना चाहें वो सब उसके अंतर्गत हो जाएगा। तो इससे अच्छाई भी है, थोड़ी सी परेशानियां तो इस समय लग रही है, लेकिन इससे अच्छा ये है कि कहीं भी आप धोखा नहीं खा सकते। ऑनलाइन अगर आपका केस रजिस्टर्ड हुआ है तो वो कागज अब कहीं भी कोर्ट में गायब नहीं हो सकते,
1: नहीं हो सकता।
0: जो पैसा आपने जमा किया है वो कहीं इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा, खाते में ही जा रहा है, उसका रिकॉर्ड आपके पास है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप इस ढंग से पूरे बंध गए हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे आप हो, चाहे वो अन्य पक्षकार हो, कि वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते,
1: नहीं हो सकता,
0: नहीं हो सकता। तो सब ये अच्छी चीज आई है, और इसको ही ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप लिया है।
1: सर, जिला उपभोक्ता विभाग प्रतिकोष आयोग के द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध रिव्यू डाला जा सकता है?
0: जी हाँ, ये पहले नहीं था, जो 1986 का हमारा था उसमें नहीं था, अब जो 2019 में ये बना, तो इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 40 में ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी मिल गई हैं कि वो अपना ऑर्डर जो है वो रिव्यू कर सकता है, सुमोटो भी कर सकता है, यानी अपने आप स्वयं में वो समझता है कि इस ऑर्डर में कोई कमी रह गई है तो उसको ठीक कर ले, और नहीं तो पक्षकार अगर चाहे तो वो विद इन मंथ, यह टाइम लिमिट है कि विद इन मंथ जो है उसको दायर कर दें और वो इसको रिव्यू कर सकते हैं।
1: यदि उपभोक्ता आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास क्या उपाय उपलब्ध है?
0: हाँ, अगर वास्तव में फाइनल ऑर्डर जो हुआ, निर्णय हुआ, उसके बाद भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है उपभोक्ता, तो उसके लिए अपील के लिए राज्य आयोग जो है, जो लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ है, तो वो वहां पर उसके बिल अपील दायर कर सकता है
1: जी।
0: लेकिन इसकी भी समय सीमा है, समय सीमा जो है इसकी 45 डेज है, यानी 45 दिन है, 45 दिन के अंदर ही वो आदेश पारित होने के वहां पर दायर कर सकता है। देर हो जाती है जो कि जेन्युइन है अगर, तो उसके लिए आप देरी माफी के लिए अलग से एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अप्रूवल ले सकते हैं।
1: सर, यदि आयोग के निर्णय का पालन विपक्षी द्वारा नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में क्या कानूनी प्रावधान है?
0: हाँ, अगर आप सबसे पहले तो यही है कि अगर जिला आयोग ने कोई यहाँ से आदेश पारित किया और एक समय सीमा वो देते थे कि एक महीने के अंदर या 45 दिन के अंदर इसकी जो है वो अनुपालन किया जाए, और विपक्षी जो है वो उसका अनुपालन नहीं करता है, तो परिवादी को पास ये अधिकार सुरक्षित है कि वो सेक्शन 71 है उसके अंदर उसको अनुपालन करने हेतु प्रार्थना पत्र देगा, जिसे इजरा भी कहते हैं, और उसके अंतर्गत जब आयोग में दायर करेगा तो वो नोटिस प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी, और नोटिस के अंतर्गत अगर उन्होंने उसके अंदर कर देते हैं जमा तो बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं करते हैं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर ये देखते हैं कि वाकई में इन्होंने काफ़ी लंबा समय दिया, एक या दो बार मौका दिया जाता है, नहीं होता है, तो सेक्शन 72 में पेनाल्टी का भी क्लॉज कर दिया गया है, जो जिला आयोग को भी पावर आ गई है कि वो सजा तक जो है इसके ऊपर आर्थिक रूप से भी और इस सजा भी जो है वो दे सकती है, आदेश पारित कर सकती है।
1: सर, जैसे कि देखा गया है कि कुछ संस्थान और कुछ कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, तो क्या इस प्रकार के जो भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आएंगे, इनके खिलाफ कुछ किया जा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सरकार की तरफ से आपने देखा होगा आए दिन जो है वो विज्ञापन निकलते रहते हैं कि यदि कोई इस तरह के भ्रामक विज्ञापन दे रहा है जिससे कि उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है, और इसके लिए तो एक मिनिस्ट्री हमारी पूरी उपभोक्ता के लिए संरक्षण के लिए बनी हुई है, तो हर जिला स्तर पर भी आप DM मौजूद है और आपके DSO मौजूद हैं, इन सब जगह ये विभाग इसीलिए बने हैं कि आप यहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं और शिकायत से वो सीधा एक्शन जो है उस व्यक्ति के या उस संस्थान के विरुद्ध ले सकते हैं, क्योंकि एक होता है कि अकेले का कोई विवाद है जो अभी आपको बताया कि सर्विस और प्रोडक्ट, वो तो आप सीधा यहां पर आ सकते हैं, लेकिन इस तरह के जैसे कोई पर्यावरण से संबंधित भी है
1: जी।
0: कोई चक्की चला रहा है, नॉइस कर रहा है, तो ये भी तो एक तरह से जो है वो नुकसानदेह चीज है
1: जी, जी।
0: तो ये इसमें भी आप कर सकते हो।
1: कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम चाहेंगे कि उपभोक्ताओं तथा हमारे सभी श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो सर्वप्रथम उपभोक्ताओं के लिए यही कहना चाहूंगा कि वो जागरूक हों, जो मैंने शुरू में ही सबसे पहले कहा कि जागरूकता का अर्थ क्या है। उपभोक्ता आप तभी तो कहलाओगे जब आपके पास कोई सबूत होगा। कैसे आपके सबूत जब मान लिया जाएगा कि आपने ये सामान X से खरीदा यदि आपके पास कोई रसीद ही नहीं है? तो अगर रसीद ही नहीं है तो आप अगर आओगे तो ये कैसे मान लिया जाए इनको उपभोक्ता? तो ये सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज खरीदो तो उसकी रसीद जरूर लो और उसके पास लो। यदि कोई ऐसा चाहते हो कि आप इसमें गारंटी वाली बात है तो गारंटी कार्ड भरवाइए, मोहर लगवाइए, दस्तखत करिए, उसको आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि किसी में आपने देखा होगा वारंटी है, किसी में गारंटी है। वारंटी ही वैसे ज्यादातर दी जाती है जिसमें यह होता है कि रिप्लेसमेंट मुश्किल से होता है, केवल रिपेयर या इस हद तक होता है, वो भी जरूर ले लीजिए और इसको सुरक्षित रखिए जब तक कि आपका प्रोडक्ट उस सीमा के अंतर्गत चल रहा है।
1: जाते जाते के आखिरी सवाल, ऐसा भी हो सकता है कि उपभोक्ता ने रसीद ली हो लेकिन वो खो गई हो, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, वो कैसे अपनी दावेदारी कर सकता है अगर उस प्रोडक्ट के साथ कुछ दिक्कत आती है तो?
0: देखिए, अगर वो बिल्कुल ही उसके पास कोई सबूत नहीं है और रसीद नहीं है, डाल तो सकता है लेकिन उसके बाद उसको एविडेंस बहुत देने पड़ेंगे कि ये देखिए ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ये इसका सीरियल नंबर था, ये तो उसकी बेहतर ये है कि यदि रसीद खो जाए तो एक नोटिस वो सबसे पहले जरूर दे दे उसे, क्योंकि उसको दुकान का नाम तो पता ही है
1: जी, जी,
0: उसका दुकान का नाम कि हमने आपकी दुकान से दिनांक इतने इतने को ये चीज खरीदी थी और इसमें ये कमी पाई गई है, तो क्या होगा एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया
1: जी,
0: और भाई जब अगर उसका जो है वो आप जवाब आपके पास आ जाता है तो इस मीन वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट हो गया, तो आपका कम से कम ये चीज यहाँ से खरीदी थी वो सिद्ध हो जाती है,
1: वो सिद्ध हो जाती
0: है, इतना तो प्रयास करना चाहिए कि तो अच्छा।
1: श्रोताओं, आज के कानून और हम के अंक में हमने बात करी वर्तमान परिपेक्ष में उपभोक्ता संरक्षण कानून विषय पर, जिस पर सार्थक जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सक्सेना जी। श्रोताओं, कानून और हम के अगले अंक में फिर से किसी न किसी कानूनी विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए हम आपसे चाहेंगे अनुमति।
2: कानून और हम, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण कानून, इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण कुमार सक्सेना से अवधेश कुमार गौतम जी की बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। और कल सुबह हमारे केंद्र से प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अब से कुछ ही देर यानी 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आपको सुनवाई जाएंगी नुसरत फतेह अली खां, अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन की कुछ गजलें।

रात्रि 8:08 सुनिएगा कार्यक्रम गीत गाता चल। ये कार्यक्रम होगा व्हाट्सएप पर आधारित। आप भी हमें अपने मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। रात्रि 9:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री जुबेर शमसी से असीम सक्सेना की बातचीत। समय याद रखिए, रात्रि 9:30 पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम खेल दर्पण आज आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रात 10 बजे। 10:30 पर होगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, कल प्रथम सभा में सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य संदेश, जिसमें आपको सुनवाई जाएगी कब्ज की समस्या से कैसे बचें। इस विषय पर डॉक्टर विनय वर्मा की जानकारी। 6:45 पर होगा श्री रामचरितमानस गान का प्रसंग और सुबह 7 आप सुनिएगा कार्यक्रम अमृत कलश में आज की आवश्यकता। इस विषय पर अल्पसंख्यक अधिकार जागरूकता, इस विषय पर मेहर जर निगार की प्रस्तुति। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। स्वामी

0: विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूत पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश

0: टाइप लिया जा रहा है।
1: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
2: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
3: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, अब रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए UPSTF, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन

0: मैत्रीपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खां, अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन की कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आपने सुने नुसरत फतेह अली खान, मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की गाई कुछ गजलें। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्मी गीतों का व्हाट्सएप फरमाइशी कार्यक्रम, जिसका नाम है गीत गाता चल।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली फरमाइश के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आप सभी श्रोता। बुल्ढाणा वर्षिंगी महाराज से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, इन्हीं के साथ इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकामा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। जामा मस्जिद रोड सनावत से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अय्यूब शेरी, आप सभी ने ये फरमाइश लिख भेजी है। गोल्डन रेडियो छोटा संघ राज पैलेस मऊनाथ पंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, इन्हीं के साथ शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है ऊपर को बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार ने। कस्बा गुमनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिर, आप सभी ने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। दादरी गेट भिवानी से ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और साथ में इन्होंने भेजी है प्यारी सी नमस्ते। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने ये व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है कांठ रोड लदावली से, आपने भेजा है साथ में प्यारा सा राधे राधे और नमस्कार। मध्य प्रदेश मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, साथ में हैं आपके परिवार के समस्त सदस्य। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से इसी गीत को सुनना चाहते हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम

या शुएब खान और आपके सभी साथी। इसी गीत की फरमाइश हमें भेज रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान बिटिया अलीशा, नविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और साथ में हैं सुदेश चौहान। आप सभी ने भी फरमाइश की है इसी गीत को सुनने की। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, श्रीमती मनोहरबाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से मनभावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, श्रीमती फुंदीबाई बागरी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इसी गीत को सुनना चाहा है। इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे अगले श्रोता जो कि हैं ज्योति अजीत चव्हाण, लता राजा राम चव्हाण और सक्षम श्रेणिक चव्हाण। आपने ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा है चांदनी चौक सांगली महाराष्ट्र से। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है वणिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा का। आप सभी भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। पुष्पेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार जाफरपुर उधम सिंह नगर से इसी गीत की फरमाइश भेज रहे हैं और ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं एयरपोर्ट रोड वंदा नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, साथ में हैं स्वाति प्रयाग चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी, तानिया और समस्त नारंग परिवार ने। श्रोताओं आप सभी ने सुनना चाहा है जब जब फूल खिले इस फिल्म में मोहम्मद रफी को। तो आइए आपके साथ हम भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का गीत। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से आप ये मैसेज भेज रहे हैं। बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन घवनेकर, धीरज सवासेरे और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये मैसेज हमें भेजा है। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें भेजा है। उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। ये अगला मैसेज हमें मिला है धामण गांव, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी देठे पाटिल और कुमारी सानिका देठे पाटिल का। साथ में है वरफ गांव नादुरा से शिवाजी उगले और राहुल उगले। रायगढ़ बिहार से उमा राजपवन, उमा संजय, उमा दीपक, उमा और कमल उमा। खंडवा से राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमीन, उमा और जानवी डोमीन। इन्हीं के साथ चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव। दत्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने सुनना चाहा है इसी गीत को। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, आप सभी भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। पुराना तला डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राजस टी अंसारी और फातमानाज। चमनपार दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा और इनके परिवार के सभी सदस्य। तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वासाने, उषा वासाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक और दिंडोरी। नासिक से विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण, भक्ति गवली और इनके परिवार के सभी सदस्य। प्यार भरे नमस्कार के साथ ये हमें मैसेज भेजा है परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली। मीरा सराय बदायूं से इन्हीं के साथ हैं आफरीन खान, जमीर खान और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की। ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और तुबिहा नेवादा काजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल। नमस्कार के साथ सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, आप सभी ने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। नाज मंजिल महसौल, सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शनी अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। इन्हीं के साथ हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन और इनके सभी साथी। दादा बाबू रोड गिरडी ही झारखंड से ये व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। साथ में आपने भेजा है आदाब। रज़ाक मोहम्मद,
समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान ने ये मैसेज हमें भेजा है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदी नाज। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है फिर कब मिलोगी इस फिल्म में मुकेश को, तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल अपने रेडियो साथी अंकुर राजपूत के साथ। और ये अगली फरमाइश हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार ने। ये कस्बा सैंथल, जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने सुनना चाहा है इसी गीत को। प्यार भरे आदाब के साथ ये मैसेज हमें भेजा है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिना फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, आदाब खान, आबाद खान और इन्हीं के साथ हैं कलीम अंसारी और उस्मान अंसारी। ये अगला मैसेज राम राम के साथ हमें भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। आप सभी ने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। अतुल गौतमी, तर धमदिना, अरुण काले, एंडी कामले, प्राशिक, तुषार कुरुणे कामले, एकता कामले, मेघना कुरुणे, उत्कर्षा कामले, अरुण और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ये मैसेज हमें भेजा है जिला कोल्हापुर से। आदाब के साथ ये मैसेज हमें भेजा है राहीनगर गंज डुंडवारा से शमसुल खान, शाहीन खान और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। स्टेशन रोड जमशेदपुर से नमस्कार के साथ ये मैसेज भेज रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और समस्त भाटिया परिवार। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। आपने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तन्नू करमरकर। मोहल्ला बारादरी महमूद खान से नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें भेजा है भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, साथ में है नगमा नाज मंसूरी। आप सभी ने भी सुनना चाहा है इसी गीत को। सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी और बेबी बाय हिमाक्ष। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा, नंदिनी, देविका, प्रज्ञा, वंदना और साथ में है इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे आप सभी श्रोता। हिंगोली से रामचंद्र इंगोले और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़ और साथ में है साईं गायकवाड़। साथ में सुनना चाहते हैं इनके परिवार के सभी सदस्य। ये अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने प्यार भरे

सर विट्ठल सुरेशो काटा रोड वाशी महाराज से आप भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। और अगली फरमाइश मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर पन्नीलाल सागर आशीष कुमार सागर अमर सिंह हितेश कुमार और फुबंटी राजेश कुमार रूबी भारती एकता भारती दिव्या भारती रचना श्रीमती ओमवती भारती खनक शगुन सारांश आयांश अदिति वर्मा शिवांश और प्रताप सिंह नई बस्ती गंजनवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी नाजम बेगम हाशमी तौसीफ हाशमी तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आखिर क्यों में लता मंगेशकर को।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग।

0: सीट यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप अभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाथा चल अपने रेडियो साथी अंकुर राजपूत के साथ।

श्रोताओ, ये अगला मैसेज हमें भेजा है थाना टीम ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां पीडब्ल्यूडी वाले शाहिदा परवीन और शिवा इमरान खां, रेहान खां, इकराम, समीना, आसिफा और शबीना ने। मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहणकर, राही श्रीमती सरिता गवाहणकर, प्रिंस का एकांश गवाहणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाहणकर, सिद्धांत गवाहणकर और लाडला टुकटुक गवाहणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाहणकर, सुमित गवाहणकर और कुमारी ध्वनि गवाहणकर, साथ में हैं परी, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुश दिल संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, खुश दिल और संजीव बंटी जिंदल, साथ में है पूरा ही खुश दिल परिवार। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने ये फरमाइश हमें भेजी है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं संगमित्रा रेडियो श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी, इन्हीं के साथ हैं समस्त साथी और इनके परिवार के सदस्य। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी सावनकर और इनके समस्त सावनकर परिवार ने ये फरमाइश हमें भेजी है। गुड इवनिंग के साथ रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर, राही शमशुल, कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शामीम अख्तर अंसारी ने यह हमें फरमाइश भेजी है। ये व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मीन बाजार कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें फरमाइश भेजी है। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपाली, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव, विनोदपुरी, साथ में इनके परिवार के सभी सदस्य। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा और सार्थक शर्मा की। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, शमीम अंसारी और माहिनूर अंसारी, ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं। हिंदुस्तान रेडियो श्रोता संघ से बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और साथ में हैं आशीष विश्वकर्मा। गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, समस्त ढिंगिया परिवार ने ये फरमाइश हमें भेजी है। चक 15 पीएस जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन और इन्हीं के साथ हैं, और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोसन और इनके सभी परिवार के सदस्य। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। मरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं सप्रेम नमस्कार के साथ महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ग्राम पंचायत बठेना पाटना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, माधव वर्मा, उमेश, धनेश्वरी वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव कुम्हार
हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम ढकिया केसरपुर बांसखेड़ा से, जिला पीलीभीत से, ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, पप्पू भैया, मदन लाल, सत्यपाल वर्मा, भगवान दास राजपूत, रवि कुमार वर्मा, श्रीपाल यादव, मनोज कुमार सक्सेना और छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। बोरखेड़ा पीतरामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त और इनके परिवार के सभी सदस्य। नवीन वसाहत वारणा शाहपुर से, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, विजय शाहपुरकर, अमित अशोक मधुकर, अमर सुमेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। कंवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खारगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और इनके समस्त श्रीमाली परिवार। सिंधौली बरेली से इशरत अली, सुबहान और शहनाज अली। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है डियर पार्टन गुजरात से धीरज वी रवारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन और इनके परिवार के सभी सदस्य। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरी वर्नेर, अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर और इनके परिवार के सभी सदस्य। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव और इनके परिवार के सभी सदस्य। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से सईद भाई, सूफिया, अनस, आयजा, सैफ, अल्फिया, सदफ और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है करणवीर हाउस भूचो कैचनिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। मोहल्ला मजार शाम मिया रामपुर से मोहम्मद रियाज, रमजान साहब, अदनान अली, मंसूर मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रयान चांदनी, अनमता और आशु भाई। मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा सब प्रेम नमस्ते के साथ ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। बागपत से ममता ढेंगिया, कुणाल ढेंगिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारका नायक, सुशांत नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, नारायण इंगले, सोपान ताइडे और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सक्रांति, रितेश, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी को फिल्म दो रास्ते में।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं मोहल्ला पुलिस चौकी कस्बा सैंथल जिला बरेली से जेबानाज जूली अंसारी जुनेरा हुसैन अंसारी मोहम्मद अजहान अंसारी और अलमारी बशर अंसारी। इसी गीत की फरमाइश हमें भेज रहे हैं वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर तेजस्विनी चौहान माई इंदुरकर बेबी शौर्या श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान। सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्य। कोल्हापुर महाराष्ट्र से बबन चौगले और इनके परिवार के सभी सदस्य। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान की।

सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान, इन्हीं के साथ हैं इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ में हमें ये मैसेज भेजा है

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम से अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,30,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External

0: तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, जरई तजारत, माहौल दोस्त जरई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूआत पर वसीतर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें यह यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बरवक्त इम्तहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरिकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाद हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सह फरीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज के मेहमान इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्री जुबेर शमसी से असीम सक्सेना की ये बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान, हमारे आज के मेहमान वो शख्स हैं जिनका आकाशवाणी रामपुर के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है, सालों पुराना ताल्लुक रहा है और उनका रिश्ता समाज के प्रत्येक वर्ग के हर उस शख्स के साथ है जिसे मदद की दरकार होती है और वो मदद के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। एक शायर का कहना है कि फैले तो कायनात की हर शय में छा गए, सिमटे तो इस अदा से कि दिल में समा गए। वो शख्स हैं जनाब जुबैर शमसी साहब। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जुबैर साहब।
3: शुक्रिया आपका।
2: हम तो ये कहेंगे कि बहुत दिनों के बाद जैसे घर वापसी होती है, बहुत दिनों के बाद आप आकाशवाणी रामपुर आए हैं, दिल में क्या एहसास

0: है इस वक्त, क्या कुछ याद आ रहा है आंखों के सामने? बहुत कुछ तैर रहा होगा, बहुत सारी तस्वीरें इधर से उधर जा रही होंगी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब मुझे बहुत टाइम के बाद आने का इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे लग रहा है कि मैं वाकई आज बहुत खुशी का मेरे लिए दिन है। मैं आकाशवाणी से बहुत टाइम से जुड़ा रहा और मैं ज्वाला प्रसाद जी के टाइम और दूसरे दिन विनोद आनंद दयाल ये सब लोग और अपने राजेश्वरी साहब ये बहुत लोग मतलब बड़ा सहयोग देते थे मुझे और बड़ा वो करते थे। ज्वाला प्रसाद जी ने ही मुझे रेडियो स्टेशन पे आने का मौका दिया। उन्होंने मेरा ऑडिशन कराया जिससे मुझे पास होने के बाद उन्होंने मुझे कई प्रोग्राम मैंने यहाँ करें, झलकियाँ भी करी हैं, नाटक भी करे हैं। मुझे वो सब लोग याद आते हैं जिनके साथ मैंने झलकियाँ और नाटक वगैरह करे हैं।
0: और आपके नाटक आज भी हमारे पास महफूज हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिसमें जुबैर शमसी साहब का जिक्र होता है बतौर कलाकार। तो एक दौर रहा आकाशवाणी के साथ, एक गहरा रिश्ता रहा। क्या माहौल था उस वक्त?
1: माहौल तो बहुत ही अच्छा था, अब भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे लोगों के जो रेडियो स्टेशन को आगे बढ़ाना और आर्टिस्टों को मदद करने के लिए हर टाइम तैयार रहते थे और ढूंढ ढूंढ के लाते थे कि कौन सा आर्टिस्ट हमारे शहर में है या आसपास है कि हम उन्हें मौका दें कि वो आगे बढ़ें। और मुझे भी वो उस तरीके से उस वजह से उस मौका वो मौका मिला। वैसे तो मैं खानदानी मेरा बिजनेस है और लेकिन मुझे शौक़ था शुरू से ही कि मैं लोगों के मेरे फादर भी लोगों की बहुत मदद करा करते थे, वही शौक़ मेरे अंदर ही पैदा हुआ। फिर बाद में मुझसे लोगों ने ये कहा कि आप अपनी एक सोसाइटी बनाइए ताकि लोगों को और ज़्यादा ज़्यादा मदद कर सकें।
0: जी
1: उसके वजह से मैंने अपनी एक सोसाइटी भी बनाई है जो मैं उससे ज़रिए भी लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ाई लिखाई आज भी मैं लगभग 80 बच्चों को मैं फ्री तालीम देता हूँ, उनकी किताबें उनकी फीस जिसके पास जो चीज़ की कमी है मैं कहता हूँ पढ़ो। और बल्कि लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था ईच वन टीच वन,
0: जी
1: मतलब एक आदमी अगर एक बच्चे को भी गोद ले ले और उसकी पढ़ाई का खर्चा करे तो हमारे मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचेगा।
0: जुबैर साहब, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से बचपन बीता, किस तरह से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई और किस तरह से आप इस रास्ते पर आगे बढ़े।
1: ऐसा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिजनेसमैन घराने में पैदा हुआ लिहाजा शुरू से ही मुझे बिजनेस में डाल दिया गया। मेरी तालीम एमएड तक हुई, उसके बाद मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस मेरा बिजनेस बहुत बड़ा था। तो फादर हम लोगों में जब ज़रा बच्चा समझदार हो जाता है तो ज़्यादातर घर वाले यही कोशिश करते हैं कि वो हमारे उस कारोबार को वो
0: कारोबार संभाले।
1: संभाले।
0: जी जी
1: तो इसलिए मुझे भी उसमें लगना पड़ गया और मैं 74 से बाकायदा इस काम को कर रहा हूँ, बल्कि और इससे पहले से इस बिजनेस को अपने देख रहा हूँ और उससे चला रहा हूँ।
0: आपके बचपन का दौर बहुत सुनहरा दौर रहा होगा, लोगों के बीच रिश्ते बहुत मजबूत रहे होंगे, एक दूसरे के साथ सुख दुख की भागीदारी रही होगी और वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता भी गया है। तो जुबैर साहब, आज आप यहां पर आकर अपने बचपन के दौर से आज के दौर की अगर तुलना करते हैं तो क्या महसूस करते हैं आप?
1: नहीं, बचपन का दौर तो सभी के लिए सुनहरा होता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती आदमी के ऊपर, वो जैसा चाहता है वैसा करता है, गलत भी करता है सही भी करता है। लेकिन वही मेरे साथ हुआ, मैं भी अपना मतलब ये अगर गलत भी है तो उसको सही समझ के कर रहा हूँ और वही लोग करते भी हैं। बहरहाल उसके बाद जैसे समझ आती जाती है आदमी आपको सुधारता है और ये सोचता है कि ये मैंने गलत करा, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी उस दौर में आ चुका हूँ कि जब मुझे अब एहसास हो चुका है कि क्या गलत है और क्या सही है।
0: बिजनेस से जुड़े हैं आप, बिजनेस की तरफ पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ आप मदद के लिए भी आगे आए हैं और हर शख्स की आपने मदद की है जिसको भी जरूरत हुई है, कुछ हस्तशिल्प को भी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, ऐसा है ना कि मदद तो मैं कहता हूँ हर आदमी को एक दूसरे की करना चाहिए। एक शेर है, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी
0: क्या
1: पर।
0: बात है,
1: खुदा कहता है तुम मेरे बंदों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो हम तो अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो वो हमारी ही मदद है एक तरीके से, हो हमें उसके बदले में मदद मिलती है। और मेरा तजुर्बा तो यही है कि मैंने अगर किसी की मदद करी है तो मेरे काम सब होते चले गए, कुछ कोई परेशानी नहीं आई। तो मैं सबसे यही कहता हूँ और इंसानियत का मतलब ही यही है कि एक दूसरे से मदद करें। अब मैं दूसरी बात यह है कि अब मैं खुद ये चाहता हूँ कि खासकर लड़कियों को कि अपने पैरों पे खड़ी हों, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी एजुकेशन के साथ साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को मैंने सामने रखते हुए सिलाई सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ये इस तरह के जो काम आने वाले हैं।

0: जिससे आदमी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ता है, तो वो उसको मैंने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान करता हूँ। अब भी मेरे कई सेंटर चल रहे हैं, एक बस एक लड़की जो रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहाँ से आती थी सीखने के लिए, उसको बड़ा शौक था। मैं लड़कियों से यही कहता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, टेलर के आप जाते हैं, टेलर 250-300 रुपये आपके सूट के लेता है, और फिर जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं साहब परसों आना, अभी आपका तैयार नहीं हुआ है, तो आपको 50 रुपये रिक्शा के खर्च हो जाते हैं। इस तरीके से मैं कहता हूँ आप खुद सीखो हुनर और अपने घर के अंदर बैठो, घर के अंदर सब लोग आएंगे, उनके रिक्शा के पैसे बचेंगे, और आप 200-300 रुपये रोज़ आराम से घर के काम के साथ कर सकती हैं। और ऐसा करा है लड़कियों ने, एक लड़की जैसे मैं बता रहा हूँ पटवाई की थी, वो 300 रुपये रोज़ पैदा करती थी, इसी से यहाँ मेरी सेंटर से सीख के गई थी, और उसने शादी भी उन्हीं पैसों से कबूली मैंने करी है। और हुनर की वाली बहुत सी चीज़ें मैंने करी हैं, जैसे डोरी वर्क और दूसरे काम लोगों को सिखाएं, और लोग कर भी रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा कर रहे हैं। LED के बल्ब हैं, आदमी के 5 रुपये में सही हो जाता है, 20 रुपये आप उससे ले लिए, घर बैठे आप सही कर देंगे। तो मेरे छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनके इनसे आदमी की अर्निंग अच्छी हो जाती है।
1: क्या लगता है आपको कि हमारे समाज में जो इस वक्त एजुकेशन का लेवल है, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर हुनर है, मतलब पढ़ना चाहते हैं, ललक है पढ़ने की, लेकिन कुछ हमारी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो पढ़ नहीं पाते, कभी गरीबी कभी परिवार का माहौल, तो उस तरफ भी कुछ कोशिश रही आपकी?
0: बिल्कुल हो रही है। देखिए मैं तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 80 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ विद कोर्स उनको, और किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लें वो अच्छे से स्कूल में, बिल्कुल मैं उनकी मदद करूँगा। दूसरी बात यह कि इन लोग की पढ़ाई लड़कियों में ज़्यादा रिवाज हो गया है पहले के मुकाबले में, और अब कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके वही जैसे आपने कहा कि हालात कई तरह के होते हैं, एक तो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, एक ये है कि उनके घर वाले इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो आगे बढ़ें। तो मैं घर वालों को भी यही कहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, इन्हें मत रोको, ये भी इनके पास भी दिमाग है, मर्द के पास जैसे दिमाग होता है ऐसी औरत के पास भी दिमाग होता है, और मैं तुम्हें तो अच्छा दिमाग होता और तालीम औरत की बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि घर जो है वो औरत के जिम्मे होता है, और वो घर से जो पैदा होगा वो तालीम जो होगी बच्चों को मिलेगी, वो चल के बच्चे आगे बढ़ेंगे।
1: हमने कई जगह देखा है कि जुबैर साहब लोगों के इलाज के लिए भी आ गया है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: नहीं मैं
1: कैसे मदद करते हैं
0: जी, ये TB पेशेंट होते हैं, मैं हर इनसे TB मुझे ऑफिस से फ़ोन आता है कि साहब 10 बच्चों को आप 20 बच्चों को गोद ले लीजिए। अभी मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले फ़ोन अखलाक साहब का आया था, उन्होंने मुझसे कहा साहब मैं आपको 20 बच्चे देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक, आप बल्कि मेरे नाम में 20 बच्चे लिख दें, मैं उनको जो उनका सामान होता है, जो उनके उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनके खाने पीने की जो उनको ज़रूरत होती है TB मरीज़ को, वो सब चीज़ों का मैं इंतज़ाम करता हूँ। इस तरीके से करीब मैंने 100 TB पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करी है।
1: रामपुर एक ऐसा गहवारा रहा है जहाँ पर अमन है, शांति है, संगीत है, अपनी विरासत है, अपनी कला है, अपना शायरी का एक स्कूल है रामपुर, तो इस तरफ भी कुछ कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए, सहेजने के लिए कोशिश रही आपकी जुबैर साहब?
0: देखिए इसमें ऐसा है कि जिसको शौक रहा है कि उसने कहा साहब मैं जो ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, आप ठीक है रामपुर में नहीं है, मुरादाबाद है, आप जाइए मुरादाबाद में सीखिए, मैं आपका खर्चा दूंगा, मैं करता हूँ उसका इस तरीके से। यह उसकी रुचि के ऊपर है, उसके शौक के ऊपर है कि वो क्या करना चाहती है, क्या करना चाहता है। मैं तो कहता हूँ हुनर आदमी को आना चाहिए, हुनर से बहुत आदमी आगे बढ़ता है, और वो कभी परेशान नहीं रह सकता हुनरमंद आदमी।
1: जबर साहब बहुत सारे कलाकारों को अपने मंच भी उपलब्ध कराए हैं।
0: हाँ ऐसा है, यहाँ पर रामपुर के अंदर जब ज्वाला प्रसाद जी थे तो मैंने एक नाटक के कुर्बानी गुमनाम मोहम्मद शाह रंगीले के ऊपर वो नाटक था, CRP ऑडिटोरियम में कराया था, जिसके लिए कॉस्ट्यूम वगैरह मैंने दिल्ली से मंगवाई थी, काफ़ी पैसा खर्च किया था, और वो एक कामयाब मेरे हिसाब से नाटक था। तो उस ज़माने में रेडियो स्टेशन पर भी इतने ऐसे लोग थे, अब भी हैं, जो इन तरह के बढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं किसी के सपोर्ट मिले, तो मैं उस सपोर्ट के लिए हर वक्त तैयार हूँ। आप बताएं कहीं मशायरे की महफिल है या कहीं ड्रामा कराना है, कहीं कुछ है, तो मेरी सोसाइटी इसके लिए तैयार रहती है टाइम।
1: अच्छा, सोसाइटी में बहुत सारे लोग जुड़े होंगे आप
0: जी जी,
1: तो
0: जी
1: किस तरह के लोग जुड़े हैं और किस तरह से मदद करते हैं आपकी, इस काम में सहयोग करते हैं?
0: नहीं देखिए सोसाइटी में तो जो मेरा स्टाफ है वो तो अपनी जगह है, कोई फील्ड वर्क करता है, कोई और काम करता है, कोई एज ए मैनेजर है, कोई एज ए कोऑर्डिनेटर है, तो ये इस तरीके से मेरी हेल्प करते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं उनसे भी कहता हूँ कि

0: अगर आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा घर है, गरीब आदमी कोई, जो जिसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको एजुकेशन, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर उसको जाड़ों में किसी लिहाफ की ज़रूरत है, रज़ाई की ज़रूरत है, दवाओं की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ हर टाइम, और करता हूँ मैं।
1: कभी जब दिमागी तौर पर थक जाते हैं तो ज़ुबैर साहब, क्या जरिया होता है जो आपको रिलैक्स महसूस कराता है?
0: साहब मैं म्यूजिक के बारे में कुछ जानता तो हूँ नहीं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाना या जाना
1: सुनने का तो
0: मेरा
1: शौक
0: शौक है।
1: होगा
0: मैंने यहाँ पे एक क्लब बनाया था
1: जी।
0: म्यूजिक का, उसमें रामपुर का एक वो राजू नाम का एक लड़का था, एक सुभाष सरोती थे, आजकल दिल्ली में हैं,
1: जी
0: और ऐसे दिल्ली का एक बड़ा ग्रुप आया था बड़े साहब के नाम से, और मैंने उनसे ये कहा कि साहब मेरे यहाँ आर्टिस्ट हैं, आप इनको अपने साथ लगाइए। तो उन दोनों को मैंने दिल्ली भेज दिया था, सुभाष सरोती को और राजू को, और मोहन नाम का एक मोहन बिष्ट एक लड़का था जिसके फादर अब यहीं हैं रामपुर में। तो इन लोग बहुत कामयाब रहे, और उसके बाद ये दुबई चले गए, राजू दुबई चला गया, राजू दुबई में है, सुभाष सरोती दिल्ली में है, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। तो मुझे इसमें भी शौक तो है कि मेरे भाई अच्छा नेचुरल है, अब म्यूजिक से भले ही थोड़ा आदमी बैठता रिलैक्स तो होता ही है।
1: कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है, हम सुनवाते चले आपको?
0: और साहब गाने तो मुझे ज्यादातर रोने धोने वाले जिसे कहते
1: लेकिन वो जो दिल के बहुत करीब
0: ज्यादा
1: हो, है जो आप बार
0: पसंद।
1: बार कभी बेसाख्ता आपके लबों पे आ जाता हो गाना, या अच्छा लगता हो सुनना उसे बार बार
0: मोहम्मद रफी साहब के हैं, लता जी के हैं, ये भी मुझे बहुत
1: जी।
0: पसंद है।

0: जुगर साहब, अपने आप को फिट रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है और हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो स्वस्थ रहे और इसके लिए वो तमाम जतन करता है। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है, कितने बजे दिन की शुरुआत होती है और कैसे कैसे दिन गुजरता है?
1: ऐसा है कि मैं लोगों को राय तो देता हूँ कि अपने आप को फिट रखिए, लेकिन मैं टाइम की वजह से अपने आप को फिट नहीं रख पाता बात यह है। और मैं वैसे योगा सेंटर भी मैं चला रहा हूँ। ये योगा ये कोई नई चीज़ नहीं है, योगा बहुत हजारों साल पुरानी चीज़ है। अब वो ज़्यादातर लोग उसको पहले पुराने लोग तो समझते थे इस चीज़ को, वो करते थे वो योगा समझ के या योगा का नाम से नहीं करते थे, वो अपना करते थे फिट रखने के लिए। एक गांव से दूसरे गांव एक 3-4 मील पर आराम से चलते थे और ये करते थे। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो गई, हमने लाइफ को अपना इतना इजी बना लिया कि हाथ पैरों से काम लेना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि साहब हमारा ये हाथ दुख रहा है, ये हाथ काम नहीं कर रहा है, ये हाथ ऊपर नहीं उठ रहा। अरे भाई, जब ऊपर उठने का टाइम था तो आपने उससे काम नहीं लिया, अब आपने छोड़ दिया तो वो भी बेकार हो गया, उनने भी सोचा मेरा कोई काम नहीं है, लिहाजा वो भी जैम हो गया अपनी जगह। तो इस तरीके से आदमी को फिट रहने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पैदल चलना है। पैदल चलने के लिए मैं सबको राय दूंगा, हालांकि मैं तो इतना नहीं चल पाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये फिट रखने के चलिए। आप जिम नहीं जा सकते, जिम के पास जाने के लिए टाइम नहीं है या पैसे, आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है, आदमी का माइंड नहीं है कि हम अपने आप को एक आधा घंटा अगर वो अपनी ज़िंदगी में एक 24 घंटे में निकाले तो वो हमेशा फिट रह सकता।
0: हमारे परिवार थे पहले, एक साथ हम लोग रहते थे, पूरा पूरा कुनबा एक साथ रहता था और परिवार के जो भी सदस्य थे एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। धीरे धीरे बट गए परिवार, अब छोटे छोटे परिवार हो गए। तो ये परिवारों की जो टूटन है इसने हमारे समाज को कुछ नुकसान पहुंचाया है,
1: बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखिए, पहले हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहते थे तो हमें टोकते थे, हमारी गलतियों को सुधारते थे वो। अच्छा, कोई बीमार भी है तो उनकी नॉलेज होती थी हमसे ज़्यादा, वो उनके अपने हिसाब से इलाज भी करते थे, घरेलू इलाज होता तो घरेलू करते थे, ज़्यादा क्या वह क्रिटिकल है तो उसको डॉक्टर की सलाह भी लेते थे। लेकिन हमें वो एक ज़िंदा रहने का और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते थे, वो चीज़ हमारे अंदर परिवार बटने की वजह से ख़त्म हो गई। हर आदमी सेल्फिश हो गया। सबसे बड़े दुख की तो बात यह है कि बेटा माँ को निकाल रहा है आजकल घरों में से, ये चीज़ देखने में आ रही। ये ओल्ड एज होम तो ये नई चीज़ है, ओल्ड एज होम की क्या ज़रूरत है हमें? भाई, आपके माँ बाप ने हमें, हमारे माँ बाप अपनी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी।

0: उनका अब टाइम आया कि हम उनकी खिदमत करें, तो बजाय उनके हम उनको बेकार कूड़ा समझ के घर से बाहर निकाल दें। बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसमें समाज ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये समाज का गलत है। मैं तो कहता हूँ आज भी जो ज्वाइंट फैमिली है वो मैं समझता हूँ उस फैमिली से ज़्यादा खुश रहती होगी जो अलग अलग रहते
1: कम से कम बच्चे महफूज हैं, तहजीब सीख रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: अब
0: बिल्कुल
1: एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, इज्जत करना सीख रहे हैं,
0: लिहाज करते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं। अभी तो बुजुर्ग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, बुजुर्ग को तो और ज्यादा बेवकूफ समझते हैं।
1: अच्छा, इसके पीछे कहीं ये तो जिम्मेदार नहीं कि हम आधुनिक होते चले गए और तमाम तरह के गैजेट्स हमारे पास आ गए, हम उसी में मस्त हो गए, और एक साथ बैठकर खाने पीने का भी रिवाज नहीं रहा, अलग अलग बैठकर अपने एक कोना पकड़कर अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो ये सब चीजें कहीं असर डाल रही
0: हैं। मोबाइल बहुत बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत है
1: जी।
0: बस सारी बात यह है। देख लीजिए आप घरों में भी बस अजीब हाल है, बच्चे इतने से बच्चे को जो जानता नहीं मोबाइल क्या चीज़ है उसके हाथ में दे दिया, अब वो देखता है उसने चमक धमक देखते हैं, वो तो फिर जिद करने लगता है कि तब मुझे वापस करिए। मैं उससे माँ भी सोचती है कि चलो इसमें लगाओ मैं अपना काम करूँ। ये मोबाइल का इस्तेमाल बहुत गलत हो रहा है, मैं तो मोबाइल को बुरा नहीं कहूँगा, उसके इस्तेमाल को गलत करूँगा।
1: तो इस तरह भी कुछ काम करने की ज़रूरत है क्या
0: भाई? शाम करने के समाज में इस तरीके का सुधार लाया जाए, उनको समझाया जाए कि साहब ये आप गलत कर रही हैं, ये बच्चों के लिए, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, ये अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है, 10-20 साल के बाद उसकी आंखें बेकार हो जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये हम कुदरत ने तो हर चीज़ का एक मशीन है आदमी की बॉडी जो है, अब आप उसको मशीन को सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो नुकसान तो हो गई है। तो पहले लोग जानते थे कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ हम सीखते थे अपने बुजुर्गों से। अब जब बुजुर्ग ही नहीं रहा है हमारे पास तो हम क्या सीखेंगे क्या सब करेंगे, जो हमारे समझ में आएगा वो करेंगे। और हमने अपनी ज़रूरतों को इस कदर बढ़ा रखा फालतू, अब मेरे पास मोबाइल है, किसी दूसरे ने देखा उनका भाई इसके पास तो यह आईकॉन है फाना है दिमाग है, मैं भी वैसा लूँ, तो उस चक्कर में वो गलत काम पर भी पड़ता है और वो गलत टाइम भी खराज करता है। तो अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड करें, जो वाकई ज़रूरत है इंसान की ज़िंदगी के लिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें, बाकी फालतू तो दुनिया में बहुत कुछ है और बहुत कुछ होगा, वो हर एक के लिए नहीं है।
1: किसी की हिर्स ना करें, किसी की बराबरी करने की कोशिश ना करें, जो आपके पास है उसी में खुश रहें।
0: बस
1: जुबैर साहब, इंसान जब कुछ हासिल कर लेता है तो कुछ और नया करने की कोशिश करता है।
0: बिल्कुल,
1: आपने भी बहुत सारी चीजें सोची, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी उपलब्धियां पाई, आगे और क्या आपकी ऐसी इच्छा है जिसे आप करना चाहते हैं और उस जुस्तजू में लगे हुए हैं?
0: भाई फिलहाल तो मेरा एक ही शौक है कि मैं दौलत बहुत जमा करके अपने बांधे रखूं, लोगों के काम आता रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करूं। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो एक कंबल बांट रहे हैं तो चार आदमी उसको पकड़े हुए हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और फ़ोटो भी व्हाट्सएप पे और उस पर डालते हैं फेसबुक पे, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो इतनी खामोशी से करिए कि उसको ही पता हो या आपको ही पता हो, और अगर आप दुनिया को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है मोबाइल पे डालिए फिस्तार करिए, और खुदा को करने के लिए कर रहे हैं तो आप छुप के करिए, उसको शर्मिंदा मत करिए।
1: क्या बात है,
0: उसको शर्मिंदा मत करिए। मैं देखा मुँह छुपा के लोग लेते हैं कम्बल, अरे उनके भाई मत करो ऐसा। फोटो आप रखो अपने, आपने सोसाइटी अगर है आपको रखना है कि भाई मैंने ये काम करें, उसको तो मुझे सही समझता हूँ कि ठीक है आपने रखा सोसाइटी के इसमें अंदर फाइल, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मैं अच्छा नहीं समझता इसे।
1: जुबैर साहब, बहुत सारे मौजू पर आपसे बातचीत हुई, रामपुर की आवाम से कुछ खास आप हमारे माइक्रोफोन के माध्यम से कहना चाहें, बताना चाहें कुछ?
0: नहीं, मैसेज का अच्छा ही उभराई हर आदमी समझता है, लेकिन जैसे भी आपने कहा ना कि परिवार जो छोटे हो गए, बड़े जो ज्वाइंट्स है वो तो खत्म हो गए, तो अब हमें समझाने वाला कोई नहीं रहा, और हम समझते भी ऐसे लोगों से हैं जो जाके रात को बैठ के अपना महफिल गर्म करते हैं और हंसी मजाक करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं बताते जिससे हमारे अंदर सुधार पैदा हो। तो मैं यही कहूँगा फालतू टाइम मत खर्च करें, और लड़कियों से खास कर ये कहूँगा ये मोबाइल जो है ये आपके लिए बहुत नुकसान है, इसको इसका इस्तेमाल मोबाइल ही के लिए होना चाहिए, किसी के काम को समझने के लिए होना चाहिए, ना कि आते ही ज़रा सा टाइम मिला खाना भी खा रहे हैं तो अपने किसी फ्रेंड को मिला लिया, उसी से बातें हो रही हैं खाने की तरफ दागत हम, उसमें एक तो ये होता है खाना आदमी ज़्यादा खाता है बातें करता रहता है, तो ये बहुत सी बातें मतलब मशीन है इंसान की, आप जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी, और जब आपने गलत चलाएंगे, हम कार रखते हैं कार के अंदर हम हिसाब रखते हैं इतना मोबिल आयल इतना ये चीज़ पढ़ना चाहिए, टाइम पर डालते हैं सबके, उसके तो टायर भी देखते हैं इंजन भी खोल के देखते हैं बोनट, लेकिन अपना इंजन कभी नहीं सोचते अपने हमारे इंजन में क्या हो रहा है।

0: हम क्या खा रहे हैं, पहले ये सोचें कि ये हम जो खा रहे हैं इसकी हमारी बॉडी को जरूरत है या नहीं है। मजे के लिए मत खाइए, मजे के लिए तो आप फिर बेकार, फास्ट फूड ये वो सब।
1: जुबैर साहब, आज वक्त निकाला आपने, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम ये दुआ करेंगे कि आप इसी तरह से सेहतमंद रहें, लोगों की मदद के लिए आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने का, सुनने का। मैं तो इस बहुत पहले से जुड़ा हूँ, आज वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रेडियो स्टेशन पे आ गया। मुझे उम्मीद है शायद आप मुझे फिर कभी बुला लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जुबैर साहब आते रहिएगा, क्योंकि आप जैसे लोग एक आईना है पूरे समाज के लिए, और जिनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जो प्रेरणा है हमारी। तो श्रोताओं, आज के मेहमान थे हमारे रामपुर के जाने माने उद्योगपति और सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री जुबैर शमसी साहब। आपका एक बार फिर से जुबैर साहब दिल से शुक्रिया।
0: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अभी आपने सुनी श्री जुबैर शमसी से असीम सक्सेना की बातचीत। कार्यक्रम था आज के मेहमान। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: रहिमन पानी राखी, बिन पानी सब सून।
3: बात तो है ये सदियों पुरानी, लेकिन है जानी पहचानी। पानी है सबकी जिंदगानी, सोचो समझो बचाओ पानी।
1: जल की बचत का करो जतन, जीवन का ये अमूल्य रतन।
4: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
5: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
6: रिश्ते नाते पीछे होंगे, जब जल की होगी मारा मारी। रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
5: जल है तो कल है,
6: यही चिंतन पल पल है।
7: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

0: जल के बिना है मुश्किल जीना, दुर्लभ हुआ स्वच्छ जल पीना। सबकी प्यास बुझाता पानी, पानी है तो है जिंदगानी।
1: जरा सोचिए, जब धरा पर रहेगा जल, तभी तो बचेगा आने वाला कल। जल की बचत, कल की सुरक्षा।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से होगा।

खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिमनेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस

0: हैमर वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौर से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
1: मतलब छोटी थी जब उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले, और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। फिर टूर्नामेंट हुआ था, ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था तो बस ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ की जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
0: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहाँ चयन हो गया?
1: जब मैं गांव गई थी ना तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बेंगलोर के अगेंस्ट चार विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला वो आराम में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, उसका मुझसे सब लोग मिले, मतलब एक प्राउड था कि हाँ कुछ तो सबको खुशी थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
0: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: जब सीनियर T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी, उनका फोन आता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा दी मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को, फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया सबको पता चल गया, गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं हूँ, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति का सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है तो जो लोग भी उधर पे, बहुत सारे लोग आए घर और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग, सबको पता चल गया था। क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए बड़े प्लेयर्स से चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
0: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
1: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी। पहले तो फॉरेन प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स जो है जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में। तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स है उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे। तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लग के रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक। तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर्स प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे। क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
0: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौड़ के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था। तो हम 3-4 लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी
2: बात है। बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं। और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
0: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है। तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले।
0: जी
2: तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अब ये लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
0: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
2: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साई स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट। उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए, तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
0: उस समय आपको लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
2: हाँ देखिए, उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, टेक्निकली वो तैयार नहीं थी और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको। हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
0: जी आपने सहयोग किया।
2: हाँ तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। और उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
0: जी हाँ।
2: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है।
0: जी हाँ। उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
2: संघर्ष के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
0: अरे वाह,
2: हाँ, तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
0: जी क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
2: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड दो चीजें उसकी बहुत अलग है। हट के देखेंगे तो आपको अलग ही उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रन अप पे जब भागेगी, या बॉल की इसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है।
0: मतलब एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति।
2: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
0: तभी इतना आगे पहुंची है।
2: जी जी जी।
0: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
2: देखिए, हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
0: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
2: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है, तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
0: क्रांति गौड़ जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
2: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30-11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
0: जी।
2: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में।
0: कितना कम समय मिला।
2: थोड़ी परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी भी वर्ल्ड कप में जब भी उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था। अच्छा। कि सर बधाई हो।
0: युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हील चेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हील चेयर पर बैठ कर ही टीवी पर मैच देख कर वे शेडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
3: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
0: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे?
3: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
0: जी।
3: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
0: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
3: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट

0: हाँ कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें
1: जी
0: कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
1: जी
0: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
1: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
0: बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेला। तो
1: जैसे हमारी सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
0: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं उनके, बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज भी है,
1: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
0: व्हीलचेयर
1: अच्छा
0: के साथ
1: अच्छा
0: में ही जाते हैं।
1: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
0: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था, ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट,
1: जी
0: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन, और
1: अच्छा
0: उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहली ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
1: बहुत अच्छी बात है, तो कि जो उस तरह
0: इसका
1: के
0: फाइनल जो
1: खिलाड़ी,
0: मैच था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
1: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
0: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और
1: जी
0: शोहरत भी।
1: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था,
0: जी,
1: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
0: और
1: चलिए
0: मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
1: जी।
0: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे एक
1: जी
0: प्लेयर रहे, वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
1: जी, बहुत बड़ी बात। और वाकई में ये जो मैच है, देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे
0: बिल्कुल,
1: लिए
0: कहीं
1: जी।
0: ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे,
1: जी
0: लगभग लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ,
1: जी
0: तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके, क्योंकि
1: जी
0: पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे, तो
1: जी
0: देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है, और
1: जी
0: कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग हैं और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं, तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ
0: धन्यवाद।
1: सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरी शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं, और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं,
1: अच्छा,
2: जो कि
1: बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से?

0: करनी चाहिए।
1: बट जैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे शिकायत भी बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली, और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है अभी लगभग 16 वर्ष, और इस समय वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जोर दिखा रही है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
1: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे, ये
0: पानी से दूर रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यान से स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा इसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
0: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
0: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
1: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, बस यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला गए, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
0: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
1: इसकी चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये स्विमिंग की चार स्टाइलें हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है भाई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
0: उसी में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
1: उसको बारीकी बताते हैं।
0: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
1: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन की लाइफ गार्ड है, और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी नहीं, सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
0: परेशानी नहीं। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता, और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
2: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
3: शुक्रिया।
2: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
3: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
2: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
3: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था।

0: महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है बॉक्सिंग मतलब गेम है। अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है। फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
0: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं। तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है।
0: जी
1: अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
1: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल नहीं सकती
0: चलिए,
1: कि
0: लेकिन
1: क्या होता आगे। हाँ, बाकी मैं
0: हमारी
1: लगी हूँ
0: शुभकामना
1: प्रैक्टिस
0: है।
1: में।
0: और इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और
1: जी
0: आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप। खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
2: खेल दर्पण।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम गीतांजलि के सभी श्रोताओं को अंकुर राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की, बुशरा खान, आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशाद अली आजम, गुलफ शाह, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई, राहुल डोंगर दिवे और समस्त डोंगर दिवे परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक, मीका विरक और इनके परिवार के सभी सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मेकलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंद्र संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू मौर्य, अरोही मौर्य, स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्य। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, पार्थिक, सोनाली, कृषिव और इनके परिवार के सभी सदस्य। मनकारा मंदिर बीटी कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर और बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी

भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी सिंह डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही, शादाब राही, महताब निशा, सिकंदर राही, साहिल अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लाम उन्निशा, शकील अहमद, डॉक्टर सलीम अहमद और डॉक्टर शहनाज। संजय नगर अशफाक लखनऊ से। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी वोड के, नंदा वोड के, हनुमान वोड के और उत्तम जमदाड़े। आप सभी ने सुनना चाहा है मुकेश को फिल्म हिमालय की गोद में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है आप सभी ने। थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शिबा, इमरान खां, रेहान खां, इकराम, समीना भी, आसिफा और शबीना, बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहकशां, दानिश, आदिल और साथ में हैं शफक, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रूबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी और चीना शेख, शेख जफर हसन, नरगिस जफर, कुवात बिहार से, नूर महल महसूल से उमिरा नाज, सुमिरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू, ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राय आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी और इनके परिवार के सभी सदस्य, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईम बेगम, कासिम अली, नदीम और जुनेद अब्बासी। इसी गीत की फरमाइश आई है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और इनके परिवार के सभी सदस्यों की, पंडित नंगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना, मुन्नी, पवित्रा, आकांक्षा, आंचल, अजय, आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजम बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, आप सभी ने यह फरमाइश भेजी है जसपुर उत्तराखंड से, पटियाली रोड कली जुनवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजबी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम और मिर्जा नसरीन बेगम। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है महेंद्र कपूर को फिल्म आग में।

श्रोतों कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा ने। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया, कमल महोबिया और कमला महोबिया। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान। जातको किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, नाज परवीन और चांदी नाज। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने ये फरमाइश भेजी है प्रमिलागंज मालौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौशल। ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख और आरिश खान। अजीत नगर मलौट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर। इसी गीत को सुनना चाहा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलता मिस्त्री, रोमा, मंजू, प्रियांग, शीतल, पूजा, कविता, अंश गौतम और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। इसी गीत को सुनना चाहे जामरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन संजय, आशिव, पृथ्वीराज और कुमारी सांधवी जोशी ने। साथ में हैं परमणि हुन गणेश हारगांवकर। श्रोताओं आप सभी ने सुनना चाहा है महेंद्र कपूर को फिल्म आसमान महल में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, आल्फिया खान, इंशा खान, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी, बब्बू व डब्बू, गांव फरांसी से राजकुमार डुड्डी, सुरजीत सिंह डुड्डी, इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वडोदे, जरूर वरुड़ से बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चौर पे चंद्र प्रभा वडोदे और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुड़त और इनके परिवार के सभी सदस्य, इसी गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी और गंजमवारा से इरफान खान और शमसुल खान, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम और इनके परिवार के सभी सदस्य, बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद, जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद, तहसील जाफराबाद जिला जालना से श्री सुधाकर राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत, जागुताई, साक्षीताई, संचित गयाल, आरेगांव, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, करड़ा, प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और समस्त राजी जाधव वयाल देशमुख परिवार, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, मालेगांव से दत्ता घायाल, सुनीता बाई घायाल, सानिका घायाल, गजानन घायाल और इनके परिवार के सभी सदस्य, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद असारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और इनके परिवार के सभी सदस्य, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिक, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहार का, हार्दिक, वंश बत्ता, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बासेरे, तेलंगाना भंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यसफुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समयरा, आजमीन, गुड़िया, अब्दुल, बाबा और अनजाना, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म कभी कभी में मुकेश को।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अंतिम गीत की फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। कमारिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार इसी गीत को सुनना चाहते हैं। संभलपुर कांकेर से फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, वशिका यादव और तेजल यादव। छत्तीसगढ़ भाटापारी दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। जरूर रोड से बाबा साहेब वडोदे, मीनाक्षी चरपे, रंजनी कनीरे, चंद्र प्रभा वडोदे और इनके परिवार के सभी सदस्य। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिमा कौर और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मुकामा हिप्पर सोगा तालुका उसा जिला लातूर, उनसे उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर फैज नबी, शाकिर इस्लाम नबी, बाबा करिश्मा सानिया शाकिल, बिस्मिल्ला भी गदर और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है कोटव नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नवेदा से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलां से अवधेश कुमार राय और श्रीमती प्रीति राय, नवनीत रॉय इसी गीत को सुनना चाहते हैं। बलराम गेट कासगंज से हम असलम सैफी, सैबुल नशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान आप सभी ने सुनना चाहा है। फिल्म लैला मजनू में मोहम्मद रफी को। अगर हम

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
4: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News.